मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 45 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया।

0: नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, प्रातःकालीन ईश वंदन, मन में स्फूर्ति, उत्साह, असीम उमंग और प्रसन्नता का संचार करता है। तो आइए करते हैं सभा की शुरुआत रोज की तरह भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना से।

ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जब मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को याद करता है, उनके गुणों का गान करता है और हर परिस्थिति में उन्हें अपना सहारा मानता है, तो वही भक्ति कहलाती है। और हनुमान की सी भक्ति तो अतुलनीय है।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भक्ति की बात चल रही है तो मीरा भाई को हम कैसे भूल सकते हैं। मीरा भाई की भक्ति भारतीय भक्ति आंदोलन का एक अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। उनकी भक्ति अनन्य निष्काम और पूर्ण समर्पण की भक्ति थी। वे भगवान श्री कृष्ण को अपना पति, प्रिय मित्र, स्वामी और सर्वस्व मानती थी। बचपन से ही मीरा का मन श्री कृष्ण में रम गया था। कहा जाता है कि उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया था। मीरा के लिए संसार में सबसे प्रिय केवल कृष्ण थे। राजमहल का वैभव भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया।

भारतीय काव्य और भक्ति साहित्य में पपीहे यानी चातक की भक्ति और प्रतीक्षा का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। पपीहा एक ऐसा पक्षी माना गया है जो केवल स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद ही पीना चाहता है। वो धरती का जल नहीं पीता और आकाश की ओर टकटकी लगाए उसी बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी कारण पपीहा अनन्य प्रेम, धैर्य और एकनिष्ठ भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार पपीहा केवल एक बूंद के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त केवल ईश्वर

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर।

ईश्वर को चाहे जिस रूप में पूजें, ईश्वर तो एक ही है। भक्ति में सबसे अधिक आवश्यक है सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और प्रेम। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना की आखिरी पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं यजुर्वेद से पाठ।
1: वेदों में अनेक प्रकार की व्याख्या पद्धतियां मिलती हैं, जिसमें याज्ञिक पद्धति का प्रथम स्थान है। इस पद्धति में वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हैं। इस पद्धति के उदाहरण उबट, महिधर, सायण आदि के भाष्य हैं। इन भाष्यों में अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमाशेष्टि, अग्निष्टोम, वाजपेयी, राजसूय, अग्निचयन आदि विविध यागों के प्रसंग में वेद मंत्रों का अर्थ किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन संहिता अध्याय 11 से प्रारंभ करके अध्याय 18 तक यज्ञ की वेदी बनाने के मंत्र पठित हैं। वेदाध्ययन शिक्षा तथा प्रातिशाख्यों में विवेचित है। वेदों के मंत्रों का पाठ तत्त शिक्षा तथा प्रातिशाख्यों में प्रतिपादित है। समान मंत्र भिन्न शाखाओं में भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है। संप्रति शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन संहिता के 11 अध्याय के कुछ मंत्रों का पाठ हरे

गौरव ग्रंथों से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे यजुर्वेद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने डॉक्टर मनोज कुमार से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत। बातचीत का विषय है पशुओं में गलघोंटों की बीमारी।
1: डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, आप विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। भाई, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि जो पशुपालक भाई अरे गाय भैंस पाले हैं, अक्सर ही सुने में आओ थे कि भाई उनके गलघोंटों की बीमारी हो गई, गलघोंटों की बीमारी हो गई, जौने से कि कहूँ कहूँ ऐसा हो था कि पशु उनका मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे में का कारण है जोने वजह से गलघोंटों की बीमारी हो जाता है और न हो इसे बचाव का करें?
2: जी देखिए, गलाघोटू रोग मुख्य रूप से गाय तथा भैंस को होता है
1: जी।
2: इसको पशु चिकित्सक की भाषा में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं।
1: अच्छा।
2: इस रोग को साधारण भाषा में गलाघोटू के अतिरिक्त घुरखा, घोटुआ, गलघोटू आदि क्षेत्रीय भाषाओं में इसको इस प्रकार संबोधित करते हैं।
1: अच्छा।
2: इस रोग से पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसके कारण किसानों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। ये रोग मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है। ये रोग अति तीव्र गति से फैलने वाला एक जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये छुआछूत से भी फैलता है
1: जी।
2: इसके बैक्टीरिया को पास्टुरेला माल्टोसिडा कहते हैं, जो पशुओं के ऊपरी श्वास तंत्र में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। जब भी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे बरसात के मौसम में बहुत अधिक आर्द्रता बढ़ जाने से, तापमान में बढ़ोतरी होने से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
1: अच्छा।
2: इस स्थिति में ये बैक्टीरिया अपना वृद्धि करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है और एनिमल को पूरी तरह से, पशुओं को पूरी तरह से प्रभावित करता है।
1: अच्छा। तो भैया एक बात यही जानना चाहूँ कि का लक्षण हो थे जो उन्हें देख के पशुपालक की समझ जाए कि गलघोंटू बीमारी हो रही है?
2: देखिए किसान भाइयों, पहला लक्षण ये होता है कि पशु को बहुत तेज बुखार होता है
1: जी।
2: बुखार के साथ उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके मुंह और नाक से पानी की तरह का बहाव चालू हो जाता है, लार बहुत तेजी से बहती है, पशु मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करता है और उसकी सांस से घर घर की आवाज आती है।
1: अच्छा। हम कहते हैं भाई अगर ये लक्षण शुरुआत में दिखाए तो पशुपालक भैया क्या करे के चाहिए? पहला काम
2: किसान भाइयों को सबसे पहले किसी अच्छे पशु चिकित्सक को तुरंत जानकारी देके बुलाना चाहिए
1: जी।
2: जब तक पशु चिकित्सक आ रहा है तब तक पशु को छायादार ठंडी जगह पे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग करके बांध लेना चाहिए ताकि दूसरे पशु उससे प्रभावित ना हो।
1: अच्छा अच्छा।
2: जानवर को अनावश्यक इधर उधर ना टहलाएं क्योंकि उससे जानवर और ज्यादा दिक्कत में आएगा
1: जी।
2: दूसरी बात, जानवर के द्वारा छोड़ा गया जूठा पानी या उसकी नांद में बचा हुआ चारा

0: उसको किसी दूसरे एनिमल को ना खाने दें।
1: अच्छा, का मतलब ये भैया कि ये अगर ओकर जूठा खाए से दूसरे पशु को होने की संभावना रहा।
0: जी हाँ, ये छुआछूत की बीमारी है।
1: जी
0: लार या बचे हुए चारे में उसका लार जो छूट जाता है पशु का, अगर दूसरा स्वस्थ एनिमल या जानवर उसे खा लेता है तो उसके भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: अच्छा, ये रोग होए के मुख्य कारण का हो सकत है भैया?
0: इस रोग को होने का सबसे मुख्य कारण मैंने बताया कि बैक्टीरिया होता है।
1: जी
0: जब बरसात के मौसम में
1: जी
0: धूप बहुत तेज होती है

0: है, तो जिससे ये जीवाणु उनके शरीर में बहुत तेजी से अपना विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो
1: अच्छा।
0: इसका मुख्य कारण पास्टुएल्ला मल्टोसिडा नामक जीवाणु है।
1: हम कहें तो भैया एक बात थी कि अगर ये रोग न हो, इकरे लिए अपने उनके पशुओं के खान पान और रहन सहन में का सावधानी बरते के चाहिए पशुपालक भैया रहेंगे।
0: पशुपालक भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मानसून से पहले
1: जी
0: जानवरों को HS हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गला घोटू का जो टीका आता है वो जरूर लगवाना चाहिए।
1: अच्छा।
0: दूसरी बात, जानवरों को ठंडी जगह पे और हवादार जगह पे बांधना चाहिए। जानवरों का जो बांधने का स्थान है उसमें हवा का प्रॉपर आगमन और निगमन अच्छी तरीके से होना चाहिए। जानवरों को बहुत ज़्यादा धूप में या लंबी दूरी तक पैदल नहीं चलाना चाहिए।
1: अच्छा, तो हम कहते कि ये तो बचाव के संसार, खान पान में भी कुछ सावधानी बरते चाहिए।
0: जी हाँ, पशुओं को इस मौसम में साफ पानी और हरा चारा, इसका प्रबंध किसान भाइयों को करना चाहिए। हरे चारे से जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे उनमें ये बीमारी होने की संभावना कम होती है।
1: हम कहें तो भैया अगर मान लें दुधारू पशु हैं और उनका ये बीमारी हो गई, तो हमने का सावधानी बरते हैं कि जो उनसे दूध निकलत व ओकर उपयोग केहू करावें या केहू पिए खाए पे दें कि न दे जाए।
0: देखिए, जो भी पशु इस बीमारी से प्रभावित हुआ है उसको इलाज के दौरान एंटीबायोटिक थेरेपी या एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं। उन दवाइयों का कुछ दिन तक विथड्रॉल पीरियड होता है जो दवाइयों में लिखा होता है। जब आप किसी अच्छे पशु चिकित्सक से अपने पशु को दिखाएंगे
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो आपको ये जानकारी देंगे कि इस जानवर या दुधारू जानवर का जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो इतने दिन तक प्रयोग करने लायक नहीं है।
1: अच्छा, तो कहे का मतलब ये कि जो उनके डॉक्टर भैया हरे जो जो ने हिसाब से बताओ उतने दिन तक उनका प्रयोग करें।
0: उतने दिन तक उसका प्रयोग ना करें, इसके
1: अच्छा
0: बाद
1: अच्छा
0: करें।
1: अच्छा अच्छा
0: दूसरी बात, इस रोग को फैलने से बचाने के लिए अगर कोई पशु की मृत्यु हो जाती है तो मृत स्थान को अच्छे से साफ करें। इसके बाद उस पे चूने का छिड़काव करें। मरे हुए जानवर को खुली जगह पे कभी ना फेंकें। उसको गड्ढा खोदिए, खोद कर कम से कम 5 फीट का उसके अंदर रख के चूना और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से आप ढक दीजिए ताकि उसको कुत्ते या जंगली जानवर बाहर फैला ना सकें, क्योंकि बाहर फैलाएंगे तो इससे इस रोग के फैलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: इसी प्रकार जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए बारिश के बाद भी टीका लगवाना चाहिए। अच्छे पशु चिकित्सक से ही इलाज करवाएं। अगर आपको अन्य कोई जानकारी और लेना है तो पशु चिकित्सक से लें। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पशुओं के टीकाकरण को बिना किसी कॉस्ट के या बिना किसी दाम के फ्री में उपलब्ध करा दिया है।
1: जी
0: किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने पशुओं को उचित समय पर टीकाकरण करवाएं और इस जानकारी को अपने और किसान मित्रों को दें।
1: जी
0: और
1: जी
0: यदि कोई भी जानवर इस रोग से प्रभावित होता है तो बिना किसी देरी के आपको एक अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाना है और जानवर का पूरी तरह से इलाज कराना है।
1: जी जी हम कहते हैं डॉक्टर भैया आप बहुत अच्छी जानकारी दें, ये जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देखभाल।
1: आज की वार्ता का विषय है गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। ये गर्मी का मौसम हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत परेशान करने वाला है, इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम शिशुओं की क्या विशेष देखभाल रख सकते हैं, इस बार पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि वातावरण कैसा हो, हमें शिशुओं के लिए एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें कि कम से कम आर्द्रता या नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, थोड़ी सी कम रहे और हवादार हो। अमूमन ऐसे कमरों में रखें जहाँ का तापमान 24-25 डिग्री के आसपास बना रहे। आर्द्रता अगर 80-90% के आसपास रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, और हवा का फ्लो बना रहे, पंखा चलता रहे या कूलर संभव हो तो कूलर चलता रहे। जो लोग एयर कंडीशनर को अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के अमूमन देखा जाता है कि वो लोग बहुत टेम्परेचर नीचे गिरा देते हैं, उसके बाद 18-19 पे, और फिर कंबल ओढ़ के सोते हैं। ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। कभी भी अपने कमरे का तापमान 24 डिग्री से नीचे ना जाने दीजिए, नहीं तो पंखा जरूर चला के रखें और हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़कियाँ प्रॉपर हों। उसके बाद उस मेन चीज़ आती है कपड़े कैसे पहनाए जाएँ। सब एक शिशुओं को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूती कपड़े पहनाएं, क्योंकि वो पसीना सूखने की क्षमता रखते हैं, फिर वो पसीना उससे उड़ता है तो वो ठंडक प्रदान करता है। पॉलिएस्टर के कपड़े या सिंथेटिक कपड़े इनको ना पहनाएं, क्योंकि ये कष्ट देते हैं और शिशु अमूमन ये बता नहीं पाते कि उनको उससे परेशानी हो, और इससे रोना शुरू कर देते हैं, फिर उनके रोने का कारण जानना एक सामान्य माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपड़े हमेशा ढीले ढाले हों, हवादार हों, टाइट ना हों, और उसमें से हवा का अच्छे से आदान प्रदान हो ताकि पसीना उड़ सके और सूख सके, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है उनके भोजन का ध्यान रखना। ये ध्यान रखें कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है तो हमेशा इस बीच का ध्यान रखें कि हो सकता है उसको प्यास लगी हो। हम आप सब लोग तो आराम से बता देते हैं कि हमको प्यास लगी है, पानी पीना है। शिशुओं को बताने का तरीका अलग होता है, तो अगर कभी भी बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, तो पहले पानी जरूर पिलाएं, और अगर भूखा भी है तो भोजन से पहले थोड़ा सा पानी जरूर दें, क्योंकि अगर मुंह सूखा होता है बच्चे का तो जैसे हम लोग बड़ों के साथ है वैसे उनको भी भोजन चबाने में खाने में दिक्कत आती है, तो अमूमन वो उसके बाद भी चिड़चिड़ाते हैं, तो पानी हमेशा पिलाते रहें। और यदि शिशु खेल भी रहा है और नहीं भी मांग रहा भोजन या भूखा नहीं, तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2 चम्मच पानी जरूर पिलाते रहें, क्योंकि इसकी वजह से शरीर पर पसीना बनेगा, उड़ेगा, तो शरीर का तापमान सुरक्षित रहेगा और उसके पेशाब का बहाव भी बना रहेगा, ताकि उससे वजह से शरीर के और अवयव जो होते हैं जो बाहर निकलते भी रहते हैं। पानी पे हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ठंडा पानी बच्चे नहीं पीना चाहते बहुत, और या गर्म पानी भी नहीं पिलाना है। पानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे अब आजकल लोगों ने आरओ के फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो आप पानी उबाल कर ले, उबाल के उसको ठंडा होने का इंतजार कीजिए। उस ठंडे हुए पानी को आप में थोड़ा सा फ्रिज का पानी उसमें मिला करके, ताकि सामान्य से थोड़ा अच्छा हो जाए, जिसका स्वाद बेहतर लगे, वैसा करके आप बच्चे को चम्मच से या कटोरी से पिला सकते हैं। सबसे उसके बाद आती है चीज की हाइजीन, सफाई सुथराई का ध्यान रखना, क्योंकि इस मौसम में पानी अमूमन गर्मी बहुत रहती है, तो कुछ भी लोग प्यास लगने पे कुछ भी खा पी लेते हैं, तो हमेशा ताजा बना हुआ भोजन, ताजी कटी हुई सब्जियां, ताजे काटे हुए फल ही इस्तेमाल करें, रखी हुई चीजें ना इस्तेमाल करें, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन ना दें, और अगर फल जहां तक संभव हो छिलकेदार फल यूज करें, जैसे केला है, संतरा है, जिनको कि आप बाहरी परत है उसको आप छील के निकाल सकते हैं, ताकि जिसमें उसमें जो वायरस बैक्टीरिया या जो भी चीजें हैं उनको आप हटा सकते हैं, और अंदर का जो फल है वो आपको स्वस्थ तरीके से मिल जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी है इस मौसम में, तेल लगा के मालिश लगाना या पाउडर लगाना या काजल लगाना इस मौसम में जरूर अवॉइड करें जहां तक हो सके, क्योंकि अगर आपने तेल शरीर पे लगा दिया तो वो पसीना नहीं निकलने देगा और शरीर का तापमान बढ़ा देगा और बच्चा चिड़चिड़ाएगा। पाउडर लगाने का अमूमन कोई फायदा नहीं होता, लोग पाउडर बहुत लगाते हैं, क्योंकि पाउडर का भी यही नुकसान है कि वो आपके जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं इनके मुंह बंद कर देता है, तो पसीना निकलने नहीं पाता, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, फिर बच्चा चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। तो इस मौसम में अगर आप मालिश करनी है, अच्छी चीज़ होती है, तो हमेशा प्रयास करें कि नहाने से पहले मालिश कर दें, और मालिश करने के आधे घंटे के बाद फिर उसको साबुन से नहला करके जो अधिक जो एक्सेस में तेल है शरीर से लगा हुआ उसको पोंछ दें, और जहाँ तक संभव अगर गर्मी ज़्यादा हो तो दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे को नहलाएं, बच्चा खुश रहेगा, अच्छा रहेगा और हमेशा अच्छी नींद सोएगा।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता, विषय था गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल।

कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत। बातचीत का विषय था पशुओं में गलाघोंटों की बीमारी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज सुना रहे हैं डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता, गर्मी के मौसम में शिशुओं की

श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शाम 7:31 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। इस श्रृंखला में प्रोफेसर अली अहमद फातिमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता सुनवाएंगे। रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। रात 8:30 पर आज इतवार है कार्यक्रम में सुनवाएंगे प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की झलकी भंडा फोड़।

सुबह 7 बजे आनंद लीजिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर शमशाद अहमद खां का उपशास्त्रीय गायन, और दोपहर 12:15 पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा पंडित रविशंकर उपाध्याय का पखावज वादन।

रोज की ही तरह सुबह 8:45 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कल्याणी मुखर्जी से गीत सुनेगा। लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाथुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे हरविंद कुमार यादव, वत्सला मनोहर देवधर और दोपहर 2:30 पर बीना रानी श्रीवास्तव, राजाराम यादव और सूर्य प्रकाश पटेल। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:00, 10:30 पर, 12:30 पर और रात 8:15 पर।

दिन में 11:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग, सुनवाएंगे निधि खन्ना की कहानी। 1:15 आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अनुरोध होगा।

हेलो अनुरोध कार्यक्रम आपके फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम होता है, सुनना न भूलेगा। 1:15 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे शीला सोनकर की वार्ता वन हमारे देवता। युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर और शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आनंद लीजिएगा सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों से लोक गीतों का।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं।

0: निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन त्रिंशदधिकद्विशत धावनाङ्कानां विजयलक्ष्यं स्थापितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहां एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान अंगद नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं। लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जांबवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर गिर जाता है।

सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मों से भजन।

नई अग्निपथ फिल्म से ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं। अजय ने इसे गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, अजय अतुल का संगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं इलाका फिल्म में किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: निरंतर विकास और जो व्यक्ति आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
3: स्वगणना कार्यक्रम है, ये दिन जरूरी तीन दिन का कार्यक्रम है। आज टीवी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मजबूर करें।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं या समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
1: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद

0: विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद अहमद खां का उपशास्त्रीय गायन, राग मिश्र भैरवी में ठुमरी सुनिए।

0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शमशाद अहमद खां का उपशास्त्रीय गायन राग मिश्र भैरवी में ठुमरी आपने सुनी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनूप कुमार बैनर्जी। और अब सुनिए समाचार रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली।

0: Legal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत से सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में

0: कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
7: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और

0: उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक, बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: इंतखाब में AINRC की क्यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगासामी पांचवी मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम बीजेपी कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान असम में एनडीए सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद एनडीए कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेज़ी से तैयारियाँ जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वज़राए आला और मरकजी वज़रा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश जैनीथाला और VD सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि उजरतों की अदायगी में ताखिर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है, जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ़ के तस्वूर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों, महकमों, आइनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रर वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत, हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोज़ा उजरत, 15 दिन ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मज़ीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानी का एक जामे टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया, जो रवां साल जनवरी में किए गए 700 सेकंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरोस्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज सफ़े अव्वल में

खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माय हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही

0: के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मां केवल एक शब्द नहीं, पूरा संसार है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। नमस्कार श्रोताओं, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और आज का ये अंक लेकर मैं हाजिर हूँ आपके आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे। आज का ये विशेष अंक समर्पित है उस अनमोल रिश्ते को जो हमारे जीवन की पहली धड़कन है, पहली शिक्षक है, पहली मित्र है और पहला प्रेम है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मातृ दिवस यानी मदर्स डे की। माँ एक ऐसा शब्द जिसे बोलते ही मन में सुरक्षा, अपनापन और स्नेह की अनुभूति होने लगती है।

कुछ याद आए श्रोताओं, माँ वो है जो स्वयं तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, जिसकी दुआएं हमारी राहों की ढाल बन जाती हैं। कवि मुनव्वर राणा ने क्या खूब लिखा है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं मातृ दिवस। इसे मनाने की शुरुआत लगभग 100 वर्ष पूर्व हुई थी। अमेरिका की एक महिला एना जार्विस ने अपनी माँ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इसकी शुरुआत की थी।

जी हाँ श्रोताओं, माँ ऐसी ही होती है। हम बात कर रहे थे एन्ना जार्विस की माँ की। एन्ना जार्विस की माँ समाज सेवा किया करती थी। माँ के निधन के बाद एन्ना जार्विस ने सोचा कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जब पूरी दुनिया माँ के प्रेम और त्याग को सम्मान दे सके। इसके बाद वर्ष 1914 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने मई माह के दूसरे रविवार को आधिकारिक रूप से मदर्स डे घोषित कर दिया और धीरे धीरे ये परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई। भारत सहित अनेक देशों में ये दिन हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जैसा कि आज हम सभी मना रहे हैं। श्रोताओं, मदर्स डे मनाने का उद्देश्य माँ को केवल उपहार देना ही नहीं है, बल्कि माँ के उस अथाह प्रेम को महसूस करना है जिसे हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते।

श्रोताओं, माँ सुबह की पहली प्रार्थना है, रात की आखिरी चिंता है। वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। महादेव वर्मा जी ने भी क्या खूब लिखा था, माँ का स्नेह वो छाया है, माँ की स्नेह माँ का प्यार ऐसा होता है जिसमें जीवन की सारी थकान मिट जाती है। और अब्दुल रहीम खाने खाना की भावना भी यही कहती है कि संसार में सबसे निर्मल प्रेम माँ का ही होता है।

श्रोताओं, आज के इस आधुनिक दौर में जब लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं, कई बार माँ केवल एक फोन कॉल, एक मुस्कान या दो पल साथ बैठने की प्रतीक्षा करती रह जाती है। याद रखिए श्रोताओं, माँ को महंगे उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका समय, आपका सम्मान।

श्रोताओं, अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो उनके पास बैठा करिए, उनका हाथ थामिए और बस इतना कह दीजिए, माँ आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अनमोल व्यक्ति हैं, और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनकी यादें, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। कहा भी क्या है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसके प्यार का कोई तोल नहीं होता। जिसके सिर पर माँ का हाथ हो उससे ज़्यादा अमीर कोई और हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वो हमारे संस्कारों की नींव होती हैं, हमारे व्यक्तित्व की पहली शिला शिल्पकार होती हैं। इसलिए आइए इस मातृ दिवस पर केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन अपनी माँ के सम्मान और प्रेम को अपने व्यवहार में उतारने का संकल्प लें। अंत में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना को याद करते हुए, ईश्वर का प्रेम हर जगह दिखाई नहीं देता लेकिन माँ के रूप में वो हमारे बहुत करीब होता है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी माँ को धन्यवाद करें, उनके त्याग को प्रणाम करें।

और श्रोताओं, फेसबुक के माध्यम से हमें कुछ विचार प्राप्त हुए हैं, आपसे साझा करना चाहेंगे। नीरा त्रिपाठी जी लिखती हैं, माँ बिन जीवन सोना सोना है, माँ ही जीवन की सवारी है, माँ ममता का सागर है, माँ स्नेह का शीतल झरना है, माँ तो शीतल छाया है, माँ का प्यारा टूट है, माँ तो माँ होती है, सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का होता है, माँ हमारी आन बान और शान है, माँ बिन जीवन बेकार है। गिरीश श्रीवास्तव जी लिखते हैं, कोई तुलना नहीं अमृत किया पय पान, अम्मा का मिला सम्मान उसको जिसने की सम्मान अम्मा की, वो चाहे कृष्ण हो या राम लेकर धरती पर जन्म आए हैं सभी, किया करते हैं दिल से देवता अभिमान अम्मा का, भला हिम्मत है किसकी जो करे अपमान अम्मा का, सराखों पर महज मंशा ही है फरमान अम्मा का। बहुत खूबसूरत कविता इन्होंने लिखी है, काफ़ी बड़ी है, फिर किसी और दिन फुर्सत से पूरी ज़रूर हम सुनवाएंगे श्रोताओं आपको। आखिरी पंक्तियों में इन्होंने लिखा है, बनारस की सुबह सी और अवध की शाम है अम्मा, कभी मथुरा कभी गोकुल कभी ब्रज धाम है अम्मा, उऋण होना असंभव है, ऋणी हूँ आखिरी दम तक, मेरा संपूर्ण जीवन ही तुम्हारे नाम है अम्मा। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए और हम तहे दिल से अपनी माँ का शुक्र माँ के शुक्रगुजार हैं और चाहेंगे कि उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अब दीजिए इजाज़त कार्यक्रम समापन की। आप सुन रहे थे नमस्कार प्रयागराज।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, अभी आपने सुना था राजी फिल्म का गाना हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन के स्वरों में। लिखा था गुलजार ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत था।
1: ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं।
0: और ये गाना हम आपके लिए जो लेकर आए हैं फिल्म रॉकी पुरानी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

और श्रोताओं, रॉकी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।

0: समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
1: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
2: धन्यवाद ओम जी।
1: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
2: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
1: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
2: हम लोगों ने 3 जनपदों में जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
2: मैं आपके प्रश्न को 2 भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम

0: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी।

0: तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया हैं। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनकी भी गणना की जाती है और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप को यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पांस फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच, तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते।
1: जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कम्प्लीट करे, तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहां आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं

0: जनगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोग के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं। तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेज हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या है?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में आरडब्ल्यूए के माध्यम से, क्योंकि आरडब्ल्यूए सभी जगह जहां पर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे, और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओमली।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खुसूसी उर्दू प्रोग्राम बैत बाजी। कार्यक्रम में शिरकत की है मुमताज पीजी कॉलेज

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद दिलचस्प और लुत्फ अंदोज होने जा रहा है, क्योंकि आज का उर्दू प्रोग्राम अपने आप में एक खुशबू समेटे हुए है, और उस खुशबू को अगर कोई नाम दूं तो बैतबाजी से बेहतर मेरे जहन में कोई दूसरा नाम नहीं है। तो चलिए आज का उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी के सुपुर्द करते हैं और आपको बताते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में सबसे पहली बैतबाजी में हमारे साथ शरीक सफर कौन है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल आज की बैतबाजी में दो टीमें हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, जिनका ताल्लुक मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से है। इन दो टीमों में जिन्होंने शिरकत की है, टीम ए में है मोहतरम जनाब मोहम्मद कमरुल साहब और मोहतरमा सना खातून साहिबा, और टीम बी में है मोहतरम जनाब एजाजुर रहमान साहब और मोहतरमा मंतशा खातून साहिबा। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: शुक्रिया।
0: तो चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं टीम ए के लिए अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आंख उनसे जो मिल जाए तो क्या क्या नहीं होता, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अलिफ टीम ए के लिए।
2: इधर जो डूब गया तो मैं उधर निकलूंगा,
0: इधर जो डूब गया तो मैं उधर
2: निकलूंगा, खिलूंगा शम्स के मानिंद जिधर निकलूंगा।
0: वाह।
2: मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें, मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें, अपने दिलों में ढूंढिए मैं उधर निकलूंगा,
0: उधर निकलूंगा भाई। वाह अलिफ।
3: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा,
0: अरे रे क्या बात है, बहुत खूब।
3: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पर मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा,
0: तो मैं तुम्हारा। अलिफ टीम ए के लिए।
4: उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया,
0: आखिर काम तमाम किया। अलिफ।
4: अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात,
0: शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ते
4: तू जफा में मस्त है रोज शब, मैं कफन बदोश हूँ गजल बलब।
0: वाह।
4: तू जफा में मस्त है रोज और शब, मैं कफन बदोश हूँ गजल बलब, तेरे रोब हुस्न से चुप हैं सब, मैं भी चुप रहूँ तो मजा है क्या।
0: वाह मजा है क्या। अलिफ।
3: अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा।
0: वाह।
3: अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा।
0: वाह बहुत खूब अलिफ।
2: एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, कि एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ, इश्क का आखिरी मकाम है मौत, इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं आखिरी मकाम पे हूँ।
0: बहुत खूब कमरुल साहब ने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा जी।
4: नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और,
0: कोई दिन और,
4: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ,
0: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अलिफ।
3: अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर।
0: हाँ बहुत खूब।
3: अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो उनसे मोहब्बत और बढ़ती है।
0: बहुत खूब एजाजुर रहमान साहब, बहुत खूब।
4: ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ,

0: कैसा है राह में तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ, अभी चार काटे चुभे नहीं तेरे सब इरादे बदल गए।
1: बदल गए
0: ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गिरेबां चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे,
1: दम नहीं लेंगे।
2: ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो,
1: ये बात तुम अपने
2: दिमाग से निकाल दो, ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि माजरत करेंगी हवाएं चराग से।
1: क्या बात है,
3: ये मुमकिन है कि हम इनको बहुत चाहें वो कम चाहें,
1: बहुत खूब,
3: ये मुमकिन है कि हम इनको बहुत चाहें वो कम चाहें, ये मुश्किल है कि वो औरों को चाहें उनको हम चाहें,
1: उनको हम चाहें।
2: नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आँख है, नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आँख है, उसके इंजील से चेहरे पे जबूरी आँख है, बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आँख है, छोड़ आया हूँ किसी आँख में बिनाई को और बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आँखें,
1: आँखें।
0: न समातों में तपिश घुले न नजर को वक्फे अजाब कर, न समातों में तपिश घुले न नजर को वक्फे अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर,
1: कर रे से।
2: रास्ते में खतरे बहुत हैं पर ठहरता कौन है,
1: रास्ते में खतरे बहुत,
2: रास्ते में खतरे बहुत हैं पर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है,
1: डरता कौन है।
2: इन लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, इन लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है,
1: कौन है।
0: ये बात निराली दिले खुददार करे है, ये बात निराली दिले खुददार करे है, तड़पे है मगर दर्द से इनकार करे है,
1: करे है।
0: यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना,
1: इंसान जाना।
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता,
1: अंदाज अच्छा है बहुत खूब।
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता,
1: क्या होता।
3: हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता,
1: तो क्या होता। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। टीम ए के लिए अलिफ।
2: ए वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था,
1: हाँ।
2: ए वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जब निभाना ही नहीं था, इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था,
1: आना ही नहीं था। अलिफ से।
3: अहले हवस क्या साथ निभाते सख्त कठिन थी मंजिल, मंजिल,
1: मंजिल।
3: अहले हवस क्या साथ निभाते सख्त कठिन थी मंजिल, मंजिल, इश्क तो आखिर इश्क ही ठहरा, राह ढूंढे मुश्किल, मुश्किल। जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जैसे नैया डगमग डगमग जैसे दीपक झिलमिल, झिलमिल,
1: झिलमिल, झिलमिल।
2: लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं, लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है,
1: वाह,
2: लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है, एक हम हैं कि पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं।
1: बहुत खूब।
3: न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली,
1: कहां मिली।
3: न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरा अफ़्व बंदा नवाज में,
1: वाह नून।
2: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते,
1: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते,
2: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर ये दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते,
1: बेगाने कहाँ जाते।
0: ये वसल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ, ये वसल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ, तुम्हारे चेहरे का ये उजाला सहर से पहले सहर न कर दे,
1: बहुत खूब, सहर न कर दे।
0: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता,
1: जो न बादा ख्वार होता। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप, क्या बात है इसके शेर।

0: अच्छा लग रहा है ना।
1: अब अपना किस्सा गम क्या कहूँ यूँ समझ लीजिए, अब अपना किस्सा गम क्या कहूँ यूँ समझ लीजिए, मुझे धोखा दिया है दोस्तों ने आप ही जैसे, मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें, मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें कि रख दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे,
0: कि रख दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे। ये
2: यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो,
0: वाह
2: यूं ही बेसबब न फिरा

0: क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तो उसी को प्यार करे है क्यों, कलीम तुझको हुआ है क्या।
1: क्या
2: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको, मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो फूल हूँ तो फिर जूड़े में सजा ले मुझको,
1: सजा लो मुझको।
3: वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था, वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था, आपको छेड़ा था जिसने दूसरा था मैं न था,
1: मैं न था।
3: मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, वो तो मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था मैं न था। हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी, हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी, आपके सर की कसम दस्ते सबा था मैं न था,
1: मैं न था। वाह बहुत खूब।
0: उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं।
1: सामिन आखिर के दो दो शेर और इस राउंड में, उसके बाद हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जी पढ़े।
3: निगह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, निगह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है।
1: ये
2: यूं मुझसे वो ताल्लुक छुपाता भी नहीं, पर हाल जिगर खुल के बताता भी नहीं, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और बातों के सिवा उसे कुछ आता भी नहीं,
1: आता भी नहीं। सामिन हमारी बैतबाजी का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और हमारी दोनों टीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अब हम अगला राउंड करते हैं और ये लफ्जी राउंड होगा जिसमें हम दोनों टीमों को दो दो वर्ड देंगे, दो दो हर्फ देंगे, आपको उस पर शेर कहना है। तो आप लोग तैयार है ना? चलिए हम टीम ए के लिए पहला लफ्ज है दश्त।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने,
1: वाह।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने,
1: बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहुत ही खूब, शायद अल्लामा इकबाल का ये शेर है। जी टीम बी के लिए पहला लफ्ज है चमन।
3: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने,
1: हाँ।
3: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी।
1: वाह बहुत खूब। एक बार फिर से हम टीम ए की तरफ चलते हैं और इनको जो लफ्ज देते हैं वो है खंजर।
0: दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो,
1: तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत खूब। टीम बी के लिए अगला लफ्ज है बरसात।
3: धूप कहें जब धूप नहीं, रात कहें जब रात नहीं, दीवानों की बात समझना सबके बस की बात नहीं, मैं खाने पर जब भी देखो बादल छाए रहते हैं, मैं खाने पर जब भी देखो बादल छाए रहते हैं, जिनके घर में आग लगी है उनके घर बरसात नहीं।
1: बरसात नहीं। बहुत खूब एजाजुर रहमान साहब, बहुत ही अच्छा। आप दोनों ने दो दो लफ्ज से अपने अशार कहे और बहुत ही अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर रहा है। हम अब तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं, जो एक मिसरा हम देंगे किसी मशहूर शायर का, एक मशहूर शेर, आपको वो शेर मुकम्मल करना है। दो दो मिसरे हम आप दोनों को देंगे। पहले टीम ए के लिए मिसरा है, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता।
0: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता,
1: नबादा खार होता। बहुत ही खूब। टीम बी के लिए है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
3: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: बहुत खूब बहुत खूब। टीम ए के लिए है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है,
0: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है,
1: बाग तो सारा जाने हैं। टीम बी की तरफ एक बार फिर से बॉल करते हैं और देखते हैं क्या सोच के लाते हैं। मिसरा है आपके लिए दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।
3: तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।

0: वाह क्या खूब है, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ख्वाजा मीर दर्द का गालिबन ये शेर है। सामिन, ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। अभी आप समात फरमा रहे थे बैतबाजी, और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छे अशार कहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब इन दोनों टीमों के बारे में अपने तासुरात पेश करें।
1: सामाइन, आसिफ इकबाल का आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, आपने आज का उर्दू प्रोग्राम सुना बैतबाजी। आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको कुछ बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में हमारी टीम की यह एक चाहत थी कि हम लोगों के एक कैंपस में जाएं, हम यूथ से, नौजवानों से, स्टूडेंट से रابطہ कायम करें, उनके साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करें। इसी सिलसिले में हमने जो पहला प्रोग्राम शुरू किया था वो था कैंपस डायरी। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से हम बात करते हैं, और दूसरी ज़रूरत हमको ये महसूस हुई कि उन स्टूडेंट्स को हम अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाएं। इसलिए हमने ये बैतबाजी का प्रोग्राम शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की दोनों टीमों के जो अफराद हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं, और इनके आने वाली ज़िंदगी के लिए इनको हम मुबारकबाद पेश करेंगे और बहुत सारी दुआएं देंगे इनको।
2: शुक्रिया।
1: तो सामईन, आज के प्रोग्राम के लिए अगर आपको जो पसंद आए तो इसके लिए आप अपने तासुरात हमको जरूर लिखें, हमको जरूर बताएं। तो शमसुल जी, हमारा पता जरा इनको बता दें, हमारे सामईन को।
0: सामईन, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम था, और हम अपनी दोनों टीमों के बहुत मशकूर हैं। आप दोनों ने हमारे उर्दू प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी, जिसमें शिरकत करने वाली टीमों का ताल्लुक था मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से। हमारे साथ शरीके महफिल थे जनाब कमरुल साहब, सना खातून साहिबा, जनाब एजाजुर रहमान साहब और मंतशा खातून साहिबा। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? आप अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। सुन लीजिए फिर से, 7991778157। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। बस थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं कल्याणी मुखर्जी। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत।

अभी आपने सुना कल्याणी मुखर्जी के स्वर में सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने को है, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में। ये समाचार हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।

0: मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आइए आपको सुनवाते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माथुर में अभी आपने सुना हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत, और लीजिए अब सुनिए इनके स्वर में ये दादरा।

लोकगीतों के इस कार्यक्रम लोक माधुरी में अभी आपने सुने थे हरविंद कुमार यादव और साथियों के सुर में देवी गीत और दादरा, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं वत्सला मनोहर देवधर के स्वर में लोकगीत। सबसे पहले सुनिए ये देवी गीत।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार थे हरविंद कुमार यादव और साथी और वत्सला मनोहर देवधर। आपने सुने इनके स्वर में लोक गीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं, अब समय उजला है फिल्म संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले बाजीगर फिल्म का गाना। गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, गीत के बोल लिखे हैं नवाब अर्जू ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर की शब्द रचना, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजें हैं। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी, इस फिल्म का गाना।

और ये आपके रेडियो सेट पर आ गया है अगला गाना फिल्म संगीत कार्यक्रम का बॉर्डर फिल्म से। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर की शब्द रचना, अनु मलिक का संगीत।

लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म फूल और कांटे में, नहीं माफ कीजिएगा, फिल्म का नाम है दीवाना। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजें हैं। समीर की शिव रचना, नदीम श्रवण का संगीत है।

अभी आपने सुना था फूल और कांटे फिल्म का गाना। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें थीं, समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत। और अब लीजिए सुनिए यस बॉस फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। आखिरी गाना आपने सुना साजन फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत था। कार्यक्रम अभी और भी हैं, सुनते रहिए हमारे केंद्र से प्रसारित विविध कार्यक्रम और कीजिए अगली उद्घोषणा का इंतज़ार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग, और मैं हूँ रितंद्रा दीदी।
1: और मैं हूँ शारदा दीदी। बच्चों, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं मातृत्व दिवस।
0: और बच्चों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार समाया है ना बच्चों। वो माँ जो खुद भूखी रखकर हमें खिलाती है, याद करो, जो खुद थक कर हमें सुलाती है। सच बच्चों, माँ का प्यार अनमोल है।
1: सच दीदी, माँ की ममता एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई का कोई भी मापा नहीं जा सकता है ना। और बच्चों, जब भी आपको माँ की याद आती है तो उसकी

0: आंचल इतना सॉफ्ट, इतना ठंडक देता है जिसका हद नहीं, उसकी लोरी और उसकी दुआएं शामिल होती हैं हमेशा हमारे साथ।
1: और शायद शायद शारदा दीदी यही वजह है कि बच्चों की जब भी हम कहीं दूर जाते हैं ना, तो माँ से सब माँ ही सबसे पहले याद आती है ना, और उसकी आवाज़, उसका स्पर्श, सब कुछ हमें सुकून देता है। तभी तो कहते हैं माँ एक शब्द नहीं एक एहसास है, वो छाँव है तपती धूप में, वो सुकून है हर थकान में, माँ की ममता बहती है जैसे गंगा हर इंसान में।
0: जब दुनिया ठुकरा देती है बच्चों, तो माँ गले लगा लेती है ना। देखो कोई भी समस्या हो, अगर आप माँ से कहते हैं तो माँ उसका हल भी निकाल लेती हैं और आपको साहस भी बांधती हैं, खामोश आंसुओं को भी वो मुस्कान बना देती है ना। तो आज के पावन मातृत्व दिवस पर सभी माताओं के हर आंचल को हम अपने जीवन का स्वर्ग बनाएं और कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं।
1: ये तो भाई सही बात है, और बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे कि माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको कहना मानना चाहिए, है ना। और बिल्कुल देखो, माँ के चरणों में ही बसता है सारा संसार, माँ तो जीवन है, माँ है तो हर खुशी अपार। तो आइए आज के इस खास मौके पर हम सभी अपनी अपनी माँ को दिल से धन्यवाद कहें, उन्हें सम्मान दें, प्यार दें, गले लगाएं, और अगर दूर है तो एक प्यारा सा संदेश ज़रूर भेजें। और इस प्यारे से संदेश के बाद बच्चों सुनवाते हैं एक कहानी कि सुनेंगे बच्चों। तो बच्चों को सुनवाते हैं कहानी पवन और समुद्र का तूफान, निधि खन्ना दीदी से।
2: बच्चों आज की कहानी का शीर्षक है पवन और समुद्र का तूफान। समुद्र के किनारे एक गांव में लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी बनाकर एक मछुआरा रहता था। उसका नाम था रमाशंकर और उनकी उम्र रही होगी लगभग 75 वर्ष। उनके चेहरे पर समुद्री हवाओं और सूर्य की तेज किरणों का असर साफ दिखता था। उनके हाथों में नमकीन पानी की लकीरों के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शांति थी। 6 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। एक बेटा था जो शहर में रहता था और कभी कभार ही गांव आता था। इन्हीं कारणों से रमाशंकर बस अपने मित्र विशाल समुद्र के साथ रहते थे। वे समुद्र से बातें करते, उसे सुनते और समुद्र उन्हें अपने ढंग से जवाब देता था। रोज सुबह रमाशंकर अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव, अपना जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाते। जितनी भी मछलियां मिलती वो उसमें संतुष्ट रहते, यही मानते कि सागर उन्हें यही देना चाहता है। कभी शिकायत न करना और हमेशा शांत रहना, गांव वालों के सामने भी यही रमाशंकर का परिचय था। एक सुबह रमाशंकर को अपने बेटे गगनदीप का पत्र मिला, जिसमें लिखा था गगनदीप का बेटा पवन अपने बाबा से पहली बार मिलने आ रहा है। पवन की उम्र 12 वर्ष की थी। गगनदीप अपने बेटे के व्यवहार से परेशान था, वो बहुत गुस्सा करता था, अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानता था और टीचर्स से भी ठीक से बात नहीं करता था। गगनदीप ने परेशान होकर उसे अपने पिता के पास भेजना चाहा। वो पिता जो हमेशा शांत रहते, जिनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। जब पवन गांव आने वाला था, तब रमाशंकर गांव के बस स्टॉप पर खड़े हो उसका इंतजार कर रहे थे। पवन बस से नीचे उतर रहा था, उसके गले में हेडफोन था, उसके बैग उसके कंधे से गिर जाने को तैयार थे। उसने रमाशंकर की तरफ देखा और चिढ़ कर कहा, आप ही मेरे दादाजी हो? रमाशंकर मुस्कुराए और बोले, तुम पवन हो ना, आओ गांव चलें, समुद्र भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पवन को गांव में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, न टीवी न इंटरनेट, बस छोटी सी झोपड़ी, सादा सा खाना। पवन बराबर शिकायत कर रहा था, बाबा आप यहाँ क्यों रहते हो, यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ क्यों आ गया? और रमाशंकर वो शांत होकर उससे कहते, कल सुबह मेरे साथ मछलियाँ पकड़ने चलना। पवन उनकी बात को सुनता ही नहीं, लेकिन 4-5 दिन बीत गए, पर वो इतना बोर हो गया था कि अगली सुबह नाव पर खुद ही सवार हो अपने दादाजी के साथ मछली पकड़ने चला गया। अभी सूरज निकला ही नहीं था, पवन भीतर से नाराज नाव के कोने

पर जाकर बैठ गया। रमाशंकर ने जाल फेंका और पवन से कहा, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। पवन को सब कुछ बुरा सा लग रहा था। कुछ देर में सूरज निकलने लगा और सूरज की किरणें पानी पर चमकने लगीं। आकाश में चिड़ियां चहचहाने लगीं और मछलियां पानी में ऊपर आने लगीं। भीनी सी हवा पवन को छू रही थी। इतनी सुंदर सुबह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सुबह जल्दी उठना सचमुच कीमती था। अगले दिन पवन मन से खुश होकर नाव पर खुद ही सवार हो गया, एक और सुबह के लिए। सुबह वैसी ही शांत थी, सुंदर थी, मन को छू लेने वाली थी। लेकिन कुछ बदल रहा था, कुछ दबे पांव आ रहा था। आज मछलियां पानी की गहराई में ही रहीं, वे ऊपर नहीं आ रही थीं। रमाशंकर ने आसमान की ओर देखा, हवा की गहराई को सूंघा और पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, बात क्या है बाबा? रमाशंकर ने कहा, तूफान आने वाला है, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करना होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा बाबा, आसमान साफ है, पवन ने कहा। रमाशंकर बोले, मेरा 60 साल का समुद्र का अनुभव है। उन्होंने अपनी नाव को वापस मोड़ा, लेकिन कुछ ही क्षण और सब बदल गया। आसमान में काले बादल, हवा में तूफान की रफ्तार, सूरज बादलों में छिप गया, लहरों ने खेल शुरू कर दिया। नाव हिचकोले ले रही थी और पवन सहमा हुआ था। नाव की दीवार को कस कर पकड़ उसने अपने बाबा को आवाज़ दी, नाव डूब रही है, हम क्या करें? उसकी आंखों में डर था और मन में भयानक घबराहट। उसे लगा उसके बाबा भी डरे हुए होंगे, लेकिन उसने कुछ और ही देखा। रमाशंकर नाव के बीच बैठकर आंख बंद कर धीमे धीमे गुनगुना रहे थे। पवन जोर से चीखा, बाबा कुछ करो, हम कैसे बच पाएंगे? रमाशंकर ने आंखें खोली, पवन के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और उसे अपने पास बिठाकर बोले, तूफान बाहर है, लेकिन उससे बड़ा तूफान तुम्हारे अंदर है। ये नाव मजबूत है, डूबेगी नहीं। तुम डरे हुए हो, चीख रहे हो, तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर का तूफान है। तूफान को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, हम शांत रहेंगे। हर तूफान एक समय पर शांत हो जाता है, ये भी शांत हो जाएगा। पवन अब भी रो रहा था, लेकिन अशांत लहरों के बीच उसने अपने बाबा को शांत और गुनगुनाते हुए देखा। पवन ने जो अनुभव किया वो अनोखा था। उसे लहरों का शोर भी सुनाई दे रहा था, खतरा भी दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक शांति थी जहां तूफान नहीं पहुंच सकता था। 1 घंटा बीत जाने पर तूफान शांत हो गया, सूरज फिर से चमकने लगा। पवन ने आंखें खोलकर देखा, उसके बाबा नाव चला रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पवन ने बाबा से पूछा, आप डरे नहीं? ये सब कुछ और आप? रमाशंकर ने कहा, हाँ मैं भी डरा, धड़कनें बढ़ीं, लेकिन मुझे पता है डर को हटा नहीं सकते, डर को अपने मन को मानने से रोक सकते हैं, क्योंकि डर डुबो तो सकता है, पार नहीं ले जा सकता। डर को शांति से जीता जा सकता है। पवन बहुत कुछ सीख चुका था। वो पूरी छुट्टियां अपने बाबा के साथ गांव में रहा, मछलियां पकड़ने जाता और कोई शिकायत नहीं करता। जब वो अपने माता पिता के पास घर पहुंचा, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पवन में इतना बदलाव कैसे आ गया है। वो शांत हो गया था। रमाशंकर और पवन अब भी एक दूसरे को पत्र लिखते। एक दिन पत्र में रमाशंकर ने पूछा, तुमने क्या किया पवन जो तुम इतना बदल गए? और पवन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तूफान ने किया। समय बीता, पवन बड़ा हुआ और एक दिन वो शिप का कैप्टन बना। उसने न जाने कितने तूफान, कितने मौसम अपने जहाज की रक्षा की।

0: आज उसकी पूरी क्रू टीम उसका सम्मान करती थी। वो हमेशा अपने बाबा को याद रखता था। जीवन में तूफान आ सकते हैं, लेकिन भीतर की शांति हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। अपनी असली ताकत को पहचानना होगा।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे कहानी पवन और समुद्र का तूफान। निधि और कहानी सुना रही थी निधि खन्ना दीदी।
2: तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी? भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, इससे सीख भी मिली और कहानी तो दिल को छू गई, है ना बच्चों? तो शारदा दी, भाई देखो हमारे स्टूडियो में तीन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो पहले तो हम इनको जो है, जो हमारे बच्चे जो रेडियो सुन रहे हैं, उनसे परिचय करा दें। तो आपका क्या नाम है बताइए?
3: मेरा नाम यशस्वी शिशि त्रिपाठी है।
2: क्या करती हैं आप, मतलब पढ़ती हैं?
3: जी।
2: किस क्लास में पढ़ती हैं?
3: एट्थ।
2: एट्थ में। और आज ये जो है आई हैं यहाँ पर अपने कुछ भजन लेकर, है ना हम लोग के बीच में?
3: जी।
2: तो वो गाएंगी। अब उनके बगल में बैठी हैं, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम ऐश्वर्या शिशि त्रिपाठी।
2: हाँ, और ये बहुत सबसे छोटी हैं, तीनों नन्हे साथियों में सबसे छोटी सी हैं और ढोलक के साथ बैठी हैं। मुझे लग रहा है कि ये ढोलक के साथ मुझे बजा के, इंस्ट्रूमेंट के साथ गाएंगी।
1: जितना बड़ा ढोलक है उतनी बड़ी तो मुझे ऐश्वर्या भी लग रही है।
2: और उसके बगल में बैठे हैं अपने सिंथेसाइजर के साथ, कौन? अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम अयांश यादव है।
2: तो हम भाई बच्चों का परिचय तो करा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे छोटी हमारे बीच में अभी जैसे कि परिचय दिया ऐश्वर्या ने, और वो ढोलक के साथ बैठी हैं एक गणेश वंदना के लिए, जब स्टूडियो में आई थी तो बताई थी। तो आप एक गणेश वंदना से अपनी शुरुआत करिए।
3: ओम गंगड़ पते नमा

0: क्या भाई इनके लिए तालियां हो जाए, बहुत ही ताल के साथ और भी गायकी करना इतने छोटे से बच्चे के लिए,
1: दीदी बजाना बहुत बड़ी बात,
0: बहुत बड़ी बात है और इसमें तो ये माहिर है, आगे भी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इनका अगर म्यूजिक में ही भविष्य बनाएंगी तो आगे जाएंगी। और इसी के साथ देखो अभी हमारे जो एक नन्हे साथी हैं अयाश ने परिचय दिया, अपने सिंथेसाइजर के साथ बैठे हैं, तो कौन सा राग सुनाएंगे?
2: राग जजवंती,
0: तो सुनाइए।
2: और एक और चीज बतानी थी मुझे कि इस मार्च मैं सेकंड प्राइज पाया हूँ अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्राग संगीत समिति में हुई थी, उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला है।
0: तो भाई सभी लोग इनको एक ताली से इनका सम्मान कर दें, हैं बहुत अच्छा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और अपने जो आपका शौक है या जो इसमें करियर बनाना चाहते हो उसमें भी आगे बढ़ते रहो। तो कौन सा राग सुनाने जा रहे हैं?
2: राग जजवंती।
0: चलिए

0: कोई टेक्निकल समस्या आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ और भी बताने वाले थे हम लोग के बीच में, तो वही बता दें।
1: बार बार कैशियो में पता नहीं क्या हो गया,
0: आप कुछ
1: सेल्फ
0: तैयार करके लाए थे आज बोलने के लिए,
1: हाँ
0: बताइए।
1: मम्मा हर कोई जानता है, हर किसी के पास मम्मा है, लेकिन एक चीज़ है, आधे लोग की मम्मा बचपन में ही
2: कुछ कुछ लोगों
1: हाँ
2: की
1: डेथ हो जाती है उनकी,
2: हाँ
1: इसलिए जो जिन लोगों को मिलती हैं उनकी मम्मियाँ वो लोग बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं।
0: ऐसा आयांश का मानना है, तो बिल्कुल सही कहा। और भाई जिसके पास मम्मियां हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको भाई ढेर सारा उनका आशीर्वाद लेकर आप लोग आगे बढ़ो, है ना, और खूब ढेर सा अपनी मम्मी पापा को प्यार दो। अब हमारे बीच में एक और रनी साथी बैठी हैं, आज क्या सुनाएंगी?
3: आज मातृ दिवस है
0: हाँ
3: तो आज मैं माता रानी पर ही भजन सुनाने जा रही हूँ।
0: चलिए
2: यशस्वी।
0: सुनाइए यशस्वी।

0: बढ़िया,
1: बहुत गाया
2: दीदी,
1: और उसने बजाया।
2: मातृत्व दिवस पे माँ का इतना सुंदर भजन,
1: बिल्कुल
2: सुन के तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा
1: भाई। बच्चों के अंदर तो टैलेंट ही भरा हुआ है,
2: बहुत अच्छा लगा होगा, है ना।
1: और हम बच्चों से और भी बातें करें, उससे पहले आज बच्चों, जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं कार्यक्रम, उनको बता दें आज का शब्द ज्ञान।
2: हाँ दीदी, आज हम शब्द ज्ञान में लाए हैं विवक्षा और हम्बक। हम्बक का अर्थ है धोखा देना या पाखंड, छल, कपट। यह किसी भी बात का या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो दिखावा करती हैं लेकिन वास्तव में वैसी ना हो, या जिनका उद्देश्य बेवकूफ़ बनाना हो। धोखा या पाखंड देना हो, जो व्यक्ति बात झूठी दिखावा करता हो, उसके लिए हम वक्त वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी मिला है विवक्षा। विवक्षा का अर्थ हिंदी में है कुछ कहना या कुछ बोलने की इच्छा व्यक्त करना। ये खास तौर से वक्ता और लेखकों को दुनिया में, मतलब कि उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये शब्द वक्ता की उस इरादे या तात्पर्य को दर्शाता है जिसके अनुसार वह किसी बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे कुछ व्यक्त करना या कुछ कहने की इच्छा करना।
1: बिल्कुल, और भाई दोनों का अर्थ ये है, बच्चे हमारे जान लिए। अब हम मुखातिब होते हैं अपनी छोटी सी नन्ही सी परी जो हमारे बीच में बैठी हैं, लाल लाल की ड्रेस पहन के सुंदर सी, और उनका जो ताल है वो ढोलक की ताल तो थम नहीं रही है। तो ऐश्वर्या बेटा बताओ, तुम क्या शौक है तुम्हारा आगे कुछ करने का?
3: मेरा शौक म्यूजिक है।
1: म्यूजिक है, म्यूजिक में ही म्यूजिक में क्या मतलब, गायकी भी करोगे कि इंस्ट्रूमेंट ही, इंस्ट्रूमेंटल की तरफ जाओगे?
3: दोनों
1: करोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम बच्चे इस चीज़
2: अच्छा, आपको खेलना भी पसंद है
1: और पढ़ना भी अच्छा लगता है? तो पढ़ने में कौन सा विषय अच्छा लगता है?
3: सब विषय,
1: सारे विषय अच्छा लगता है। बड़ी टैलेंटेड लड़की है भाई। तो ये बताओ, अभी तो तुमने बहुत सुंदर सी गणेश वंदना की थी, अब क्या सुनाओगी?
3: मैं मातृ दिवस पर चार पंक्तियां प्रस्तुत करने जाती हूं।
1: चलो सुनाओ।

0: ये बहुत सुंदर कविता सुनाई तुमने, और आज आज के अवसर पे, मातृ दिवस के अवसर पे। अयांश तुम भी कुछ कह रहे थे, बताओ।
1: वही बोल रहा था कि जो ब्लेस्ड लोग होते हैं, हाँ।
0: क्योंकि तुम काफी भावुक हो गए थे, तो अब कुछ कहना चाहो या कुछ बजाना चाहो तो
1: एक बार फिर से ट्राई करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: गायन में आप गा सकते हैं?
1: अभी क्योंकि मेरा फोर्थ ईयर ख़त्म होने वाला है एग्ज़ाम देने प्राग संगीत समिति में, उसके बाद फिफ्थ ईयर, उस जब फिफ्थ ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं गायन करूँगा।
2: अच्छा, तो अयांश ये बताओ कि तुमको अच्छा क्या लगता है, मतलब ये शौक ही अपनाया है या इसमें करियर बनाना चाहते हो?
1: कैशियो में करियर ही बनाना चाहूँगा मैं।
2: अच्छा, मैं बिल्कुल, और इसके अलावा तुम्हें क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे हॉबीज़ में मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है।
2: क्रिकेट खेलते होगे?
1: हाँ।
2: अच्छा, और पढ़ाई में कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: पढ़ाई में केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
2: अच्छा, मतलब एक तरफ संगीत दूसरी तरफ साइंस की तरफ है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है तुम्हारा। बिल्कुल, और क्या है सपना, क्या देखते हो कि क्या बनना है मुझे?
1: सपने में भी अगर क्रिकेटर नहीं हो पाया तो फिर म्यूजिशियन जरूर।
2: म्यूजिशियन मतलब ये सिंथेसाइजर बजाते रहोगे। बहुत अच्छे ख्याल है तुम्हारे। और इसी के साथ हमारे बीच में वो है यशस्वी भी बैठी हैं, तो क्या यशस्वी तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है और क्या बनना चाहती हो?
3: मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मुझे स्पोर्ट्स में भी काफी वो है,
2: तो स्पोर्ट्स में
3: बैडमिंटन खेलना।
2: बैडमिंटन खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हो। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है?
3: खाने में कुछ मतलब खास नहीं।
2: खास नहीं मतलब कुछ तो खाते होगे ना, जो एक आध होता है
0: मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है, आइसक्रीम पसंद है,
2: घर का ही खाना खाते हैं ना, बाहर का तो नहीं खाते?
3: बाहर का।
2: तो क्या पसंद है ये बताओ?
3: छोले भटूरे।
2: तो मम्मी बनाती होंगी। चलो बहुत अच्छा, बच्चों को छोला भटूरा अच्छा भी लगता है। तो अभी तो तुमने बहुत सुंदर गीत गाया, अभी कुछ गाओगे सुनाओ?

0: भाई वाह, क्या बहुत अच्छा, बहुत
1: हमारी
0: अच्छा,
1: गायकी और भाई ये जो ऐश्वर्या हमारे बीच में छोटी सी नन्ही सी परी बैठी हैं, इनकी जो ढोलक की ताल है वो तो बहुत ही आनंदित कर रही है सबको, है ना। और ये बताओ
0: सच में हम अपने साथियों को दिखा नहीं सकते कि ऐश्वर्या कितनी छोटी और कितनी प्यारी है और उतनी ही टैलेंटेड है ना दीदी?
1: हाँ, तो ये बताओ अभी तीनों जो नन्हे नन्हे साथी हैं, आज मातृ दिवस है, तो तुम लोगों ने अपने मम्मी को क्या किया है सुबह उठ के? कुछ सोचा है, कुछ किया है उनके लिए, कोई सहयोग किया है उनको?
2: अभी तो विश किया है खाली,
1: विश किया है
2: क्योंकि
1: तुमने?
2: अभी मुझे स्टूडियो आना था जल्दी थी, इसीलिए अभी विश किया है। बाकी गिफ्ट अभी हम जाके
1: गिफ्ट दोगे? चलो तुम उनको गले से लगा लो, प्रेम करो,
0: देखेंगे।
1: यही सबसे
0: यही
1: बड़ा
0: सबसे
1: गिफ्ट
0: बड़ा
1: है
0: गिफ्ट
1: ना।
0: है, सही
1: और
0: बात।
1: ऐश्वर्या तुम मम्मी को गाना सुनाओगी आज शाम को, है ना? तो बिल्कुल सुनाना। और तुम कुछ कहना चाहोगे अपनी मम्मी के लिए?
3: मैं भी सिर्फ विश ही कर रहा हूँ अभी।
1: अभी विश ही किया है, बिल्कुल। देखो सब माता पिता का दिल नहीं दुखाना है सबसे पहली बात आज मातृ दिवस पे। और जो बच्चे कभी कभी जिद कर लेते हैं ना, तो वो नहीं करना है। माँ को चूंकि देखो तुम्हारा केयर करती है, मेरी माँ ही सबसे अच्छी होती है जो केयर करती है ना घर में। और तुम लोग को यहाँ लेकर भी स्टूडियो में कौन आई है? माँ ही लेकर आई है, पिताजी भी आए हैं शशि के और ऐश्वर्य के, लेकिन जो है जो घर में जो केयरिंग है वो माँ ही ज़्यादा करती है। ठीक, तो माँ के प्रति तुम लोग का समर्पण भाव अच्छा है और सब बच्चों का अच्छा होना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अब ये बताओ कि ऐश्वर्या तुम ढोलक का रियाज करती हो क्या?
0: प्रैक्टिस करती हो
1: प्रैक्टिस
0: आप?
1: करती हो, बजाते हो कि सिर्फ जब जहाँ पे जाना होता है प्रोग्राम करने बस वहीं पे बजाते हो?
2: नो मैम, मैं प्रैक्टिस करती हूँ।
1: करते हो, ये अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी हॉबी है, तो मुझे लगता है उसमें करते भी होगा, पढ़ाई भी करते हो। कितने घंटे पढ़ते हो?
2: मैम मैं 2 घंटे पढ़ती
1: दो
2: हूँ।
1: घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे कुछ नहीं करते हो उसमें? ठीक, ये तो बड़ी अच्छी हैबिट है। और तुम्हें क्या पसंद है खाने में? तुम भी छोला भटूरा?
2: यस मैम।
1: दोनों सेम है, छोला भटूरा, यानी कि मम्मी हर हफ्ते में बनाती है कि महीने में बनाती है तुम्हारे पसंद का?
2: मैम महीने में एक बार।
1: महीने में, महीने में खाते हो छोला भटूरा। चलो कोई बात नहीं। तो ये बताओ कि अभी तुम कुछ बता रही थी गाने के लिए, और अगला कौन सा गीत सुनाओगे अपने नन्हे साथियों को?
2: मैम पापा जी पर
1: सुनाओ।
2: आज मातृ दिवस है, लेकिन पिताजी का भी उतना ही योगदान है जैसे आज
1: बिल्कुल
2: पिताजी
1: बिल्कुल,
2: का है
1: माता
2: मेरी।
1: पिता दोनों एक ही जैसे हैं, सम्मान दोनों का बराबर हो।
2: माँ के हैं श्रृंगार पिता, बच्चों के संसार पिता, माँ आंगन की तुलसी है, द्वारे वंदन वार पिता, घर की नींव सरी की माँ, घर की छत दीवार पिता, माँ कर्तव्य बताती है, देते हैं अधिकार पिता, बच्चों की पालक है माँ, घर के पालनहार पिता, माँ सपने बुनती रहती, करते हैं साकार पिता, बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिता, आज विदा करके बेटी को रोए पहली बार पिता, बच्चे खुशियां पाए तो कर दे जान निसार पिता, घर को जोड़े रखने में टूटे कितनी बार पिता, घर का भार उठाते थे अब है घर के भार पिता, बंटवारे ने बांट दिया है बूढ़ी माला चार पिता, बूढ़ी माला चार पिता, बच्चों के संसार पिता, बच्चों के संसार पिता, बच्चों के संसार पिता।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी भाई
0: अच्छा,
1: सोच
0: बहुत
1: है
0: अच्छा,
1: ऐश्वर्या।
0: बहुत
1: और
0: अच्छा।
1: मैं तो कहूँगी जो बच्चे सुन रहे हैं, जो ऐश्वर्या ने जो शब्द शाब्दिक अर्थ समझाया ये अपने कविता के माध्यम से, ये हर बच्चे के अंदर ये भावना होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना। और अब हमारे बीच में यशस्वी कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ गाएंगी, तो क्या बजाओगी अभी, क्या सुनाने जा रहे हो अपने नन्हे साथियों को?
2: माता रानी पर एक और भजन।

0: सार्थक कर दिया मातृ दिवस को, है ना
1: बिल्कुल
0: बच्चों? और भाई बहुत अच्छा भजन भी तुम लोग गाते हो, और ऐसे ही रियाज करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हम लोग के बीच में भी आके और भी ऊपर स्टेज पे जाके गाने को और अपनी जो सुर साधना है उसको आगे बढ़ाते रहो। हम सब की आज मातृ दिवस पे तुम लोग को शुभकामनाएं हैं, है ना? और मुझे ऐश्वर्या एक भजन सुनाना चाह रही थी, तो अब समय भी बहुत करीब आ रहा है, तो कौन सा भजन सुनाना चाह रही हो जल्दी से हमारे बच्चों के बीच में गाओ।
1: क्या बात है।

0: वाह, इतना सुंदर भजन तुमने सुनाया और पूरा जो स्टूडियो है वो भक्तिमय हो गया है
1: भक्तिमय
0: ना।
1: हो गया।
0: और आज जो मातृत्व दिवस पे सभी बच्चे, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो नन्हे मुन्ने साथी अपना बाल संग कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो

0: उनको भी मैं कहूँगी कि अपने माँ बाप का को ढेर सारा प्यार दीजिए, उनसे ढेर सारा प्यार जो है प्राप्त करिए, है ना, और अपने बड़ों का कहना मानना है और उनका दिल नहीं दुखाना है ना। और जो हमारे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, इसी तरह आप भी आ सकते हैं हमारे स्टूडियो में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पूछते भी हैं।
1: और दीदी, हाँ, हम अपने श्रोता साथियों से कहना चाहते हैं कि आपको हमारा बाल संग कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिख भेजें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
0: और देखो इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो बच्चों से कहते हैं जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संघ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவு கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए

इन नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is participating in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. Earlier, he inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. We now go over live to Prime Minister's address to the devotees of Art of Living Foundation.
1: Tavaran kuch alag hi hota hai. Ye shahar software aur services ke liye duniya bhar mein jana jata hai. Lekin Bharat ki sanskritik pehchan, spirituality, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है. योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है. साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले Art of Living के रूप में एक बीज बोया था.
0: Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for national policies implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. He was addressing BJP cadres in Bengaluru.
1: भारत की जनता कह रही है

हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रवि वासुरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रविशंकर उपाध्याय का पखावज वादन सुनवाएंगे दिन में 12:15।

अपने फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30। कलाकार होंगे बीना रानी श्रीवास्तव, राजा राम यादव, सूर्य प्रकाश पटेल और साथी। ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल लेकर के आएंगे 5:00। इसके अंतर्गत शीला सोनकर की वार्ता होगी वन हमारे देवता।

हेलो युवा। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुनेंगे रोज की तरह शाम 6:30 बजे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज खेती किसानी की बातचीत के साथ साथ सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां इस श्रृंखला के अंतर्गत आज शाम 7:31 पर सुनिएगा प्रोफेसर अली अहमद फातमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता। अपने पत्रों के उत्तर सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी आई है में, प्रसारण समय रात 8:00।

भंडा फोड़ प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की लिखी है झलकी सुनाएंगे। आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:30 बजे।

और गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा रात 9:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज की शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रविशंकर उपाध्याय का तीन ताल में पखावज वादन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री शमशाद अहमद खान और तानपुरे पर हैं ऐना बोस।

पंडित वासुदेव उपाध्याय का चक्रधार। धा

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रविशंकर उपाध्याय का तीन ताल में पखावज वादन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री शमशाद अहमद खान और तानपुरे पर थी आयना बोस। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उनको, उनके श्री चरणों में जिन्होंने गढ़ा है हमें, जिन्होंने रचा है हमें, जिन्होंने तिनका तिनका बुना है हमें, जो हमें संसार में लेकर के आई हैं, जिन्होंने हमें सांसें भरी हैं, जिसने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हंसना खेलना कूदना सिखाया, नए रिश्तों की पहचान कराई। जी हां, आज हम मना रहे हैं मातृत्व दिवस। हालांकि मां की परिधि इतनी व्यापक है कि उसे किसी दिन में नहीं बांधा जा सकता। मां, मां को बांधने के लिए तो शब्द कम पड़ जाएं। उसकी ममता का विस्तार इतना है जिसे बांधा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति हमारी कल्पना से भी बहुत परे है। समुद्र से विशाल है मां की ममता। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका, दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है,

मैं ही मैं हूं हर जगह। प्यार ये तेरा कैसा है? सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूं, कितना भी हो जाऊं बड़ा, मां मैं आज भी तेरा बच्चा हूं। मां के लिए दुनिया में सबसे सुंदर कौन? उसका बच्चा। बच्चा चार दिन मां की आंख से उछल रहे, फिर मां देखे मेरा बच्चा दुबला हो गया। ये कोमल भाव, ये मनोभाव एक मां के बक्षस्थल से ही उठते हैं, जिसे किसी चीज की स्वाद की अनुभूति मात्र उसके पुत्र के खा लेने से हो जाती है, उसकी पुत्री के खा लेने से हो जाती है। गांव की वो मां जिसका बच्चा लंबे अरसे से शहर में पढ़ाई के लिए गया है, घर में त्योहार आते हैं, जब चार महीने बाद बच्चा घर लौटता है तो अनाज के भंडारे में, अनाज की डहरी में, पोटली में बंधी उसकी वो मिठाई तब भी रखी हुई मिलती है। वो खाने लायक हो या ना हो, लेकिन मां का कलेजा नहीं मानता, वो एक एक चीज सहेजती है अपने बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि मां तो मां है ना।

अभी आपने ये गाना सुना जिसे हमने लिया था फिल्म पांच कैदी से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, शब्द रचना अनजान की और संगीत रचना बप्पी लाहिरी की थी। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माँ की। पिताजी काम पर जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धंधा रोजगार दुकान देखते हैं। माँ आँख खुलने से हमारे दुनिया देखने तक हमारे साथ होती हैं। माँ से ऐसा जुड़ाव होता है कि किसी और जगह पर जाने पर हमें तुरंत अनुभूति हो जाती है, छोटा सा बच्चा भी रोने लगता है, एक दुधमुहा बच्चा, वो भी पहचानता है अपनी माँ को। माँ को देखते ही उसकी आंखों में एक मोहक सी मुस्कान आ जाती है, होठ थिरक उठते हैं। दुनिया में बहुत कुछ होता है हमारे सीखने के लिए, हमारे देखने के लिए। हम सब कुछ नहीं जानते, कभी सहम जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी बहुत अनसुलझे से हो जाते हैं। पग पग पर हमारे साथ होती है हमारी माँ, हमें समझाती हैं, दुनिया दिखाती हैं, हमें हिम्मत बंधाती हैं। और बहुत कुछ बिना हमारे कहे ही हमारी माँ समझ जाती हैं। हमारी भूख प्यास की चिंता हमसे ज्यादा जिन्हें है, हमारे दर्द का एहसास हमसे ज्यादा जिन्हें है, वो हैं हमारी माँ।

की मां नहीं तो जीवन की शुरुआत बिल्कुल अधूरी, बिल्कुल कोरी, बिल्कुल अनसुलझी। क्योंकि सुलझती तो तभी है जब माँ साथ होती है, क्योंकि माँ को बिना हमारे कहे सब कुछ पता होता है।

शाम को थकार कर जब आप घर जाते हैं, दुनिया भर के सवालों की बौछार आप पर होती है। क्या किया, कितना किया, हुआ नहीं हुआ, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कब तक हो जाएगा। दूर कोने से माँ की आवाज आती है, बेटा कुछ खाया या नहीं कि दिन भर यूं ही भागते रहे। ये जीवन नश्वर है, यहां जो भी आता है उसको जाना होता है। जब तक मां है उनकी कदर करिए, उन्हें प्रेम करिए, उन्हें संभाल कर रखिए। आपके पास जो भी दौलत है, हर उस दौलत से ज्यादा कीमती हैं हमारे मां बाप, क्योंकि वो हमसे नहीं, हम उनसे हैं। और जब हम इस दौलत को संभाल लेते हैं तो हम न सिर्फ एक विरासत को संभाल रहे होते हैं, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं और अपने आने वाले कल को भी संरक्षित कर रहे होते हैं। क्योंकि जब माँ साथ नहीं होती है ना, तो पल पल उनकी कही बातें याद आती हैं।

हाय, आज के दिन को कुछ यूं मनाएं कि हम प्रण लें कि हम हर दिन मातृ दिवस के रूप में मनाएंगे, मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाएंगे। उनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हालांकि असंभव है उस तरीके से कर पाना, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमें बचपन में उनकी देखभाल जैसी याद आती है उसी तरीके से उन्हें भी संभाल कर रखेंगे, सर्द नर्म हवाओं से बचा करके रखेंगे, अपने घर की खुशियों को उनके रंग में रंग कर सजा कर संभाल कर रखेंगे। और इस भाव को बस आज ही के दिन नहीं बल्कि हर पल समेट कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे, हर दिन मातृत्व दिवस मनाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र को नमस्कार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी

0: से विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर

0: 1:11 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम दिल ढूंढता है
1: ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियसना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन

0: में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए दो रोजा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चा और दो खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं, प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर।
0: जी विकास जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है धर्मात्मा
0: जी,
1: और गाने का बोल है तुमने कभी किसी से प्यार किया है।
0: जरूर सुनवाएंगे विकास जी। कुछ कहना चाहते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: जी मैडम, हम यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी प्रयागराज से कार्यक्रम बहुत अच्छे आते हैं। जो आपकी पसंद होता है कार्यक्रम, वो बहुत लाजवाब प्रस्तुत किया जाता है आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पसंद आते हैं, और हमारे इस आकाशवाणी परिवार से यूं ही जुड़े रहिए और अपनी पसंद के गानों को सुनते रहिए। तो अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम रेखा वर्मा है, उज्जैन से बोल रही हूँ।
1: रेखा वर्मा जी ने उज्जैन से कॉल की है, तो बताइए रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ले तो आयो हमें सपनों के गाँव।
1: जरूर सुनवाएंगे। रेखा जी, पहला कॉल है आपका ये?
0: जी जी।
1: कैसे लगते हैं हमारे आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम, कुछ बताएंगी आप?
0: नहीं मैडम, अच्छे लगते हैं, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं,
1: सारे
0: मैं कम सुन पाती हूँ।
1: हाँ हाँ, तो आप जॉब करती हैं क्या?
0: नहीं मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ मैम, घर पे
1: अच्छा,
0: पार्लर चलाती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज आपने हमें कॉल किया अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए। हमें कॉल करते रहिएगा। तो रेखा जी, आपने किसी का नाम तो नहीं लेना है?
0: नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड का नाम लेना चाहती हूँ मैं, लोकेंद्र वर्मा जी।
1: अच्छा अच्छा जी, हाँ उनका कॉल आता रहता है हमारे इस कार्यक्रम में।
0: जी।
1: तो आपको सुनवाते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
0: जी।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: रेखा यादव कुकुढ़ा से बोल रही हूँ मैम। नमस्ते।
0: नमस्ते रेखा जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कौन सा गीत चुना है आज आपने हेलो अनुरोध कार्यक्रम के लिए?
1: क्या मौसम आया है, अनाड़ी फिल्म का।
0: अनाड़ी फिल्म का, करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्म आया हुआ ये गाना है।
1: हाँ मैम, यस मैम।
0: तो चलिए रेखा जी, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मधु जी, मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ। गांव डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से रहता हूँ, अहमदाबाद।
0: वाह भाई वाह, गुजरात से हमारे पास धीरज जी ने कॉल की है। बहुत बहुत स्वागत धीरज जी, इतनी दूर से आपने आकाशवाणी प्रयागराज के इस कार्यक्रम में फोन किया। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी। धन्यवाद, आज गाना सुनना है मेरे को, कुर्बानी फिल्म का
0: जी।
1: आप जैसा कोई नहीं गाया है नाजिया हसन ने
0: जी,
1: बहुत
0: जी।
1: अच्छा गीत है, बहुत साल हो गए फिल्म बने हुए, लेकिन आज भी ये गाना हमारे जैसे कई श्रोता गुनगुनाते
0: जी। जी बहुत पॉपुलर हुआ था ये गाना
1: जी। जी
0: जी, तो आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए धीरज जी हम सुनवाने जा रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।
0: नमस्कार।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बिनेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म डॉन से सुनवा देंगे, थे के पान बनारस वाला।
0: खुल जाए बंद अकल का ताला। देखिए, बनारस के पान की अलग ही शान है। तो आपने इस गीत को पसंद किया, इसे तो हम सुनवाएंगे ही। योगेश जी, कुछ कार्यक्रमों के बारे में या अपने मित्रों के नाम लेना चाहते हैं तो बताइए।
1: जी हमारे कुछ रेडियो साथी हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेंद्र वर्मा जी, लुताहूजा जी, रोशन देवांगन जी।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉन फिल्म का ये गाना।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ, ग्राम चकचा प्रिंसा से।
0: जी बताइए रमेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम हमें गाना सुनाने के लिए, नाम है तेरे नाम।
0: तेरे नाम जी, इसका कौन सा गाना है
1: मैडम? इसमें का हमको हमें सुना दिया है टाइटल शो।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: हाँ मैडम, गाने अच्छे हैं।
0: हाँ, सारे गाने अच्छे थे, इसके हिट भी हुए थे, तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। लीजिए सुनिए। नमस्कार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ जी, संगीता यादव,
0: जी संगीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: कोखरा थाने।
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? विवाह फिल्म का ये गीत है,
1: हाँ जी,
0: तेरे
1: हाँ जी,
0: द्वारे पे आई बारात। तो मुझे लगता है
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: किसी विवाह समारोह में शामिल हुई हैं क्या?
1: हाँ, मैं शादी में शामिल हो रहे इसलिए आए हैं।
0: अच्छा, कहाँ गई हैं?
1: बॉम्बे घूमने आए अपने पति के लगे। हाँ,
0: अच्छा, तो वहीं पे है शादी।
1: यही पे है।
0: अच्छा, चलिए तो हम आपको सुनवा देते हैं विवाह फिल्म का। तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का विवाह फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: दीदी
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला दीदी, मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी ने हमें कॉल की है मध्य प्रदेश से। तो कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद भगवान कृपा से हम बहुत अच्छे हैं दीदी
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी। दीदी आज के कार्यक्रम में आज आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा फर्स्ट लव लेटर।
0: जी जी
1: उसमें एक गीत है तोता तोता संदेशा ले जा, ऐसा है कुछ गाने
0: तोता,
1: को दीदी ये
0: तोता सजन से कहना।
1: सजन से कहना, ठीक है, ये है दीदी गाने
0: हाँ, तो आपने मनोज जी जो गीत की फरमाइश की है फर्स्ट लव लेटर, उसे तो हम सुनवाएंगे ही। आप किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: बिल्कुल दीदी, अब है नाम तो कहे कि हमारे सभी श्रोता इस प्रोग्राम को सुनते ही हैं,
0: जी
1: तो
0: जी।
1: कहे कि अब वो नाम से ही पहचान जाते हैं तो कोई बात नहीं, अब अगले प्रोग्राम देखेंगे, इसलिए बस आप छोटी सी बात कह दूं अगर आपकी परमिशन हो तो।
0: जी जी बोलिए।
1: बिल्कुल दीदी, इस समय देखने को आ रहा है बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है।
0: जी जी।
1: तो अपन को छोटे बच्चे हैं जो उनको गर्मी से बहुत बचाना है,
0: बिल्कुल।
1: और जो अपने बूढ़े माता पिता हैं उनको तो खास तौर पर इस गर्मी में अपन को बाहर नहीं निकालना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनको खूब पेयजल देते रहिए, पानी पिलाते रहिए, पना पिलाइए, बेल का शरबत पिलाइए, सत्तू का शरबत पिलाइए, ये सब गर्मी में आपको ठंडा रखने में मददगार सिद्ध होंगे।
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: और आप भी जब घर से बाहर निकलें तो सर को अच्छे से ढक कर निकलिए और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए।
1: बिल्कुल, ये तो मैं करता ही हूँ और आपका साथ मेरे साथ बना है तो मेरे को तो गर्मी लगती ही नहीं है।
0: चलिए अब आपको सुनवा देते हैं फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime

0: by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा की गई।

0: सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73

0: संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में लोकगीतों का कार्यक्रम होगा।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: लीजिए अब सुनिए लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं बीना रानी श्रीवास्तव के स्वर में इस देवी गीत से।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

अभी आपने सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के स्वर में ये कहरवा सुना। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनो जय हिंद।
2: ललन भैया।
3: हाँ भैया।
2: भैया हो देखा गर्मी जो ना।
3: हाँ
2: भैया अपने चरम पे आओ।
3: सही बात कहे भैया कि देखा गर्मी तो चरम पे बा, लेकिन यह समय जो

0: दोपहरिया में लू चला था ना, वो बहुत हानिकारक बा।
1: हानिकारक बा भैया हो, लेकिन देखा गदेलन के ना,
0: हाँ,
1: न गर्मी बुझाए न जाड़ा।
0: तो सही कहे कि दोपहरिया में लड़कन के खेले के ज्यादा मन करा था।
1: बिल्कुल, ये समय देखा बाग बगीचा में आम टिकोरा भैया, ये लालच में लड़किया ने जैसे घरे के सयान मनई सोत है ना, मौका देख के धीरे से निकल जाते हैं।
0: और एक बात कि भैया ये समय दोपहरिया में लड़कन के छुट्टी हो जाते स्कूल का, तो पूरा लड़किया बाग बगीचा में जाए के और अपन खेल कूद मचावत हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत बा कि वही समय जो लू चला था ना, और अगर एको लड़कन के लू लग जाता तो बड़ा दिक्कत हो जाता।
1: देखा भैया हो, गदेला थिरायल नहीं रहन, वो हमेशा दौड़ भाग करत रहन, और जब दौड़ भाग करी है तो उनके भैया देखा प्यास लगी। एक तो भैया हो गर्म हवा, गर्मी का थपेड़ा, वही में भैया अक्सल प्यासल गैन, अब बहुत तेजी से भैया पानी पी लिहन, तो समझ ला कि ऐसे लू लगे का संभावना ना उनके ज्यादा हो जाते है।
0: अच्छा एक बात और बहु घनश्याम भैया, कि लड़का तो लड़का है ही हैं, वो लड़का ही करबे करही, लेकिन जो लड़कन के माई बाप हैं, माता पिता हैं, उनके ये चाहे कि वो पानी की कमी न हो दें अपने लड़कन में, और उसके अलावा ध्यान रखे कि ऐसा उनके फल वगैरह खियाओ जो जैसे पानी वाला हो,
1: मौसम
0: तरबूज
1: का। बिल्कुल देखा प्रकृति हो ललन भैया, समय के अनुसार मौसम के अनुसार भैया फल के उत्पादन भी करे ले। यही समय देखा हो तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज भैया पूरा भरल हो।
0: पूरा भरल हो,
1: हाँ,
0: और प्रयास ही करें कि अपने लड़करन के ये सब खियावें
1: खियावें। और देखा सबसे बड़ी बात ना ललन भाई, कि अपने अगर खाना पीना कह लें सोए लगे तो लड़कन के डांट टपट के भी आड़े सुवावें, और ये हमेशा सजग रहें कि वो लड़का निकल के बाहर न जा पावा।
0: सही बात बा।
1: कहे से दोपहरिया में देखा हो धूप ज्यादा रहा था, जैसन बताते हैं कि हवा भी गर्म चलत है ना, तो एमन भैया लुआर लगे के पूरी संभावना रहत है।
0: अच्छा घनश्याम भैया एक बात और कही कि जैसे केहू के लू लग जाता तो ओकरे बाद का उपाय करे चाहे
1: देखा।
0: कि जैसे केहू कोनो लड़कियन के यार कोनो भी व्यक्ति के लू लग गए, तो सबसे पहले तो ठंडा पट्टी से उनके शरीर पे रखें, ओकरे अलावा भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो तुरंत अस्पताल में जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखा लू लगे के तो पहले ही समझ ला कि भैया हो समझ चेहरा लाल हो जाता है, अब प्यास बहुत लगा था, हमें कितनों पानी पियत रहा, मुंह सुखैले रहा था भैया हो, कबो कबो तो देखा चक्कर भी आवे लगे थे। तो यही समय अगर ये तरह के चीज बुझाई दे तो समझ ला कि लू का असर हो गल। और जैसन कहला है ना कि भैया उनके तुरंत छाए ले जा, तो अब भैया हो उनके जो शीतल वातावरण दा, ठंडा पानी पियावा, और सबसे निक बात जो बतौला है कि कपड़ा के भिंगाई के, अब भैया हो उनके माथे पर उनके पैर के तलवे में भैया पट्टी करा। प्याज भी देखा लू लगे तो बड़ा असर वाली चीज,
0: बड़ा असर बा। और एक बात की जैसे यहाँ समय ना छाछ और जो सत्तू होता
1: घोल
0: के अगर पियावा जाए ना, तो लू से बचाव हो सकता था बहुत अच्छे तरीके से।
1: गर्मी का अमृत हो, हम कहें कि छाछ और सतुगा इंतजार मत करा कि लू लगे। हाँ, एके तो भैया हो हमेशा सेवन करे के जरूरत हो गर्मी में,
0: निश्चित रूप से ऐसे लू से बचाव हो और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक
1: बहुत हो। और देखा एक चीज भैया, जो नाम का पना बनत है समझला कि अरे बिल्कुल भैया, गर्मी में हम कहीं मौका दर मौका हो बढ़िया जीरा नमक भैया पीस दे हो, ओके पना बना के घोर के भैया अपनों पिया, गदेलन के भी गिलास दो गिलास पिया बा। तो भैया हो ए तरह से अगर देखा बच बचाए के रह तो मौसम का प्रतिकूल असर जो है ना हो पाए,
0: ना हो। कैसे मौसम तो बदलता ही रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मौसम के समय अगर सावधानी रखी जाए, उकरे अनुसार काम किया जाए, तब बचाव भी हो जाए।
1: बिल्कुल। अब देखा एक चीज और, गर्मी में खाली लू ही भैया तबीयत नहीं खराब करत, ये हो ललन इस समय देखा लगन बारात का समय चला था, अब भैया गदेला न भैया गजर बजर खा लेते हैं, उनके आराम करे का मौका नहीं मिलत हो, तेल मसाला वाला चीज देखा ब्याह बारात में ज्यादा होला,
0: ज्यादा होता,
1: तो भैया हो यहू से तनी बच के रहा, लड़के नहीं सयान समरत जे बा
0: खान पान पर ध्यान रखें गर्मी में।
1: बिल्कुल भैया।
0: अच्छा घनश्याम भैया एक वार्ता बा पर्यावरण पे निर्भर, पर्यावरण पे के विषय में, वन हमारे देवता शीला सोनकर का वार्ता बा, आवे थोड़ा अपने नन्हे मुन्ने साथिन के सुनावा जाए, फिर बात बात कहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा दा
2: बच्चों, सृष्टि के

आरंभ से ही मनुष्य व प्रकृति के बीच अत्यंत निकट और गहरा संबंध रहा है। प्रकृति ने ही अपनी प्रचुर संपदा से मनुष्य के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया है। वृक्षों ने उसे मधुर फल और सघन छाया दी है। फूलों की गंध और रंगों ने उसके जीवन में महक और रंगीनी भरी है। सदा नीरा नदियों ने उसकी प्यास बुझाई है। पक्षियों की चहचहाट ने उसे वाणी दी है। कलियों पर मंडराते भौरों ने उसे प्रेम संगीत सिखाया है। वसंत और पतझड़ ऋतुओं ने उसे सुख दुख की अनुभूति कराई है। यही कारण है कि वैदिक युग से आज तक नदी, पर्वत, वृक्ष, सूर्य, चंद्र आदि की पूजा का विधान हमारे समाज में प्रचलित है। वृक्ष प्रकृति का सुंदरतम उपहार है। प्रकृति के इस उपहार के अभाव में मानव जीवन की कल्पना का भी असंभव है। इस सत्य को जानते हुए भी हम अब सघन वन संपदा के विनाश की ओर से आंखें बंद किए बैठे हैं। जन्म से लेकर मरण तक का नाता है। वृक्ष से प्राप्त लकड़ी से मनुष्य के संबंध को हम विधिवत रूपों में साकार होते देखते हैं। जन्म से ही मनुष्य लकड़ी के पालने में झूलता है। युवावस्था में लकड़ी की पालकी में बैठता है। वृद्धावस्था में यह लकड़ी ही उसके लिए बुढ़ापे की लाठी है और अंत समय में भी जीवन यात्रा लकड़ी के ऊपर ही सवार होकर पूरी होती है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन प्रकृति के इस उपहार के ऊपर ही आश्रित है। भारतीय संस्कृति और साहित्य वृक्षारोपण की महिमा से भरे पड़े हैं। महान उपकारी वृक्ष की तुलना हमारे यहाँ पुत्र के साथ की गई है। मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक वृक्ष की रक्षा 10 पुत्रों की प्राप्ति के समान है। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि एक वृक्ष अपने फल, फूल, छाया, छाल और वायु से जितना लोक कल्याण करता है, वह 10 पुत्रों के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कर्मों से कम महत्व का नहीं है। इसी धारणा के कारण हमारे यहाँ हरे वृक्षों को काटना एक पाप कर्म समझा जाता है। वट, पीपल, आम, अशोक आदि वृक्षों की पूजा हमारे यहाँ देवता मानकर की जाती है। भारतीय साहित्य में वृक्षों की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं देखे गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में पार्वती और शकुंतला वृक्ष लगाती देखी गई हैं। वे दोनों अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को संतान की भांति पालती हैं। वृक्ष की पूर्ण परंपरा को निभाते हुए राजा पृथु ने हजारों छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए थे। इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अशोक, हर्ष तथा प्रजा सेवी शेरशाह सूरी ने भी राजमार्गों के किनारे असंख्य छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए थे। चिकित्सा क्षेत्र में वृक्षों की देन अभूतपूर्व है। पीपल, आंवला, नींबू, नीम, तुलसी आदि वृक्षों के औषधीय गुणों को भारत का एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। आयुर्वेद की तो अधिकांश औषधियां पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। नीम और तुलसी में तो अनेक शारीरिक विकारों को दूर करने की क्षमता है। वृक्ष की महिमा को देखकर ही उसे परोपकार, सहनशीलता व त्याग जैसी मानव मूल्यों का सर्वोत्तम प्रतीक माना गया है। जब तक हरा रहता है तब तक औरों की भूख मिटाता है। स्वयं सूर्य की दाहक किरणों को झेलकर सबको शीतल छाया देता है। फल पाकर झुक जाता है। स्वयं जलकर दूसरों की ठिठुरन दूर करता है। वास्तव में वृक्ष त्याग दर्शन का व्याख्याता है। कई जगह वनों की दुर्दशा सार्वभौम है। सबसे चिंतनीय परिस्थितियाँ उष्णकटिबंध के जंगलों की हैं, जो धरती के केवल 7% हिस्से पर फैले हैं, पर दुनिया के 50-80% जैविक और वानस्पतिक प्रजातियों के घर हैं। इन जंगलों के विनाश की रफ्तार प्रति सेकेंड एक मैदान के बराबर है। नेपाल और भारत के पहाड़ी घाटियों में भी जंगलों का तेजी से सफाया हुआ है। बहुत से पर्यावरण शास्त्री और वैज्ञानिक इसे बांग्लादेश में बार बार आने वाली बाढ़ की एक बड़ी वजह मानते हैं। धरती के बहुत सारे इलाकों में जंगल साफ करने के लिए उनमें आग लगा दी जाती है। इससे जंगल तो नष्ट हो जाते हैं, पेड़ जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव में भी
योगदान मिलता।

0: होता है। खासकर तीसरी दुनिया के देशों में जंगलों का भयंकर नाश हो रहा है। जंगलों के विनाश से कई उपयोगी वनस्पतिक प्रजातियां, औषधियां वगैरह के साथ साथ वन्य जीव धरती से उठ रहे हैं। जंगल कटने से धरती की गर्मी तो बढ़ी है, ऐसी ऐसी आफतें आन पड़ी हैं जैसी वर्षों में देखने को मिलती है। जैसे तेजाबी बारिश, जंगलों को बचाने के लिए वन्य प्राणियों को भी बचाना बहुत जरूरी है। दोनों तरह की वन्य संपदा में पारिवारिक संबंध हैं और उनमें से बहुसंख्य प्रजातियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। यूँ तो धरती की खूबसूरती, मौलिकता और संपन्नता बरकरार रखने के लिए वन्य प्राणियों को बचाना जरूरी है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम वृक्षों के महत्व को समझें। संतोष का विषय है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार भी अब वन संपदा बचाने और बढ़ाने के पावन यज्ञ से सक्रियता से भाग ले रहे हैं। वृक्ष न केवल प्रकृति की सुंदरता को वरन हमारी मानसिक हार्दिक प्रसन्नता को भी बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध हुई है। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है, दस कुप समो वापी दस वापी समोहद दस हद समह पुत्रो दस पुत्राह समोद्रुमह। अर्थात दस कुओं का निर्माण एक वावड़ी के निर्माण के समान है और दस वावड़ियों का निर्माण एक जलाशय के बराबर है। इसी प्रकार दस जलाशयों के समान एक पुत्र की प्राप्ति है तथा दस पुत्रों की प्राप्ति एक वृक्ष के समान है।
1: हाँ, देखा हो घनश्याम भैया, जलाशय के निर्माण पे और पर्यावरण पे विशेष जोर रहा है शीला सोनकर जी का, जो वार्ता कहें वन हमारे बिल्कुल, देवता बिल्कुल। तो कुल मिलाए के ई लड़कन से ई एक अरदास बा, एक सुझाव बा कि देखे गर्मी की छुट्टी बा तो बढ़िया पर्यावरण के बचाव के लिए खूब पेड़ पौधा लगावें, अपने आसपास एकदम हरा भरा मौसम बनावें, इससे गर्मी से भी बचाव होए और पर्यावरण भी बढ़िया रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल हो। और देखा कि भैया अगर पौध लगल हुए ना तो भैया ओके नुकसान न पहुँचावें, ओकर देख रेख करें, पौध लगा के ओके वृक्ष होए तक बड़ा सेवा के जरूरत पड़ेल हो ललन भैया।
1: सही बात
2: है भाई हो। अगर ये तरह से अपन पर्यावरण बढ़िया रखिए, दुरुस्त रखिए तो देखा अपन जीवन अपन जहान भी अच्छा रहे।
1: अच्छा घनश्याम भैया, गर्मी की छुट्टी पड़ा था अपने नन्हे मुन्ने लड़के रंग का, तो गर्मी की छुट्टी में अगर अपने ये बाल सखा लोग चाहें तो कुछ नई नई चीज सीख सकते हैं।
2: बिल्कुल, कोर्स से अलग भी बहुत कुछ सीखे के चीज है। ओके सीखे भैया, देखा सबसे निक बात तो भाई लिखावट सुधारे हैं, खूब प्रैक्टिस करें। जवन चीज उनकर कमजोर रहल, जवन विषय उनकर कमजोर रह भैया ऊपर खूब बढ़िया से ध्यान दे।
1: अच्छा लिखावट पे हम भैया कही तो अगर लिखावट जेकर अच्छी बना ओके हमेशा से परीक्षा में अच्छा नंबर मिला था
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और कहीं भी अगर ऑफिस में भी काम करे तो अगर लिखावट अच्छी बात ओके वरीयता मिला था।
2: बिल्कुल हो, हम कहीं मोती के दाना की तरह अगर लिखावट बन है तो भैया पढ़े के मन करेला, उन्हों के पढ़े के मन करी। भाई हो लिखावट पर तो बहुत जरूरी ध्यान दें। और दूसरा चीज देखा हुआ कहे ना कि भैया हो गणना अपन तेज करें। ये तरह से भैया जौन उनकर कुछ कमजोर विषय बा ओके ध्यान दे, अगर ध्यान दिया तो गर्मी का उनका उपयोग भी हुई और उनकर बढ़िया से पढ़ाई भी हुई।
1: तब फिर नन्हे मुन्ने से विदा लिया जाए तो लड़कनों जय हिंद।
2: हिंद
3: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल बाल गोपाल, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम के बज चुके हैं 5:15 और इसी के साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं पूजा यादव, मेरे साथ
1: मैं उन्नति।
0: हम दोनों स्वागत करते हैं हमारे सबसे खास शो युववाणी में और हमें उम्मीद है कि इस वक्त आपकी लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा होगा। आई नो गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। उन्नति, तुम्हें नहीं लगता है कि इधर बीच बस एक ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, गर्मी?
1: सही कहा, सिर्फ गर्मी नहीं, बीच में देखो बारिश भी हुई थी ना। हाँ। तो मौसम कितना अच्छा हो गया था, प्यारा सा हो गया था, फिर हवाएं ठंडी ठंडी चलने लगी थी, तो गर्मी तो थी, गर्मी अब वापस भी आ चुकी है। और ऐसा लगता है ना कि मतलब मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी गर्मी हो जा रही है, कभी फिर ठंड लगने लग जा रही है, तो मतलब ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है अभी तक भी।
0: एग्जैक्टली, अभी हम फिर देख रहे हैं कि गर्मी फिर से बढ़ गई है और अभी हर कोई गर्मी की ही बात कर रहा है। और जब बात सीजन की हो रही है तो एक टॉपिक और ऐसा है जिस पर बात किया जाना भी बहुत जरूरी है और वो है वैश्विक तापन।
1: वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग।
0: Exactly.
1: और ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, ये जो हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं ये हमें हमारे रूम को तो ठंडा कर देते हैं, लेकिन पीछे से ये पर्यावरण में वो गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण हमारा और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और उसमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका जो उत्सर्जन है वो बढ़ता जा रहा है।
0: जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि पहले जो मौसम है वो सामान्य रहता था, लेकिन अब इधर बीच खास तौर पर में देखने को मिल रहा है कि अब कभी गर्मी एकदम से पड़ जाती है, कभी एकदम बारिश हो जाता है, कभी मौसम एकदम सामान्य रहता है कि मतलब अब ठीक है, और फिर एकदम से लगता है कि एकदम से कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। तो ये जो चेंजेस अचानक से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे दिखाता है कि नेचर में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से, कहीं ना कहीं हम उसे इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: लेकिन ऐसा भी होता है ना कि हम कई बार हम जब ये देख रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ये तो नेचर में अपने आप ही हो रहा है। जिसकी वजह से, इस लापरवाही की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कैसे हर 5 से 10 साल पर जो है हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि बाढ़ वगैरह आती थी, लेकिन अब देखने को मिलता है कि हर साल बारिश के टाइम पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
0: तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट की जिम्मेदारियां नहीं है, ये कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पर सोचें और इस पर बात करें। और यही वजह है कि युववाणी जैसे यूथ शो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं। आपको एक और फैक्ट बताएं कि हमारे एनवायरमेंट में CO2, मीथेन जैसी गैसें जब बढ़ जाती हैं तब सूरज की गर्मी हमारे पृथ्वी पे कहीं ना कहीं फंस जाती है। इससे पृथ्वी का जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है।
1: इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कई रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ों का कटना, फैक्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, उनका बढ़ना और प्लास्टिक का यूज़ होना, पल्यूशन बढ़ना और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली और पानी का इस्तेमाल करना, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है इसी वजह से जंगलों में आग भी लग रही है। तो यही रीजंस की वजह से ज़्यादा गर्मी, हीट वेव, बाढ़, सूखा, इन सब का जो पैटर्न है, जो नेचुरल पैटर्न है, वो अपने पैटर्न से शिफ्ट होते जा रहे हैं। और जैसे कि अपने पैटर्न से शिफ्ट हो ही रहे हैं तो हम ये देख कर भी अनदेखा कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं हमें उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हम हर बार ऐसा तो नहीं कि हम कोई बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसमें किसी को अवेयर करेंगे तभी जा कर के कोई चेंज आ सकता है। हम उसमें छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि अपने घरों के आसपास, अपने घरों में भी जो भी छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लगाएं, और अगर जो बिजली का यूज़ जहाँ पर नहीं हो रहा है, जिस कमरे में नहीं हो रहा है, वहाँ की लाइट्स, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ कर दें, जहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम उसके बचाव के बारे में सोचें, तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं।
0: और उन्नति, ये सारे स्टेप्स हम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: ऐसा नहीं है कि हमारे पहुंच के बाहर है।
1: Exactly.
0: हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर समय रहते हमने इन सब चीजों को नहीं रोका या इसे नहीं समझे हम, तो आने वाली जनरेशन जो है उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी। और जिम्मेदारी एक बार फिर से आपको बता दे, जैसे कि उन्नति ने कई पॉइंट्स बताए हैं तो जरूरी है कि हम उसे एक बार रिकॉल करा दे, जैसे कि हम पेड़ लगा सकते हैं और पानी, लाइट्स अपने हिसाब से यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हम उसका यूज़ ना करें। टू लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ कम करें। यूजली हम देखते हैं कि हमारा ब्रश से लेके हमारी पानी की बॉटल तक वो प्लास्टिक की होती है। सो हम इतने यूज्ड टू हो गए कि

0: आसपास शायद कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ प्लास्टिक का होगा ही।
1: हाँ।
0: तो ज़रूरी है कि मुझसे काउंटर करें या काउंट करें कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम कट कर सकते हैं।
1: जैसे प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसकी जगह हम क्लॉथ बैग्स का या पेपर बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स हमें अकेले ही लेने हैं, हमें खुद ही करना है। हम अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ में अपना योगदान दे सकें।
0: एंड बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रेंड हम सेट करें उन्नति। आई थिंक ये जो तुमने कहा है ना कि बैग को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये कितना कूल भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी है एक जनरेशन या एक ऐसा वर्ग अगर साथ आ जाए तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, वो है यूथ
1: और
0: हमारा।
1: मुझे लगता है पूजा कि ये जो काम है ना, ये हम युवा युवा जो वर्ग है, ये वर्ग सबसे अच्छा काम करेगा इस एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हमें ही जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें ही थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है। हम जानते तो हैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन जो ये इग्नोरेंस वाला पार्ट है ना, इसको हमें थोड़ा सा साइड करके हमें अपनी उस अवेयरनेस को यूज़ करना चाहिए
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: दूसरों के भी और इन्वायरमेंट के भी भले के लिए।
0: और बहुत ज़रूरी भी होनी थी, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, बट आप ईमानदारी से पूछिए खुद से भी कि क्या आप वो चीज़ कर पाते हैं या नहीं, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
1: देखो, जैसे जब भी हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: पास सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया आप हमें प्लास्टिक बैग में इसे दे दीजिए,
0: हाँ
1: और ना वो भी हमें नहीं मना करते हैं कि हम प्लास्टिक बैग में नहीं देंगे, और हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि हमें अपने साथ क्लॉथ बैग या पेपर बैग लेके निकलना चाहिए। तो ये वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जिसपे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
0: और उन्नति आमतौर पे ऐसी न्यूज़ भी आती है, जैसे महाकुंभ में भी ये चीज़ हुई थी कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना है, तो देख चाय वगैरह भी प्लास्टिक में नहीं मिल रही थी, कुल्हड़ वगैरह का बड़ा यूज़ हो रहा था, बहुत न्यूज़ वगैरह चली। बीच बीच में ऐसा होता रहता है कि प्लास्टिक एकदम से बैन, बट फिर वो चीज़ वापस आ जाती है क्योंकि हम ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ हमारा ही नहीं है बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन का भी है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। तो पूजा, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत कर ली है। हमारे प्रोग्राम में, जैसा कि तुम जानती हो कि हम अपने प्रोग्राम में हर रोज़ अपने श्रोताओं के लिए कुछ स्पेशल लेकर के आते हैं, तो आज भी हमारे पास कुछ स्पेशल है, लेकिन हम उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आइए सुन लेते हैं आज का पहला गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आना चाहते हैं, तो आज है संडे और आज हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है जो कि होता है हेलो युवा। और आज की जो हेलो युवा है उसकी प्रस्तोता है दिव्या द्विवेदी। तो आइए सुनते हैं ये हेलो युवा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो युवा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या द्विवेदी। दोस्तों, जिंदगी कितनी तेज भागती है ना, सुबह से शाम, स्कूल से कॉलेज, दोस्तों से जिम्मेदारियां, और इसी भाग दौड़ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो आज भी कहीं दिल के कोने में बसे होते हैं। कभी बारिश में भीगना, कभी बिना वजह देर रात तक दोस्तों से बातें करना, वो भी छुप के, कभी किसी पुरानी फोटो एल्बम देखकर अचानक ही हंस पड़ना, या फिर किसी खास इंसान की वो छोटी सी बात जो अचानक याद आ जाए, कितना सुकून देती है ना। तो दोस्तों, आज हम जब अपने दोस्तों से बात करेंगे तो जानेंगे कि कौन सा खास पल है जो वो हमेशा याद रखना चाहते हैं। कुछ अन्य बातें जैसे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, उनके मन की बात

0: तो चलिए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर साथी के साथ और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, और इसके बाद हम अपने और कॉलर साथियों के साथ जुड़ेंगे। हेलो, आपने कॉल लगाया है हेलो युवा में, आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम कीर्ति है।
0: कीर्ति, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो हम
1: बिल्कुल
0: आपको
1: बिल्कुल
0: सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं हम आपसे। हमारे आज की जो बातचीत है, कौन सी ऐसी याद है जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? कौन सी ऐसी कहानी है, कोई किस्सा है जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे? द मेमोरी दैट यू लव द मोस्ट।
1: तो ऐसे मेमोरीज तो बहुत सारी हैं जिसमें मुझे याद, तो मेमोरीज ऐसी हैं जो मेरे लाइफ में हमेशा मेरे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेंगी। एक है उसमें से मेरी दादी के साथ बिताया गया हर एक पल, जितना भी समय मैंने उनके साथ आज तक बिताया है बचपने से, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती थी पूरा टाइम। तो वो चीज़ें मैं किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहूंगी। और जो दूसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके साथ जो मैंने छोटे मोटे पल जो बिताए हैं उस चीज को मैं नहीं भूलना चाहूंगी।
0: कोई ऐसा किस्सा है जो आपको हमेशा याद रहेगा?
1: ऐसे अगर किस्से में बताऊं तो मुझे हमेशा, जैसे सिर्फ एक किस्सा नहीं है लेकिन एक मेमोरी है जो मुझे आज तक वो रहती है, हमेशा याद रहती है। वो ये है कि मैं और मेरी दादी, हम लोग बात करते थे, हम लोग का पूरा दिन बीत जाता था, ठीक है? तो वी यूज टू टॉक इन नाइट, जब दादाजी सो जाए, सब लोग सो जाए, ताकि हमारी बातें कोई और ना सुने, तो इसलिए हम रात के 2 बजे उठ के बात करते थे, ठीक
0: वाओ,
1: है? और हम लोग पूरे घर की सारी बातें करते थे कि बुआ से ये बात हुई, इस घर में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं उनको अपनी बातें बताती थी कि कॉलेज में ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी चीजें। तो शी इज सो मच अंडरस्टैंडिंग, लिटरली बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और इन जनों बता रही हूँ, जो मेमोरी बहुत, मतलब वो चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ कि पूरे दिन भर की बातें रात में 2 बजे उठ के हम दोनों की, आज भी मेरी नींद 2 बजे रात में खुलती है क्योंकि मेरी आदत थी उनसे 2 बजे रात में उठ के बात करने की।
0: बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपकी दादी से इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है। आज के समय में दादी बाबा होना अपने आप में ही एक बहुत कह रहे सौभाग्य की बात होती है, और उनसे ऐसा कनेक्शन होना वो और ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही खूबसूरत सा त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार ही कहेंगे हम बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक शख्स जो हमारे ज़िंदगी में, जिसे हम माँ कहते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है मदर्स डे। तो आप अपनी मम्मी को क्या मैसेज देना चाहेंगी और उनको कितना प्यार करती हैं आप, शब्दों में अगर बताना चाहें तो प्लीज़।
1: सबसे पहले आप ये जानते हैं कि माँ लोग के टूवर्ड्स प्यार जताना, वो भी वर्ड्स में, तो बहुत ज्यादा ही वो हो जाएगा उनके उनके लिए, जो उनकी, जो हम लोगों के लिए दिया गया सारा एफर्ट है उसके ऊपर एक सवाल उठ जाएगा अगर हमने उसको शब्दों में बयां कर लिया तो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा ही, मतलब ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि मेरी मदर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकती किसी और से, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट शी इज सो सपोर्टिव। उनको मतलब किसी भी चीज में हर समय उनको ये रहता है कि मेरा बच्चा। बाकी प्यार तो माँ का ऐसा होता है जैसे वो होता है ना कि दिन भर की थकान एक मुस्कान को देख के दूर हो जाती है, तो वो वाला हाल है।
0: बिल्कुल सही कहा कीर्ति, कि माँ जो इस दुनिया में हम लोगों को लेके आती है, उसके एफर्ट्स, उसके किए हुए को अगर हम शब्दों में उतार देंगे तो मुझे लगता है कि वो उससे जस्टिफाई हो ही नहीं सकता है। टचवुड आपके और आपकी मम्मी के इतने खूबसूरत रिश्ते के लिए। कीर्ति, मुझे लगता है कि अब हमें आपको एक पसंदीदा गीत आपके पसंद का सुनवा देना चाहिए, तो आप ज़रा बताएं कि आपकी
1: बिल्कुल,
0: पसंद का गीत कौन सा है
1: लुक्का छुपी बहुत हुई।
0: और आपको हम सुनाएंगे आपकी पसंद का ये गीत।

0: अपना नाम बताएं।
1: जी मैम, मेरा नाम विकास शर्मा है।
0: विकास, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विकास, हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं?
1: जी मैम।
0: विकास, वैसे तो हमारे आसपास का मौसम थोड़ा सा नम हुआ है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने शबाब पे है। क्या आप इन रियल लाइफ IRL में क्या क्या कर रहे हैं गर्मियों से बचने के लिए?
1: यस मैम, गर्मी से बचने के लिए तो हमारा एक ही मतलब रहता है, मतलब कि अभी अभी तो मैम स्टडी करते हैं, तो हम जिधर रहते हैं वहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं रहता है। लाइब्रेरी या फिर किसी में करता है हमारा, वहाँ थोड़ा एसी रहता है और घर पे आने के बाद थोड़ा सा बस गर्मी का प्रभाव रहता है, तो हम लोग कूलर वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं और जितना हो सकता है हम कुछ ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खाने में डिहाइड्रेशन हमारा दूर रहता है, गर्मी का भी प्रभाव कम पड़ता है।
0: आप लाइब्रेरी जाके अपने आप को गर्मी से

0: बचाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं विकास, और आने वाले दिनों में हम सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू?
1: जी मैम, अपने माता जी को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, ताकि कि आगे बढ़े तो उनको भी एक अच्छा जीवन दे सके हम, क्योंकि अभी तक उनका उद्देश्य रहा है कि बच्चों को एक अच्छा जीवन देना, तो हम लोग उसके उन्होंने बहुत किया है अपने समय और आज भी वो करती चली आ रही। तो बस यही है कि हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करके आगे के जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लें, और फिर उद्देश्य है कि उनका एक अच्छा जीवन हम भी उनको दे सके, प्रदान कर सके, आगे चल करके वो खुश रहेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी होगी।
0: बिल्कुल, जब एक माँ अपने बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सकती है, तो एक बच्चा भी अपनी माँ को हर तरीके की खुशी देने की
1: हाँ
0: कोशिश
1: जी मैम, बस
0: करता है।
1: सपोर्ट कर, यस मैम,
0: को हम चाहते हैं कि हम आपको आपके पसंद का एक गीत सुनाएं, आप बताएं।
1: यस मैम, किशोर कुमार जी का एक गीत आप सुना दीजिएगा, कोई अपने ही इच्छा अनुसार।
0: किशोर दा की आवाज में आपको सुनाएंगे हम ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत यादों, इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम से आपसे विदा लेना चाहती हूँ। विदा लेने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं हर गुरुवार को दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच, और इसी कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक रविवार युववाणी कार्यक्रम में। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं

0: मिनट के बीच, और इसी कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक रविवार युववाणी कार्यक्रम में। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8004926250 पर, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो दीजिए मुझे यानी दिव्या को इजाजत, नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा खास सेगमेंट हेलो युवा हमारी साथी दिव्या द्विवेदी की आवाज़ में। हमें उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसा कि आप जानती हैं कि हम अपने कार्यक्रम के मध्य में सवाल लेकर आते हैं और जो भी श्रोता सही जवाब देते हैं उनका नाम हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, कल का यानी 9 मई का सवाल था, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस देश से लिए गए हैं, जिसका सही आंसर है सोवियत संघ यानी USSR। जिसका सही जवाब दिया है अमित कुमार प्रयागराज से, शीतल वर्मा अल्लापुर से, ममता सिंह आरती और शुभम।
2: इसी के साथ हमारा आज का सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से लिए गए हैं। सवाल एक बार फिर से सुने, मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से लिए गए हैं। हमारे ये जो सवाल है इसका सही उत्तर जो भी लोग देंगे उनका नाम हम शामिल करेंगे कल यानी कल के युवाणी कार्यक्रम में। आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो कि है 8004926250 पर।
1: उन्नति, इतनी सारी बातें हो गई, इतना कुछ हो गया, तो क्यों ना कार्यक्रम में अब एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।
2: बिल्कुल।

0: तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर। और आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं
1: महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह दो मेवाड़ के शासक थे और माता जयवंता बाई थी। बचपन से ही प्रताप साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्रता प्रिय स्वभाव के थे, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी।
0: महाराणा प्रताप ने 1572 में मेवाड़ के सिंहासन को संभाला। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान को किसी भी तरह से या किसी भी समझौते से ऊपर रखा।
1: महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी, जो 18 जून 1576 को लड़ी गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व उन्होंने खुद किया, जबकि मुगलों की ओर से राजा मान सिंह ने इसका नेतृत्व किया। युद्ध अत्यंत भीषण रहा और इसमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा। लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें अमर बना दिया।
0: इस युद्ध में उनके प्रिय घोड़े चेतक का भी विशेष उल्लेख देखने को हमें मिलता है। चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा करते हुए अद्भुत साहस दिखाया और घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। चेतक की वफादारी और बलिदान आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का सूत्र है।
1: हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और धीरे धीरे अपने कई क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटियां खाकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने पे हमें मजबूर करती है। लेकिन उन्होंने अपने राज्य और जनता के लिए जो त्याग और जो संघर्ष किया, वो इतिहास में अद्वितीय है। इसी के साथ उनका निधन 19 जनवरी 1597 को हो गया, लेकिन उनकी वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय के दिल में

0: जीवित है।
1: महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों और सम्मान के साथ समझौता हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्नति, क्यों ना अब हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है
1: yuvvaniald@gmail.com।
0: तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मुझे यानी उन्नति
1: और मुझे यानी पूजा यादव को
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से

0: पन ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों की। पहले नज़र डालते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों को सुनवाएंगे डॉक्टर

गरिमा मौर्य से अमरीश कुमार की बातचीत, जिसका विषय होगा वैश्वीकरण के प्रभाव से गांवों में होता आर्थिक परिवर्तन। शाम 7:31 पर आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा प्रोफेसर अली अहमद फातमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है का समय होगा रात 8:00। 8:30 पर आज इतवार है, इसमें सुनिएगा प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की लिखी झलकी भंडा फोड़। गज़लों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा रात 9:30 पर। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दिनेश मणि से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाएं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर चित्रा पांडे की वार्ता होगी बांझपन की समस्या। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी वादन, दिन में 12:15 पर पंडित CR व्यास का गायन और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कमला बोस का गायन। 8:45 पर होता है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर सूर्यकांत ओझा की वार्ता हार्मोन फ्रेंडली स्किन केयर। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत गायक कलाकार बचवलाल यादव और साथी रीता देवी और शैलेश कुमार मौर्य। बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा शाम 5:00। शाम 7:31 पर आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां श्रृंखला में आप सुनेंगे प्रोफेसर अली अहमद फातमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता। विज्ञान जगत कार्यक्रम में रात 8:30 पर अजय प्रकाश गुप्ता से की गई बातचीत होगी पक्षियों का निराला संसार। गज़लों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे खास खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: बार हुआ तुम इतने दिन की कहां, मैं
0: कहां?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: अभी आपने सुना देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य षड् नेतारः मंत्री

0: पंचो राम राम।
1: काहल बाहो घनश्याम भैया, देखा थे पूरा गमछा उमछा लपेटे आई है पंचायती में आज।
2: ये ललन भैया हो देखा यही समझ जाओ ना।
1: हाँ
2: भैया हो घरे से निकलत का तो जुड़ रहत है।
1: हाँ
2: लेकिन हो कब कहाँ कौन समय हो जाए।
1: हाँ
2: घर इतिन भैया ना झोला में देखा गमछा रख देनी। अब भैया पानी आ देखा प्याज।
1: अच्छा
2: भैया हो एकदम बिल्कुल व्यवस्था कही के सतुआ भैया रख देनी हो। और देखा तनी देर सवेर होला हो तो भैया मुड़े पे गमछा गठिया के धूप में निकल ला तो उसे जो ना बड़ी राहत रहे ले।
1: मतलब भैया गर्मी से बचे के पूरा सावधानी बरतत है।
2: पूरा हो भैया देखा एक चीज ललन भैया की अगर आपन तबीयत आपन स्वास्थ्य ठीक न रही न।
1: हाँ।
2: तो भैया न खेती हुई न किसानी हुई न गोरु न गुरुवारी हुई।
1: सही बात है भैया की सेहत बात सब कुछ बात। हाँ। सेहत नहीं बात तो सब कुछ नहीं बात।
2: या बिल्कुल ऐ समय तो हम देखा भैया सबसे कहब है जैसे देखा तोहरो देखा तो बड़ियार गमछा लेके निकलल हुआ है। तो भैया हो सब भैयन से हमार यह कहब बा कि जरूरी हो तब निकला धूप में। अगर जरूरी ना हो भाई हो तो ओके सुबह शाम निकल के खेती किसानी अपन देख ला। आप भैया अगर निकलब जरूरी हो जाए
1: तो सावधानी से अपन
2: सावधानी हो पेट पानी से भरल रहे है। ये खाना भी भैया बहुत ज्यादा न खा अगर निकल
1: तरल पदार्थ लग ज्यादा बढ़िया रहे।
2: देखा हो बाजार में है ना इधर उधर के चीज खाए से निक भैया ककड़ी खीरा खरबूजा तरबूज भैया ये सारे तरह के चीज अगर मन में आवे तो लेके ओके खा ला।
1: और जो हम बताया कि सितुआ और छाछ
2: अरे ये तो अमृत बा ये ललन भैया।
1: हाँ।
2: एके तो भाई हो हम कहीं सतुआ कहीं भी हो पानी मिलल ताजा।
1: हाँ।
2: लेके घोर के पी ला तबीयत भी मस्त हो गल हो गर्मी का प्रभाव काफी कम हो जाला। आज तो देखा हो आज तो कूलर हो गल पंखा हो गल है भैया। बचपना में ही देखे में आवे हो कि देखा कच्चा बखरी रहे न भैया पंखा न कूलर।
1: देखो जरूरत तो उतना नहीं पड़ता रहा घनश्याम भैया। इतना बढ़िया पर्यावरण रहत रहा ना और इतना गर्म नहीं रहा पहले गर्मी के समय। और लोग बाग बगीचा में लोग अपन खेती खरियाने रहत रहन पूरा रहत काम करत रहन
2: हो ये बांस का बेना बन जाए।
1: हाँ।
2: बहुत औसे तो वह बेना लोग चला ले। लेकिन यह जौन बात कहले है ना कि भैया सतुआ छाछ पी के भैया मस्त रहे।
1: सही बात बा भैया।
2: तो भैया आप जुग जमाना बदल गए हो भैया महीनी आ गए खान पान में तो यही से तो देखा कि एक तो भैया पूरी उम्र नहीं लोग जी पावत बहन है। कब लड़कपन कब जवानी कब बुढ़ापा आ गए पता नहीं चलत बा।
1: सही बात
2: तो भैया खान पान का तो देखा अपने जीवन शैली में ना बड़ा महत्व है।
1: ये बा भैया देखो आप जो गर्मी से बचाव को बातचीत करत रहे और गर्मी में लू से भी बचाव बहुत आवश्यक बा।
2: आपन तो बचाव करबे करा भाग जोन अपन गोरु चौगा बहन जिसे दो पैसा का आमदनी होत बा तो भैया उनकर बचाव करा। ये नहीं कि पेड़े के नीचे बांध दिया तो समझ ला कि वो सुरक्षित हो गया।
1: पेड़े के नीचे तो लू लगबे करे।
2: गर्म लू से बचाव बहुत जरूरी है। टकराए हो उनके देह से भैया खेती किसानी में बहुत तरह का देखा रहेठा होत बाय अरहर का होत बाय मक्का का ज्वार का तो भैया उसे टटरी बना दा आ ऊपर भैया तनी पानी वानी छिड़क दा
1: कि भैया और बोरा का टाट लगा जे बे तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आए।
2: हाँ, हाँ,
1: लू न लगे अपने
2: सीधे हवा उनके न लगे देही में। ललन भैया एक बात जो सबसे जरूरी बात है कि देखा हो हम तू तो प्यास लगे लेना
1: तो भाई
2: तो पानी खोज के पी ले ला। लेकिन पशु हमार हैं तो वो अबोल हैं उनके
1: अबोल
2: प्यास
1: हैं।
2: लगी तो मंगिए ना।
1: सही बात बा जे भी पशु रखे हैं उनकर पूरी जिम्मेदारी बा कि उनके पानी पिलावें उनका रख रखाव करें उचित तरीके से।
2: बिल्कुल भैया सुबह में पानी दिखाई दें दोपहरे दिखाई दें शाम के दिखाई दें। अब भैया अगर सकिल सके ताजा पानी दो बाल्टी लेके उनके नहवाए भी दें शाम के। तो भैया ये तरह से अगर रखबा हो तो देखा अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपन पशु भी स्वस्थ रही है मस्त रही है तो उनसे दो पैसा का आमदनी हुई।
1: सही बात क्या भैया। एक घनश्याम भैया आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बा हो। आज पूरे विश्व भर के लोग अपने माँ के याद करत हन। मतलब आज मातृ दिवस हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: भैया माई जोन होती ना उस संसार में
2: अनोखा रिश्ता हो
1: अनोखा

0: व्यवस्था वो
1: आना
0: था, और
1: का
0: ईश्वर
1: रिश्ता।
0: अपन एक स्वरूप भेज दिए थे माँ के रूप में, कि
1: बिल्कुल
0: जौन
1: बिल्कुल
0: ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से नहीं सामने आ सकत, तब तो माँ के रूप में वो भेज दिए थे।
1: बिल्कुल भैया, हो
0: तो
1: चाहे
0: भैया
1: उनके दुख हो तकलीफ हो, लेकिन आपन गदेला के भैया वो हमेशा प्रश्न देखे चाहेंगे।
0: देखिए, माई से बच्चन के जीवन में प्रेम, त्याग, ममता और संस्कार का उपहार मिला था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और माँ के समान जौन बा ना क्यों भी उकर पूर्ति कर नहीं सकत।
1: कह नहीं सकत भैया, बिल्कुल नहीं कह सकत।
0: यह दिन माताओं के प्रेम, त्याग, समर्पण और सम्मान का विशेष दिन हवे, क्योंकि उनके सम्मान दे के दिन हवे। और माँ जौन बा हर बच्चन का पहला गुरु होथिन, और जन्म से लेकर
1: कहे
0: जीवन के
1: नहीं
0: हर मोड़
1: बिल्कुल।
0: पे जवन संवेदनशील तरीके से माँ अपने लड़कन बच्चन के संभालत है ना, वो दूसर के संभाल नहीं सकत।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, माँ के प्रति हो प्रेम हमेशा रहे चाहिए, आदर रहे चाहिए। और कहल जाता है कि माँ का और पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाता है ना, तो भैया हो कौनो लक्ष्य दूर नहीं रहत।
0: तो कहा जाता ना भैया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: बिल्कुल
0: मतलब कि माँ यो मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होता।
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ
0: माँ केवल
1: भैया
0: परिवार का आधारशिला ही नहीं होते, बल्कि समाज, राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हैं। कहे से वो जवन संस्कार अपने बच्चन लड़कन में रोपी, वो आगे जाए के फलीभूत हो भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जोन कहला है ना कि माँ भैया पहली गुरु हैं, तो माँ का अच्छा ललन भैया, माँ कभी भी अपने पुत्र का अपने पुत्री का अहित नहीं चाहती।
0: ना ना ना, एक माँ बाप
1: भैया
0: ही होते हैं कि
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके प्रति भैया हमार भाव हमार सम्मान भैया बने के चाहिए। और कहल जाते धरती के वह देवी देवता हैं।
0: है देवी देवता
1: बिल्कुल
0: भैया। तो आज का विशेष मातृ दिवस के दिन पे सबके पूरे माता जी लोगन के याद करे के, उनके सम्मान दे के दिन हवे। सम्मान
1: बिल्कुल,
0: तो केवल दिन विशेष के बात नहीं
1: नहीं नहीं
0: ना,
1: भैया हमेशा हमेशा
0: हमेशा
1: हो।
0: कि केवल एक दिन मातृ दिवस के ही दिन की पूरा लोग फोटो लगाए के और सारी चीज लोग याद करत हैं, उनका कोई मतलब नहीं बा, हमेशा सम्मान करे के ही बात बा।
1: बिल्कुल, और उनके पास
0: कैसे
1: हो भैया घड़ी घंटा बैठे के जरूरत हो,
0: बैठे की जरूरत बा,
1: उनका
0: उनके बात
1: अनुभव
0: सुने के।
1: उनका प्रेम भैया ओके लया, और अपन आदर सत्कार हम कहें कि भैया सुबह उठा तो उनके चरण में वंदना करा, नतमस्तक हुआ, उनका आशीर्वाद मिल गया, तो हर लक्ष्य पूरा हो
0: पूरा
1: जाए।
0: होए, पूरा होए। घनश्याम
1: अलग
0: भैया,
1: हाँ
0: बात बत कही तो आज अपने पंचायती में खूब हो गया, लेकिन कोनो गाना गोनो ही नहीं सुनवाओ था।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, हो देखा अब देखते बटा कि आज भैया दुद्दू भैया लोग ढोलक मजीरा के साथ भक्तन हैं,
0: नहीं तो कह
1: तो
0: कि
1: भैया
0: सुनवाओ कि।
1: हाँ सूर्य प्रकाश पटेल उनके संघातिन के गौनई हुई, और भैया श्री राम कैलाश उनके संघातिन के भी गौनई हुई। और एक देखा जरा बहुत जरूरी बातचीत हो कि वैश्वीकरण के प्रभाव से गांव में होता आर्थिक परिवर्तन, ये पर भैया डॉक्टर गरिमा मुरिया से अमरीश कुमार के बातचीत भी सुनल जाए।
0: यह सुनाओ जाए,
1: हाँ
0: लेकिन सबसे
1: लेकिन
0: पहले आओ
1: लेकिन
0: एक लोकगीत
1: मन
0: सुनाओ
1: तोहार
0: जाए।
1: हम देख गए भैया कि मन लहकत
0: सूर्य
1: बा।
0: प्रकाश पटेल और साथी का
1: हाँ
0: विकास गीत बा,
1: यह
0: पहले सुना जाए, फिर आप ये बात बत कही होए।
1: बिल्कुल सुन ला।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: देखा हो घनश्याम भैया, लोक गीतों सुन लिया, सूर्य प्रकाश पटेल और साथी के विकास गीत
2: खूब भैया की।

0: और जो अनु बातचीत बा ना, एक वैश्वीकरण के प्रभाव से गांव में होता आर्थिक परिवर्तन, डॉक्टर गरिमा मौर्य जी से अमरीश कुमार शुक्ल अपने बातचीत करे हैं। आवे किसान भाई की हो सुनवाई दिया जाए, फिर
1: बिल्कुल
0: बाद में प्रेम
1: बिल्कुल
0: आप चंग होए।
1: बिल्कुल। और देखा हो किसान भाई, वैश्वीकरण के प्रभाव से अब गांव-गांव में बड़ा परिवर्तन होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव न सिर्फ गांव देहात बल्कि पूरी दुनिया में कैसे देखे के मिला था, एकर परिवर्तन से का प्रभाव होता, किसान भाई एकर कैसे लाभ ले सकत हैं, शहरी

0: है अर्थशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
1: धन्यवाद।
0: जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे पंच भाई और किसान भाई ये जरूर जानना चाहिए कि दरअसल ये वैश्वीकरण होत का एकरे मायने का होथिन, एकरे बारे में तनी संक्षेप से एक किसान भाइयन का जरा समझावें।
1: सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ। बड़े ही सरल शब्दों में मैं अपने किसान भाई बहनों को वैश्वीकरण के अर्थ को समझाने का प्रयास करती हूँ। वैश्वीकरण की अवधारणा समस्त वैश्विक समुदाय को एक करने का प्रयास करती है। जैसे समझ लीजिए कि दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में है, वैसे भी यह अवधारणा हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का तो ध्येय वाक्य ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम सदियों से समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते आए हैं। तो बस यही अवधारणा जो है, ये नए आधुनिक युग में वैश्वीकरण के नाम से आ गई है। तो किसान भाई बहन, ये समझ लें कि वैश्वीकरण जो एक भारी भरकम सा शब्द आप लोग को लग रहा होगा, यह वही अवधारणा है जिसमें दुनिया भर के समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, खान पान, रीति रिवाज, बोली भाषा इत्यादि का हम बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से आबाद आदान और प्रदान करते हैं। हम दूसरे देशों के लोगों से जुड़ते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं। वैश्वीकरण का यह सीधा सा मतलब है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहिब, बड़ा अच्छा से आप एक समझाए दें वैश्वीकरण का। जैसा कि आप कहेंगे एक बहुत बड़ा समझ लें गांव है, तो जैसे डॉक्टर साहिब भाई बहुत बड़ा गांव हो गया, तो एकर मतलब आ कि जो हम लोग जो गांव में रही थी, जैसे हमारे देश में जय गांव है, तो का इनके ऊपरों भी कोनो एकर प्रभाव पड़ा था, यानी हमारे सबके ऊपर वैश्वीकरण में जो कहा थी निर्बाध आदान प्रदान हो था, तो का एकर कोनो प्रभाव पड़ा था।
1: हाँ जी बिल्कुल, जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा हुआ है, उसी तरह भारत का गांव भी इससे अछूता नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी, किसान भाई बहन जानते ही होंगे,
0: जी
1: हमेशा कहते रहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है।
0: जी
1: तो भारतीय समाज में अगर कोई भी परिवर्तन आप देखेंगे तो ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन की तरफ ही इशारा करती है। अब किसान भाई बहन अपने ग्रामीण समाज में इस प्रकार के परिवर्तन को महसूस भी करते होंगे आजकल,
0: जी
1: कि अक्सर जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे बूढ़े बाबा दादी अक्सर हमसे कहा करते थे कि हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में तो पूरा परिवार एक साथ रहता था। जैसे हमारी दादी हमसे कहती थी कि 30 से 35 लोगों का परिवार एक साथ रहता था, एक साथ खाना बनता था।
0: हाँ
1: तो ये संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। तो देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव ये हुआ कि अब ये संयुक्त परिवार की अवधारणा धीरे धीरे टूट रही है।
0: जी
1: अब हमारे किसान भाई बहन ये महसूस कर रहे होंगे कि अब ज्यादातर परिवार एकल परिवार की तरफ बढ़ना चाहते हैं,
0: जी
1: उनका झुकाव वहां बढ़ रहा है। तो समझ लीजिए ये वैश्विक संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। दूसरा, हम खान पान वेशभूषा में भी हम बड़ा भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किसान भाई बहन छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, हम अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। जब हम बचपन सन 2000 की बात बता रहे हैं, जब अपने गांव जाते थे तो हमारी दादी हमको मट्ठा देती थी सुबह नाश्ते में, और गन्ने का रस देती थी, आलू के समय में कचालू देती थी, भीगा चना देती थी खाने को। लेकिन अभी हम आजकल हम जब गांव जाते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वहां पे देखते हैं, हमारी उनकी दादियां जो हैं कहते हैं, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि सैंडविच बना दो,
0: जी
1: नूडल्स
0: जी
1: बना दो,
0: जी जी
1: चाय ब्रेड दे दो खाने के लिए नाश्ते में। तो ये वैश्विक संस्कृति का ही प्रभाव है। तो खान पान, वेशभूषा, इन सब चीजों में हम देख रहे हैं कि आजकल वैश्वीकरण का प्रभाव गांव से लेके शहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है।
0: अरे वाह डॉक्टर साहिबा, देखा आप गांव को माठा और चना वना सब याद दिया है कि एकदम लगता है जैसे गांव में हम पहुंच गए। बड़ा बढ़िया जानकारी दी ना किसान भाई, अब तो वैश्वीकरण के बारे में हमका लगता है आज एकदम विशेषज्ञ बन गई हैं। और डॉक्टर साहिब, आप तनी देखा बातचीत और आगे बढ़ावा जाए, जैसे कि वैश्वीकरण में ग्रामीण समाज में जो वेशभूषा होता, खान
1: जी
0: पान
1: जी
0: होता, का एकरो प्रभाव पड़ा था, एकरे बारे में कि जैसे जानकारी और आगे किसान भाइयों को बढ़ावाएं, अहमाई जरूर बतावा कि का ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होता, तो वैश्वीकरण का एकरे ऊपर भी प्रभाव पड़ा था।
1: हाँ, जैसे अभी अभी हम बताए हैं कि ग्रामीण समाज के वेशभूषा, संस्कृति, पहनावे, तीज त्योहार, शादी विवाह, इन सब पे कैसे वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, वैसे ही मैं अर्थव्यवस्था के बारे में भी अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। जैसे आजकल किसान भाई बहन दो शब्द बहुत

0: चर्चा में सुन रहे होंगे कि अक्सर समाचार वगैरह में आता रहता है वोकल फॉर लोकल,
1: जी
0: थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ये सब
1: जी
0: अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन
1: अच्छा
0: इसका मतलब ये है कि किसान भाई बहन को अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको विश्व के बाजार तक पहुंचाना है,
1: अच्छा
0: अपने स्थानीय उत्पादों के लिए आवाज उठाना है,
1: जी
0: उनको विश्व के बाजारों दूसरे देशों तक पहुंचाना है। तो वैश्वीकरण के माध्यम से ये देखा किसान भाई बहन, ये सकारात्मक प्रभाव है
1: जी
0: वैश्वीकरण के, कि वैश्वीकरण के माध्यम से किसान भाई बहन अपने स्थानीय उत्पादों को पूरी दुनिया में बेच पाते हैं। और सबसे बड़ा जो डिजिटल क्रांति हुई है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान भाई बहन जो अपने स्थान में उत्पादित कर रहे हैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर के देशों में पहुंचा पा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण से हम इस बात को अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि
1: जी
0: जैसे हम लोग प्रयागराज जिले में रह रहे हैं, प्रयागराज जिले में एक नैनी जगह है, आप लोग सुने होंगे किसान भाई
1: हाँ हाँ
0: बहन।
1: हाँ बहुत बढ़िया खबर किसान
0: हाँ
1: भाई जाना थी नैनी में।
0: हाँ तो नैनी में एक महेवा नगर पंचायत है,
1: अच्छा
0: महेवा नगर पंचायत की फातिमा बीबी और आयशा बेगम की
1: अच्छा
0: कहानी किसान भाई बहनों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।
1: जी
0: किसान भाई बहन, हमारी जो फातिमा बीबी हैं वो नैनी में उत्पादित होने वाला एक स्थानीय उत्पाद है मूंज,
1: अच्छा
0: जिसको किसान भाई बहन आम बोलचाल की भाषा में सरपत या कूस कहते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: तो फातिमा बीबी ने अपने माँ दादी से मूंज के उत्पाद को बनाना सीखा। जैसे वो क्या बनाती हैं, वो कोस्टर बनाती हैं, चाय चाय के साथ जो हम चाय ढकने के लिए कोस्टर का प्रयोग करते हैं, पेन स्टैंड बनाती हैं,
1: जी
0: डलिया बनाती हैं, टोकरी बनाती हैं, घर के सजावटी सामान बनाती हैं मूंज से।
1: जी
0: अब वो जो उनका मूंज का उत्पाद है इन सब सामानों का वो बाजार तक पहुंचा पाई, और ये इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। दूसरा, इस वैश्वीकरण के माध्यम से उनका उत्पाद सिर्फ देश में ही नहीं बिका किसान भाई बहन, जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका जैसे देशों में उनका निर्यात हो रहा है।
1: वाह
0: अब दुनिया भर के देशों में उसका व्यवसाय कर रही हैं, अब उनकी आय में वृद्धि हो रही है। तो किसान भाई बहन, सिर्फ एक उदाहरण था ही प्रयागराज की फातिमा बीबी के,
1: जी
0: ऐसे बुंदेलखंड में गेहूं कठिया गेहूं का उत्पादन हो रहा है, प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन हो रहा है। ये सब उत्पाद जो स्थानीय उत्पाद हैं इन सब का मांग विदेशों में भारी मात्रा में है। तो किसान भाई बहन इन सब अपने अपने जगह जहां जहां पे हैं वहां के कुछ विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन पर ध्यान दें और उनको वैश्विक बाजार तक पहुंचाएं। वैश्वीकरण से इससे किसान भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा।
1: अरे वाह डॉक्टर साहिबा, कितनी बढ़िया आप जानकारी बताई। मतलब हमारे जो उन घरेलू उत्पाद है, अगर उनका बढ़िया से उनका क्वालिटी खूब अच्छी, गुणवत्ता खूब अच्छी रखी, तो का हम पूरी दुनिया में आप बेच सकी थी और बहुत अच्छा हम ऐसी अपन मुनाफा कर सकी थी। अब जैसे नैनीन का आप मऊंज वाली कहानी बताएं, कितनी प्रेरणादायक कहानी है, और निश्चित तौर पर पंच भाई का सुने हुई हैं और ऐसी आगे आवे वाले समय में लाभ ली हैं। जैसे जैसे आप जानकारी डॉक्टर साहिबा बताओत यहाँ देखा है, और कुछ न कुछ एमा जाने की इच्छा लगातार हो चली जाती है। तो किसान भाई और पंच भाई एमा जरूर कुछ और आगे जाना चाहिए कि वैश्वीकरण से का कोनो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसी ज्यादा तो जरूरी सबसे है कि आप बताओ कि वैश्विक बाजार तक अगर हमारे किसान भाई पहुंचा चाहते हैं, अपन उत्पाद पहुंचावा चाहते हैं, तो कैसे हमें पहुंचा जा सकता है?
0: जी जी बिल्कुल, किसान भाई बहन जैसे अभी हम कुछ सकारात्मक पक्ष पे बात किए कि किसान भाई बहन अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सवाल किया किसान भाई बहन वहां तक कैसे पहुंचे, तो किसान भाई बहन इसके लिए जिला उद्योग केंद्रों की मदद ले सकते हैं। किसान भाई बहन जो भी उत्पादन कर रहे हैं, कोई स्थानीय उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको जिला उद्योग केंद्रों से जाकर सहयोग ले, वहां पे वो रजिस्टर पंजीकृत कराएं अपने उत्पाद को। GI टैग दिया जाता है स्थानीय उत्पादों को, GI टैग अगर मिल गया आपके उत्पाद को, जैसे बनारस का पान, बनारस की साड़ी, बनारस का पेड़ा है, प्रयागराज का मूंज है, इन सब को ना एक GI टैग मिलता है, जैसे जौनपुर की इमरती हो गई। तो किसान भाई बहन जैसे कि अवध का गुड़ हो गया, तो इस तरह के उत्पादों को अगर GI टैग मिल जाता है तो वैश्विक बाजार में इनकी पहचान बढ़ जाती है।
1: मतलब कि डॉक्टर साहिबा, अगर हमका अपन उत्पाद वैश्विक स्तर पर बेचे का है, हमारे किसान भाइयन का पंच भाइयन करे का है, तो एक GI टैग उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर हो सकता है कि वो एका कराए लें तो बढ़िया अपन उत्पाद बेच सकत हैं।
0: बिल्कुल, अगर कई पीढ़ी वही उत्पाद में लगी हुई है और वो विशिष्टता

0: प्राप्त कर ली है, उस स्थान की पहचान बन गई है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जौनपुर के हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे जौनपुर की इमरती बड़ी प्रसिद्ध है। तो कई सालों से वो इमरती, एक कई पीढ़ी मिलकर उस इमरती को बना रही है और उस स्थान से उसकी विशिष्टता जो है वो बन गई है, तो उसको GI टैग मिल जाएगा। उसी तरह किसान भाई बहन अपने अपने स्थानीय उत्पादों को GI टैग दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर GI टैग नहीं भी मिलता है तो सबसे पहले किसान भाई बहन अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर थोड़ा ध्यान दें, जिला उद्योग केंद्रों से संपर्क करें, तो अपने आप वो वैश्विक बाजारों से जुड़ सकते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी आप दें कि वैश्वीकरण का हम इस्तेमाल अगर किसान भाई पंच भाई करा चाहें तो अपन जो उत्पाद है ओका गुणवत्ता बहुत अच्छी रखें, तब हम पूरे दुनिया में आपन सामान बेच सकी थी। किसान भाई देखें, ये बात बहुत गौर करे वाली बात है कि अगर दूसरे देश से कोनो सामान आए के अपने घरे द्वारे बिकत बा, अपने शहर में बिकत बा, तो एकर बहुत कुछ कारण हुई कि या तो हमें गुणवत्ता हुई या तो सस्ता हुई, कोनो न कोनो कारण होता। तो अगर हम गुणवत्ता पूर्वक अपन कोनो सामान बनाई थी, तैयार करी थी, तो निश्चित तौर पर ओकर फायदा हमका देखे के मिली और हम वैश्वीकरण बाजार में अपन उत्पाद ले जावे जा सके थी।
0: किसान भाई बहनों को मैं एक और बात बतानी चाहूंगी गुणवत्ता के संदर्भ में ही, कि जैसे किसान भाई बहन ये जानते होंगे कि चीन से बड़ा सामान आके हमारे बाजार में बिकता है, तो काहे बिकता है? एक तो सस्ता होता है, दूसरा किसान भाई बहनों को ये समझना होगा कि अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करना सीखें किसान भाई बहन, उसकी पैकेजिंग करना सीखें। पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप पैकेजिंग और ब्रांडिंग अपने वस्तुओं की नहीं करेंगे, वो वैश्विक बाजार को आकर्षित नहीं करेंगी। तो सबसे, और साथ में साथ किसान भाई बहन इसके लिए प्रशिक्षण भी लें, प्रशिक्षण का लेना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहिबा, जैसे कि बातचीत से पहले आप कहत रहें कि एक ठू कविता कुछ हेमा बताई है वैश्वीकरण के लेके, तो पंच भाइयन का जरूर अपन कविता जरूर वैश्वीकरण पे बताऊं ताकि हम लोग सुन सके और हमारे पंच भाइयों सुन सकें।
0: हाँ, वैश्वीकरण के संदर्भ में मैं अपने किसान भाई बहनों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। मैंने ये कविता कहीं पढ़ी है, हालांकि ये वैश्वीकरण के को एक समस्या के रूप में देख रही है कि कैसे किसान भाई बहनों या पूरे ग्रामीण समाज के लिए वैश्वीकरण एक समस्या भी लेकर आया है। कि जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि एक ग्रामीण किसान 27 परिवारों का भरण पोषण करता था। ये तो हमारे किसान भाई बहन भी जानते होंगे कि जब हमारे यहाँ किसान की उपज होती है तो वो कई हिस्सों में बंटकर उन वर्गों के मध्य में वितरित हो जाती है जिनकी वो सेवाएं लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये ताना बाना टूटता जा रहा है। अब सभी सेवाएं जो हो गई हैं वो हमें सब चीजें बाजार में उपलब्ध हो जा रही हैं। आपको अगर अपना बढ़ई का काम कराना है तो आपको बाजार से मिल जा रहा है, हर चीज रेडीमेड उपलब्ध हो जा रही है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस तरह का वैश्वीकरण का ये नकारात्मक प्रभाव थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो उसी के संदर्भ में एक कविता है कि अनाज के बगल में रखे आयातित वस्तुओं के रूप में हमारे रसोई घरों में भी रहने लगा है वैश्वीकरण। अब भाई, नूडल्स अगर रसोई घर में दिख रहा है तो वैश्वीकरण का ही प्रभाव है ना, गाँव के रसोई घर में भी दिखने लगा है। परचून की दुकान पर रंग बिरंगे पैकेटों में मुस्कुराता है वैश्वीकरण। अब ले चिप्स ये तो दिखता ही रहता है, किसान भाई बहन खाते ही हैं बड़े चाव से। भीड़ में भी चलता रहता है वैश्वीकरण, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीड़ में भी चलता रहता है वैश्वीकरण। हमारे लोकाचारों में, हमारे संबंधों में, हमारे वार्तालाप में, हमारी खामोशी में, हमारे प्रेम में, हमारी घृणा में हर पल दखल देता रहता है ये वैश्वीकरण।
1: बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया कविता आप बताई ना डॉक्टर साहिबा। अब एक अंतिम बात हमारे किसान भाइयों का और बतावत चलें आप कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप का किसान भाई बनाए रखा चाहें कि हमें उन्हों की स्थिति बनी रहा है, चार पैसा उन्हों को लाभ हो, तो कौन तरीके से वो अपने आप के हम बनाए रखें, एक बड़े कुछ सुझाव आप जरूर दे दें।
0: जी जी बिल्कुल। देखिए किसान भाई, वैश्वीकरण में संघर्ष तो बना रहेगा, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तकनीकी का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान ये चलता रहेगा, लेकिन किसान भाई बहनों से हम ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई बहन आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर जरूर बने लेकिन अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े रहें। हमें पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं होना है किसान भाई बहन, हमें अपने उत्पादों पर भरोसा रखना है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमें अपनी गुणवत्ता को भी बढ़ाना है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण बात है किसान भाई बहन, कि जैसे इस प्रकार का कार्यक्रम रेडियो पे टीवी पे आ रहा है तो उसे सुने, उसे समझें, उससे प्रशिक्षण प्राप्त करें कि कैसे हमें अपने सामानों को बाजार में बेचना है। और दूसरा कि आजकल ग्रामीण पर्यटन पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ग्रामीण पर्यटन वैश्वीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किसान भाई बहन। वैश्वीकरण के माध्यम से दुनिया भर के लोग आपके गांव घर आएंगे, तो आपको अपने गांव घर की स्वच्छता, उसके सौंदर्यीकरण पर भी बहुत ध्यान देना है, तभी आपके गांव के लोग प्रशंसा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोग आपके गांव में आएंगे, आपके उत्पादों को जानेंगे और यहां से ले जाएंगे और अपने देश में उसका प्रयोग करेंगे, तो आप बाजार तक आपकी पहुँच बढ़ेगी।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहिबा। आप पंच भाई और किसान भाइयों के वैश्वीकरण के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिली, एकर वो जरूर लाभ उठाई हैं और आवे वाले समय में प्रयागराज में और सारे किसान भाई वैश्वीकरण से जुड़ के अपन उत्पाद बेचिए। डॉक्टर गौरिमा मौर्या जी, आप हमारे कार्यक्रम में आईन, पंच भाइयन कितनी नीक नीक जानकारी दीन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, देखा वैश्वीकरण के प्रभाव से गांव में होता आर्थिक परिवर्तन विषय पे डॉक्टर गरिमा मौर्या जी कितना फरियाए फरियाए बताए इनकी वैश्वीकरण से का का प्रभाव होता अपने गांव में और गांव को अर्थव्यवस्था कौन तरीके से पूरी दुनिया से जुड़ सकता था।
3: हाँ, बिल्कुल
2: बड़ा विस्तार से बताएं और आशा किसान भाई लोग सुने हुए ही और एक अपन जीवन में अपने व्यापार में अपने जौन आस पास का लोकर रोजगार बा उपयोग करही और लाभ लेही।
3: भैया हो एकर आवश्यकता भी हो तो ललन भैया।
2: हाँ
3: भैया, देखा हो व्यापार अगर कहल जाए तो खेती किसानी से ही अच्छी आमदनी बढ़ावल जा सकेले।
2: सही बात बा,
3: अपने पशुपालन से भी हम अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
2: अच्छा, ये बातचीत में एक और बात करें ना, ब्रांडिंग और पैकेजिंग।
3: हाँ, वही चीज कहे वाला भैया
2: कि जो किसान भाई लोग भी जो उत्पादन करत हैं अगर उकर सही तरीके से उका प्रचार करें, मतलब ब्रांडिंग पैकेजिंग बढ़िया से करें कि वो कहीं से निर्यात हो तो जल्दी से खराब ना हो।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो उकर अच्छे से उपयोग किया जा सकता था और लाभ लिया जा सकता था। और भैया घनश्याम जी, एक और होते लोग की सुनवाई दिया जाए राम कैलाश जी के।
3: अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हो।
2: तो श्री राम कैलाश और साथी का एक विरह बा और बड़ा बढ़िया बा, किसान भाई लोग सुने उसके बाद फिर बात कही।
3: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा दा।

0: हाँ
1: यह
0: भैया,
1: देखा श्री राम कैलाश और साथिन का बड़ा बढ़िया
0: बहुत
1: बिहार है।
0: बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। अपने गौनाई में देखा कितना बढ़िया संदेश भी दे दी है।
1: अच्छा भैया, एक बात अपने जौन किसान श्रोता हैं उनसे ही कहा चाहत है कि अगर हमार लोगन कहीं पंचायत घर कार्यक्रम में कुछ सुझाव दिया चाहत हैं, कोनो बात कहा चाहत हैं कि अगर कुछ सुधार करवाओ के प्रयास बा कि ये ऐसे ऐसे करें, या
0: हाँ
1: कोनो भी
0: हाँ
1: सलाह
0: उनकर भी का
1: अगर
0: इच्छा कुछ।
1: उचित
0: हाँ बिल्कुल
1: उचित सुझाव हो सलाह हो तो हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल करब।
0: बिल्कुल
1: तो भैया हमार लोगन के एक नंबर बा 800-4926-2500,
0: यानी
1: ये 4
0: 800-4926-2500।
1: यह नंबर पे भैया अपन सुझाव दे सकते हैं। तो घनश्याम भैया आप चली चला के बेला बा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: भैया,
1: पंचों राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नितिन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज

0: पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के

0: विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरवगाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत प्रोफेसर अली अहमद फातमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां। इस कार्यक्रम में हम किसी ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं जिसका आकाशवाणी से या रेडियो से एक लंबा जुड़ाव रहा हो और हम उनके अनुभवों को साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू साहित्य के मशहूर साहित्यकार, आलोचक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया जना।
2: सर आपका रेडियो से

0: जुड़ाव कब शुरू हुआ?
1: शमीम साहब, जहाँ तक मैं अपने जहन और अपने माजी की तरफ जोर देता हूँ,
0: जी
1: तो मैं ये गालिबन 71-72 की बात है
0: जी
1: कि मैं BA का तालिब इल्म था, या
0: जी
1: हाँ BA का ही, 72 मैंने BA किया। तो 71-72 में सबसे पहले मुझे रेडियो पर युवावाड़ी में बुलाया गया।
0: जी जी
1: अब टॉपिक तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है,
0: हाँ
1: लेकिन 3-4 बार मुझे युवावाड़ी में बुलाया गया।
0: जी जी
1: तो उस वक्त एक नौजवान के लिए रेडियो पर आना और युवावाड़ी में शरीक होना,
0: जी
1: अपना पेपर पढ़ना या गुफ्तगू करना एक ज़बरदस्त खुशी का बायस हुआ करता
0: जी
1: था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त रेडियो इतना मकबूल था, इतना
0: जी
1: पॉपुलर
0: जी जी
1: था। टेलीविज़न मुझे नहीं याद आ रहा है किस सन में आया, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं आया,
0: जी
1: शायद उस वक्त तक आया भी नहीं था।
0: रेडियो की पहुंच हर घर तक थी,
1: हर
0: हर
1: घर तक
0: जी
1: पहुंचती, और हम लोग नौजवानी में 2-3 प्रोग्राम बहुत पाबंदी से सुनते थे। एक तो हवा महल एक प्रोग्राम
0: जी
1: आता
0: जिसमें
1: था,
0: नाटक झलकी
1: नाटक
0: भी ब्रॉडकास्ट
1: झलकियाँ,
0: होती थी
1: और वो
0: वो।
1: म्यूज़िक तक अभी हमें
0: जी
1: याद है जो
0: जी
1: बजती थी हवा महल
0: जी
1: शुरू होने से पहले। और एक अमीन सियानी का प्रोग्राम बीना का गीतमाला
0: जी
1: आता
0: जी
1: था,
0: जी
1: तो वो हम लोग बहुत पाबंदी से, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ख़बरों का भी ज़रिया
0: जी
1: रेडियो ही हुआ
0: जी
1: करते
0: जी
1: थे। तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, और मुझे याद है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला रेडियो होता था।
0: जी
1: ट्रांसिस्टर भी उस वक्त नहीं आया था मेरे बचपन में, लेकिन जब हमारी नौजवानी में या बचपन या 7वीं 8वीं 10वीं में रहा हूँगा, ट्रांसिस्टर आया तो हम लोग हैरान हुए कि
0: जी
1: बिजली के बगैर ये कैसे चल रहा है। वो भी घर घर इतना पॉपुलर हुआ,
0: जी
1: इतना पॉपुलर हुआ कि जैसे आम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। तो रेडियो बहुत पॉपुलर था। रेडियो स्टेशन आना, रेडियो के स्टूडियो में आना,
0: जी
1: और फिर युवावाणी रिकॉर्ड कराना या और कोई प्रोग्राम करना। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं 71-72 से इस रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, आ रहा हूँ। फिर जाहिद फाखरी साहब थे, और उसी
0: जी
1: ज़माने में उर्दू का प्रोग्राम लखनऊ
0: जी
1: में तो चलता ही था।
0: जी
1: कुछ प्रोग्राम, कुछ हिस्सा इलाहाबाद
0: अलाहाबाद
1: को भी मिल गया,
0: जी
1: शायद
0: जी
1: महीने में दो
0: जी
1: बार या 4 बार ऐसे कुछ था। तो वो प्लान करते, तो उस वक्त मेरी वह तालिब इल्म था, तो
0: जी
1: मेरी अलग से तो कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जाहिद साहब या और एक आध
0: जी
1: जो सब डायरेक्टर भी थे, मुझे अब
0: जी
1: नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्टर थे, और वो बुलाते थे कि आप इंटरव्यू ले
0: जी
1: लीजिए।
0: जी
1: तो मैं इंटरव्यू लेने में बड़ा मशताक
0: जी
1: था,
0: जी
1: और बहुत होमवर्क करके आता था, सवाल बना के आता था। तो मैंने कई बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए। इसी स्टूडियो में मुझसे एक बार फिराक साहब से इंटरव्यू कराया गया, और
0: जी
1: मैं ही उनको कारवार से किसी की
0: सर, वो
1: उधार।
0: इंटरव्यू अभी हमारे आर्काइव में रखी हुई है, इसके बारे में
1: अच्छा,
0: बताइए। जी वो हमारे पास
1: हाँ
0: मौजूद है
1: हाँ
0: अभी।
1: वो फिराक साहब है जैसी अजीम शान शख्सियत, उनके
0: जी
1: साथ है, और मैं बच्चा बिल्कुल, गालिबन MA में आ गया था, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट आया करते थे, और
0: जी
1: हम लोग MA में, और हमारे हेड से, हमारे टीचरों से, वो उनके एहतशाम साहब उनके शागिर्द
0: जी
1: ही थे जो उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो हम लोग थोड़ा मानूस थे उनसे, और
0: जी
1: उनके घर भी जाते थे हम लोग, और डिपार्टमेंट के मुशायरे में भी उनको बुलाते थे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, मैं गाड़ी का इंतज़ाम करूँ। अब उस वक्त कार का
0: जी
1: भी मिलना
0: बहुत
1: बहुत
0: मुश्किल हुआ
1: मुश्किल था।
0: करता
1: तो एक हमारे बुज़ुर्ग दोस्त थे अस्करी साहब, जी फैक्ट्री
0: था।
1: में
0: जी
1: उनके पास कार थी, तो उनकी बीवी से हम लोगों के बेतकल्लुफी, तो वो कार से फिराक साहब को लेकर आए। फिराक साहब से इंटरव्यू लेना सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ा आर्ट, क्योंकि
0: उनका मिजाज
1: उनका
0: कुछ
1: मूड बनाना, और ऐसे सवाल करिए जहानत भरे कि उनके अंदर का जो फिराक है वो निकल पड़े,
0: जी
1: वो बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन हम लोग शुरू से ही चूंकि ये सब करते आए, अच्छा हम ड्रामे के भी आदमी थे,
0: जी
1: इंटर में ड्रामे, BA में भी ड्रामे किए, तो थोड़ा हमारा ड्रामाई स्टाइल भी
0: जी
1: होता
0: जी
1: था। तो वो उनसे, तो इसी स्टूडियो में मुझे याद आ रहा है कि हमने फिराक साहब से इंटरव्यू लिया। अब क्या क्या सवाल किए थे, अब इतना लंबा सब गुजर गया, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक सवाल मैंने उनसे ज़रूर पूछा था कि आप रघुपत सहाय से फिराक कब बने।
0: जी
1: तो उन्होंने अपने वालिद की मौत का सबब बताया। उनके वालिद इबरत गोरखपुरी, वो भी शायर थे,
0: जी
1: और बड़ी मशहूर उनकी एक मसनवी भी हुई, और गज़ल उज़ल भी कहते थे। तो सच पूछे फिराक साहब के सब ख़ानदानी, अच्छा उस
0: जी
1: ज़माने में जो कायस्थ ख़ानदानों में तो
0: जी
1: उर्दू और फारसी पढ़ी जाती थी, उनके वालिद से उनको विरासत में मिला, लेकिन वालिद के अचानक इंतकाल ने
0: जी
1: उनको बहुत परेशानी में डाल दिया। कई छोटे भाई बहन

0: थे वो फिर इलाहाबाद आ गए, यहीं से इंटर और बीए किया, और फिर उनकी नेहरू से दोस्ती हो गई और कांग्रेस में जुड़ गया। तब बताने लगे कि अगर मेरे वालिद ने मेरा साथ न छोड़ा होता तो मैं शायद शायर ना हो पाता। लेकिन शुरू में कच्ची पक्की गजलें जैसी होता है, शुरू में जैसी उन्होंने कही हों कहीं, लेकिन नेहरू से, कांग्रेस पार्टी से, तहरीक आज़ादी से और जेल जाने से,
1: जी
0: फिराक साहब जेल भी कम लोग जानते
1: जी
0: हैं।
1: जी ये
0: फिराक साहब जेल गए और कई साल रहे जेल में, पहले इलाहाबाद के नैनी जेल में, उसके बाद आगरे के जेल।
1: सर किस तहरीक में वो गए थे कुछ ये
0: यही तहरीक आज़ादी जो, हाँ, नेहरू भी जेल गए तो उन्होंने इलाहाबाद की जो कांग्रेस की जो टीम थी या उसका दफ्तर था वो सब संभाला। उसके बाद फिराक साहब भी गिरफ्तार हुए और नैनी में कम दिन रहे, आगरे में ज्यादा रहे। इत्तेफाक से आगरे में और लोग भी जो आए वो भी कई शायर थे, आरिफ हसवी थे, अहमद फफूंदवी थे, और ये दारा शाह अजमल के मौलाना शाहिद फाखरी, जाहिद फाखरी के जो वालिद थे वो भी शायर थे। तो वही वहाँ मुशायरा होता था।
1: अच्छा।
0: तो जेल में जो मुशायरा होने लगा, तो देखिए जेल में जो शायरी होगी वो रोमानी शायरी तो होगी नहीं
1: जी,
0: वो तो सियासी शायरी होगी, सामाजिक शायरी होगी। तो फिराक साहब वहाँ से फिर चेंज हुए, और फिर वहाँ से जब छूटे तो फिर कानपुर के कॉलेज में लेक्चरर हुए, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1929 में वो बतौर लेक्चरर आ गए। तो जो आदमी अंग्रेजी का प्रोफेसर हो और वो उर्दू की क्लासिकल पोइट्री पर उनकी नज़र, और फिर हिंदू कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर पर उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, वो सब ने मिलाकर फिराक साहब की शायरी का तेवर ही बदल दिया, बांकपन ही बदल गया। एक और बड़ी ख़ास बात थी, फिराक साहब और मुझसे कहा, उसी इंटरव्यू में भी कहा कि मियाँ सवाल तो तुमने ठीक कर लिए, लेकिन तुमने कितना पढ़ा है इससे हमें मतलब नहीं, कितना सोचा है
1: जी,
0: सोचने गौर फिक्र पर। तो फिराक साहब गौर फिक्र बहुत करते थे, चुनांचे वो थोड़े ही मिनट का इंटरव्यू था, कुछ शेर वेर भी सुनाए उन्होंने, लिखा लेकिन वो सुनाते नहीं थे अपने शेर, इधर उधर की, इधर उधर की बात करने में उनको बड़ा मजा आता। इधर उधर से मुराद गैर जरूरी नहीं, दुनिया कल्चर मजहब फलसफा ये सब बात करने में उनको बहुत मजा आता था। शायरी की बात कम करते थे, और बल्कि एक जुमला मुझे आज भी याद आ रहा है, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बड़ी शायरी के लिए शौरे इल्म से ज्यादा शौरे कायनात की जरूरत, दुनिया को जानिए। जो बुकिश नॉलेज रखता है वो आलिम तो हो जाता है लेकिन बड़ा शायर नहीं हो पाता। अब ये फिराक साहब का विजन था ये सब कर। तो बहरहाल बात फिराक साहब पर चली गई, हमने पहला इंटरव्यू आकाशवाणी में हमने फिराक साहब से लिया, फिर एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है अमृत राय साहब से लिया, जो प्रेमचंद के बेटे, एक इंटरव्यू हमने उपेन्द्रनाथ अश्क से लिया, और एक इंटरव्यू हमने रेडियो के लिए बलवंत सिंह से लिया। बलवंत सिंह बीमार थे और हम लोग उनकी बड़ी मदद उदद कर रहे थे उर्दू के। तो मुझे याद है कि जाहिद साहब और डायरेक्टर साहब और एक कोई और आदमी उनके घर गए, मैं भी गया था घर पर उनके, वो मेरे पास तस्वीर भी है इत्तेफाक से बलवंत सिंह।
1: मैं आपको बता दूं सर, वो सारे प्रोग्राम जो युवाणी है या हवा महल का जिक्र किया आपने, वो अब भी बदस्तूर जारी है। आपने चर्चा किया कि अमृत राय जी के बारे में,
0: हाँ,
1: तो उस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ हमको बताइए।
0: देखिए अमृत राय साहब की मुसीबत ये थी कि हम लोग उनसे प्रेमचंद पर बात करना चाहते थे और वो प्रेमचंद पर कम से कम बात करते थे।
1: ऐसा
0: ये अजीब भाई, उनका क्या साइकी थी, क्या कॉम्प्लेक्स था, मैं कहना नहीं चाहता, अब दुनिया में नहीं है
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: लेकिन ये कि बस एक जुमला मुझे उनका याद आ रहा है कि फातिमी मियाँ, वो धीमे बोलते थे, बड़े
1: अच्छा।
0: लचकदार आंख बंद करके बोलते थे कि फातिमी मियाँ, बड़े बाप का बेटा होना भी एक अजाब है, सदियाँ दहाइयाँ गुजर जाती हैं उसके साए से निकलने में। अब हम हैरान के खुश होना चाहिए कि वे प्रेमचंद के बेटे हैं, खैर खुश तो होते ही होंगे ज़रूर। कल मेरा नावल बीज आया तो लोगों ने कहा कि अच्छा तो है लेकिन गौदान से हल्का है। अब बताइए मेरे नावल का मुकाबला गौदान से,
1: बेटे को बाप से कंपैरिजन कर
0: क्यों किया जा रहा है, ये ज़रा सा उनकी एक मुश्किल थी। अब देखिए बाप के नाम पर बहुत सारी आसाइशें थीं तो ये एक मुश्किल भी होती है। हमारे दोस्त थे नीलाब, उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको अश के हवाले से देखा जाता
1: था,
0: औरों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अमृत राय साहब शुस्ता उर्दू बोलते थे और बड़ी खुशबूदार उर्दू बोलते थे, लचकदार उर्दू बोलते थे। मैंने प्रेमचंद को नहीं देखा लेकिन मुझे

0: ऐसा लगा, लगता था कि उनके अंदाज में जैसे प्रेमचंद बोल रहे
1: जी
0: हों,
1: जी
0: उनके जाहिर उनके खून उनका बेटा था। मैंने 50-55 साल गुजारे हैं साहित्यिक दुनिया में इलाहाबाद की।
1: जी
0: दो ही गुफ्तगू करने वाले अच्छे मिले मुझे, एक फिराक साहब। फिराक साहब आंखों से बोलते थे, आंखें
1: जी
0: खोल
1: जी
0: कर जैसे दीदे अभी निकल पड़ेंगे, इतना आंखें फाड़ फाड़ के बोलते थे। और अमृत राय उतना ही आंखें बंद करके बोलते थे। वो उनकी उंगलियां और बॉडी लैंग्वेज ये सब बहुत चलती थी अमृत राय साहब
1: जी
0: की। मगर क्या लोग थे साहब इलाहाबाद में
1: जी
0: उस जमाने
1: जी जी
0: में। अमृत राय साहब के साथ मेरी खुशनसीबी है और मैंने उन पर एक पूरा खाका लिखा है। अमृत
1: जी
0: राय साहब पर इंटरव्यू भी किए हैं उनसे, प्रेमचंद से ही को लेकर। और जब 1980 में प्रेमचंद की सदी मनाई जा रही थी तो मैंने प्रेमचंद का पहला कलेक्शन
1: जी
0: सोज़ वतन जो जब्त हो गया था
1: जी
0: उसको छापने की उनसे इजाज़त चाही, तो उन्होंने फौरन इजाज़त दी पीठ ठोका कि नहीं जाओ भाई तुम्हारा हक है। और मैंने फिर फौरन उस पर एक जैसे प्रस्तावना कहिए प्रेफेस
1: जी
0: कहिए
1: जी
0: वो लिखा 20-22 सफ़े का और उसे छपवाया, जो दिल्ली में राजेंद्र सिंह बेदी के ज़रिए रिलीज़ हुआ
1: जी
0: सोज़े वतन।
1: जी
0: अब तो कई एडिशन आ गए हैं, मैं ही अभी नया एडिशन आया है सोज़े वतन का। तो अमृत राय साहब से गुफ्तगू, फिराक साहब से गुफ्तगू,
1: जी
0: नहीं ये दो वो लोग थे कि जब इनसे बात करके उठिए
1: जी
0: तो आप वो नहीं रहते जो पहले थे
1: जी
0: आप। जैसे आप बहुत सारा इल्म सीख कर उनके पास जा रहे हैं। पढ़े लिखे देखिए और भी लोग थे
1: जी
0: इलाहाबाद में, एक से एक थे। कोई लोग तो बोलते ही नहीं थे, बस कम बोलते थे। कुछ लोग अपने सिवा अपने लिटरेचर अपनी
1: जी
0: कहानी
1: अपनी
0: अपने
1: ही
0: नावल के
1: बातें
0: अलावा कुछ नहीं बोलते थे। मगर ना अमृत राय कभी अपनी लिटरेचर पर बात करते थे ना फिराक साहब पर बोलते थे। ऐसे काजी अब्दुल सत्तार से एक बार
1: जी
0: हमने इंटरव्यू लिया इसी स्टूडियो में। अच्छा, उनके यहाँ जमींदार बहुत बोलता है उनकी कहानियों में उनके
1: जी
0: नावलों में, और जमींदार को वो हमदर्द और मजलूम मानते थे। तो
1: जी
0: मैंने एक सवाल कर लिया कि ये कौन सी तरक्की पसंदी है कि आप जमींदार को मजलूम बना रहे हैं जबकि
1: जी
0: आम मजदूर किसान मजलूम बन रहे, राजा को आप।
1: राजा
0: तो वो हंस पड़े कहने के भाई अब तो जो जमींदारों का हाल हो गया है वो मजदूरों ही की तरह मजलूम हो गए हैं। वो जस्टिफाई करते थे लेकिन हम लोग उससे मुतमईन नहीं होते थे। सबसे मुश्किल पेश आई बलवंत सिंह से इंटरव्यू लेने में।
1: जी
0: एक तो बीमार थे,
1: तो क्या आप उनके यहाँ गए थे
0: उनके घर
1: इंटरव्यू
0: गए
1: के
0: थे हम
1: जी
0: लोग,
1: आकाशवाणी की
0: पूरा वो
1: तरफ से?
0: आकाशवाणी का पूरा हमला गया था,
1: जी
0: डायरेक्टर जाहिद साहब, एक
1: अच्छा
0: आदमी कोई और मुझे ले गया लगाया था ऐसे हाथ से लेके हम लोगों ने उनसे। अब वो बीमार थे, उनसे ठीक से बोला
1: जी
0: नहीं जा रहा था, लेकिन ये कि फिर भी वो उन्होंने मंटो का और कृष्ण का बेदी का बहुत जिक्र किया,
1: जी
0: यादें उनके, आंखें तकरीबन भर आई उनकी।
1: अच्छा
0: फिर हम लोगों ने उर्दू अकेडमी को लिखा पढ़ा, कुछ मदद वगैरह हुई ज़रूर। बहुत लेट शादी की थी उन्होंने,
1: ओ
0: बीवी जवान थी, दो छोटे छोटे एक लड़की और एक लड़का था उनका मुझे याद आ रहा है। लेकिन ये है कि वो फिर उनकी जल्दी ही डेथ हो गई और फिर किराए के मकान में कीटगंज में रहते थे वो। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से ये खुद यहाँ रेडियो पर, अच्छा उस ज़माने में रेडियो का रोल इतना अहम था, इतना अहम
1: जी
0: था। मुझे याद आ रहा है कि 1985 में मैंने फिराक पर एक बड़ा सेमिनार
1: सेमिनार
0: हिंदुस्तानी एकेडमी में किया, तो जाहिद साहब ने कहा बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या कहता हूँ, हमने कहा था उसको कवर कर लीजिए।
1: जी
0: कहे नहीं नहीं कुछ और बताओ। तो उन्होंने फिराक की चार गजलों का म्यूजिकल प्रेजेंटेशन किया ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से।
1: अच्छा
0: वो तस्वीरें मेरे पास
1: जी
0: आज भी मौजूद
1: सर, अगर
0: है।
1: उन गजलों को थोड़ा सा आप
0: गजलें तो अब
1: रिसाइट कर
0: मुझे इस वक्त
1: सके।
0: याद नहीं आ रही हैं,
1: जी
0: बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं
1: जी
0: तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान, ये गजल तो याद
1: जी
0: है। और ये एक और गजल है, ये निखतों के नर्म रवि, ये हवा ये रात, याद आ रहे हैं इश्क के टूटे ताल्लुकात। अब वो जो सिंगर था वो कोई मुस्लिम सिंगर था, उस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या प्रेजेंटेशन था फिराक साहब की गजलों का। इसी तरह से एक प्रोग्राम और मुझे याद आ रहा है
1: जी
0: कि जब कृष्णदर और सरदार जाफरी की सेंटेनरी पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही थी,
1: जी
0: मधुकर
1: गंगाधर
0: गंगाधर
1: जी
0: हाँ एक जी वो
1: जी
0: थे, तो उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने इन दोनों फनकारों पर NCZCC के
1: जेडसीसी में
0: हाल में प्रोग्राम किया था। अशरफ अली बेग उस वक्त
1: हाँ
0: देख रहे
1: जी
0: थे। तो रेडियो हर जगह पहुंचता था, कवर
1: जी
0: करता था, मुशायरे कराता था, ड्रामे कराता था। मुझसे ही जाहिद साहब ने कहा कि तुम ड्रामे की आवाज, तो
1: जी
0: मैं उसमें ऑडिट में आया और कामयाब हुआ, एक आध
1: जी
0: ड्रामे भी मैंने यहाँ किए। लेकिन बेशुमार आर्टिकल्स, गुफ्तगू, टॉक, मुबासा सब रेडियो
1: तो
0: से
1: क्या
0: जुड़े।
1: सर अली सरदार जाफरी साहब यहाँ आए थे
0: नहीं
1: आकाशवाणी
0: नहीं नहीं वो आए नहीं
1: उस
0: थे,
1: सेमिनार में ही
0: वो
1: आपने?
0: सेमिनार में नहीं आए थे।
1: लेकिन उनकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास
0: हाँ बिल्कुल,
1: आकाशवाणी
0: सरदार
1: में है।
0: जाफरी और उसमें शमसुर रहमान फारूकी ने
1: जी
0: उसको इनाग्रेट

0: किया था और दोनों पर बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो इस तरह के प्रोग्राम रेडियो करता था पहले। और जो शहर में आ जाए, जैसे हमारे यहाँ PhD का वाइवा लेने या कोई भी प्रोफेसर आ जाए, हम लोग यहाँ जाहिर साहब फ़ौरन ले आओ और हम ही से कहते तुम इंटरव्यू करो। ये वो देखिए, इंटरव्यू करना भी आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: और बड़ी शख्सियतों से सवाल,
1: बिल्कुल
0: जैसे सवाल होंगे वैसी। अभी इसी ऑल इंडिया रेडियो ने मुझसे 4 घंटे का इंटरव्यू कराया है शमसुर्रहमान फारूकी से।
1: जी
0: मैं डर गया, मैंने कहा 4 घंटे? तो शाइस्ता फाखरी उस वक्त थी मुलाजमत में, उन्होंने कहा

0: अभी इसी ऑल इंडिया रेडियो ने मुझसे 4 घंटे का इंटरव्यू कराया है शमशेर रहमान फारूकी
1: जी।
0: मैं डर गया, मैंने कहा 4 घंटे? तो शाइस्ता फाखरी उस वक्त थी मुलाजमत में, उन्होंने कहा हमने तो मादरत की, हमने कभी हम उनसे 4 घंटे बात नहीं कर सकते, वो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इतना इस लायक नहीं समझता। तो शाइस्ता ने आमादा किया, फिर हमने कहा जाके उनसे पूछे पहले वो तो तैयार हो। वो इस शर्त पर तैयार हुए कि 1 घंटा रोज बातचीत होगी। तो 4 दिन लगातार और 1 महीने का मौका मुझे दिया। मैंने इतना होमवर्क कर तैयार किया अपने आप को, सवाल तैयार किए कि मगर खूब बोले वो फारूकी साहब, और मैंने भी खूब आड़े तिरछे सवाल, उनके अंदर का जो फारूकी है वो मैं निकाल के लाया। मैंने कहा माफ कीजिएगा, इंटरव्यू का यही होता है कि आप कोई तकल्लुफ से बात ना लें, बिल्कुल। और बोले और मेरी पीठ ठोकी कि तुमने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की है। तो भाई इस रेडियो से मेरी 50-55 साल की वाबस्तगी है
1: जी।
0: अगर मैं ये कहूँ कि इस रेडियो ने मेरा कैरियर भी बनाया है तो शायद गलत ना होगा। और मेरी शोहरत जो थोड़ी बहुत हुई उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा दखल है।
1: ये तो आपका बड़प्पन है सर,
0: बड़ा
1: तो
0: दखल है। नहीं नहीं बिल्कुल, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया रेडियो का, उनके तमाम अहदेदारों का और ये प्रोग्राम ऑफिसरों का कि उन्होंने मौका मौका मुझे मौका दिया और मुझे याद किया।
1: सर हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपने सब साहित्यकारों के बारे में बात किया, मेरे ख्याल से उपेंद्र नाथ अश्क से आपकी बातचीत हुई।
0: अश्क जी से भी बातचीत हुई है। अश्क जी की देखिए, अश्क जी सीनियर राइटर थे, बड़े राइटर थे, इसमें दो राय नहीं, और मैं उनके बहुत, मैं भी लूकरगंज में रहता था, वो भी लूकर, मेरे घर की बुनियाद उन्हीं के
1: जी।
0: अगर उनसे जरा हटकर अफसाने के फन पर, उसकी सुंदर शास्त्र पर, एस्थेटिक पर बात कीजिए तो भटक जाते, तो फिर अपने ही पर लौट आते थे। तो उनको बार बार निकालना पड़ता था, बार बार निकालना पड़ता था, कभी मंटो की बात, कभी बेदी की बात। तो वो पर्सनालिटी में तो बोलने लगते थे, मंटू ये था, लेकिन उसके फन पर, फिक्र पर, आर्ट पर, उसके एस्थेटिक पर वो ज़रा कम बोल पाते। लेकिन ये है कि अश जी बड़े जुझारू आदमी थे, बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे। और भी लोग थे शहर में भाई, मैंने अमर कांत जी के साथ
1: जी।
0: वक्त गुजारा, क्या साहब, क्या आदमी, क्या
1: कोई इंटरव्यू सर करने का मौका मिला आपको अमर कांत साहब?
0: अमर कांत तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि अमर कांत से रेडियो की तरफ से कोई, लेकिन अमर कांत मैं प्रलेस में आ गया था और वो उसके थे अध्यक्ष मंडल में, तो उनका बहुत साथ रहा। और उसके अलावा दूधनाथ सिंह और रवीन कालिया और बहुत सारे जितने भी, ये लूकरगंज के पास ही रहते थे, गुप्ता, शेखर जोशी थे, बहुत सारे थे, भैरव प्रसाद गुप्ता,
1: प्रसाद
0: गुप्ता थे। तो वो साहब उस वक्त इलाहाबाद समझिए चांद सितारे की तरह महक रहे थे ये लोग, मगर अब जो है ये बड़े लोग चले गए तो बहुत याद आता है इलाहाबाद, पुराना इलाहाबाद, और उस याद में रेडियो भी शामिल है। इस रेडियो ने मुझे बहुत मौके दिए अपने भी आर्टिकल्स लिखने के, उत्साह था बड़े बुजुर्गों से इंटरव्यू करने, बहुत मौके दिए। और सिर्फ जाहिद फाखरी ही नहीं, वज़ाला भी, शाइस्ता भी, अशरफ अली बेग भी, और सबसे बढ़कर डायरेक्टर फाजमी साहब को बुलाई, क्योंकि मैं असल में डिबेट और ड्रामे का आदमी रहा हूँ, तो बात करना, सवाल करना तो ज़रा मेरे लिए, हाँ, तो उसका मैंने खूब फ़ायदा उठाया। और मैंने अपनी टीचिंग कैरियर में भी इसका फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे कहते थे साहब आप किस ड्रामाई अंदाज में पढ़ाते हैं, बड़ा मज़ा आता है ये, तो उसमें रेडियो का बड़ा दखल है।
1: आपने अभी जिक्र किया कि आप ड्रामा भी एक यहाँ प्ले किए हैं।
0: हाँ हाँ, एक आध प्ले मैंने किया है, लेकिन चला नहीं मुझसे ज्यादा। वो उर्दू थिएटर मैंने एक बना रखा था,
1: अच्छा।
0: उसमें भी मैंने कई ड्रामे किए, लेकिन जब मैं लेक्चरर हो गया, टीचर हो गया, और रचना आलोचना की तरफ आ गया, तो अश जी का जुमला है कि ड्रामा जो है कोई सौत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: जी जी,
0: वो ड्रामा तो फिर फुल फ्लेड ड्रामा
1: जी,
0: आप ये भी कर लें वो भी कर लें, और ड्रामा वो नहीं चल पाता। ड्रामे को तो फुल फ्लेड ड्रामा है, उसकी दुनिया ही अलग है, तो वो दुनिया उसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। तो हमने फिर ये रास्ता अपनाया अपने पढ़ने पढ़ाने का, रचना का, आलोचना का, एक कामयाब जिंदगी गुजारी। लेकिन इस कामयाबी में इलाहाबाद का, इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस का, इलाहाबाद की गोष्ठियों का, इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन का बड़ा दखल है
1: जी,
0: मैं इसको भूल नहीं सकता।
1: आप रेडियो से सर 50-55 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से।
0: हाँ, बात तो करते हैं,
1: क्या तब्दीली देखते हैं सर तब आकाशवाणी और अब आकाशवाणी में?
0: अब देखिए मीडिया के रूप स्वरूप बहुत बदल गए हैं। अब जैसे रेडियो घर घर पहले पहुंच गया था, फिर टेलीविज़न घर घर पहुंचा, अब कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है, अब लोग शॉर्टकट की तरफ भागते हैं
1: जी।
0: अब AI आ गया है, हर चीज़ का जवाब। भाई हम लोग तो किताबें लाइब्रेरी में ढूंढते थे, दो दो तीन तीन

0: डाटा लाइब्रेरी में खाक छानते थे। अब सब कुछ गूगल पर ले देख लीजिए, रेख्ता पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ये आसानियाँ तो आ गई हैं, लेकिन साहित्य जो है वो सीरियस स्टडी से चलता है, ये टेम्परेरी स्टडी से नहीं चलता। सीरियस स्टडी, गहन स्टडी इसे कहिए, और बकौल फराग की गौर फिक्र से चलता है।
1: जी,
0: जब सब रेडीमेड आपको पका पकाया मिल रहा है तो जो सोचने की ताकत है
1: जी
0: वो तो खत्म हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो इससे साहित्य का नुकसान हो रहा है। अब इसीलिए बड़े साहित्यकार या बड़े कहानीकार, अब यही वजह मैं समझता हूँ, लेकिन इन बुजुर्गों के जुमले याद आते हैं
1: जी
0: कि आपने क्या नई बात निकाली है।
1: जी जी,
0: अब जैसे अब मंटोई पर गुफ्तगू है कि बड़ा जालिम, अरे जींस और सेक्स और ये वो, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब आप उसको न्यू रियलिज्म, अब लोग कम लोग जानते हैं कि मंटो जब अमृतसर में पैदा हुआ
1: जी,
0: और 1912 में पैदा हुआ और 1919 में जलियांवाला बाग हादसा हो गया, 7 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा देख रहा है वो, और उसके बाप मौलवी थे, सख्ती करते थे, घर से बगावत, अक्सर तरक्की पसंदों ने घर ही से बगावत की
1: जी,
0: वो रूढ़ीवादी वो नहीं, जमींदारी सब नहीं, और 9 साल में वो देख रहा है और 11-12 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिख रहा है तमाशा के नाम से। ये दुनिया तमाशा है, आप सोचिए 11-12 साल का लड़का, वो तो रोमांटिक एज होती है ना
1: जी,
0: भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन उसमें वो तमाशा। फिर उसे वहाँ अमृतसर में मिल गए एक कॉमरेड, गुलाम बारी अली कहलाते थे, वो एक मसावाद अखबार निकालते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का वो अखबार था, और पूरा मार्क्सिज्म पढ़ रहा है, लेनिनिज्म पढ़ रहा है, और भगत सिंह की तस्वीर लगाए हुए है, और लोग कहते हैं कि मंटो तरक्की पसंद नहीं था। अरे तरक्की पसंदी इंकलाब से ही तो वो शुरुआत हो रही, इश्तराकियत जिसे आप मार्क्सवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, उससे उसकी शुरुआत हो रही। अब उसकी सारी पहली कहानियाँ दो चार जो उसने अमृतसर में लिखी, फिर अलीगढ़ आया, बीमार हुआ, कश्मीर गया, फिर बम्बई गया, फिर लाहौर गया, वो दुनिया बम्बई के चकला खानों पे लिखा, लाहौर पे फिर बहुत सारे अफसान लिखा, लेकिन शुरुआत उसकी अमृतसर से होती है और इनकलाबी अफसानों से होती है। तो कहानी तरक्की पसंद
1: जी, बिल्कुल,
0: मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं लाया हूँ कोटेशन, वरना पढ़ के सुनाता आपको कि वो खुद क्या कह रहा है कि मैंने इन इन इन लोगों के साथ, कॉमरेड बारी तो उनके उस्ताद ही थे
1: जी।
0: तो ये जो सोचने की ताकत है, आज के लिखने वालों के पास ऑब्जर्वेशन की बड़ी कमी है
1: जी,
0: वो जद्दोजहद, वो संघर्ष, वो जमीनी जिंदगी, वो सिर्फ किताबी हो। निदा फाजली का शेर है बड़ा खूबसूरत सा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। आप जब तक आम आदमी से नहीं मिलेंगे, उसके स्ट्रगल से, उसके दुख दर्द, आज फ्लैट की लाइफ, आपको पड़ोस में कौन क्या है आपको पता नहीं है। तो जब मैन टू मैन कोई वो नहीं है, रब्त नहीं है, रब्ता नहीं है, कोई मुशाहिदा नहीं है, तो आप क्या कहानी लिखेंगे? अपनी मुश्किल को लेकर कोई शेर आप लिख लेंगे, आम आदमी की मुश्किल पर नहीं लिखेंगे। इसीलिए विजन कमज़ोर है आपका, जो एक ऑब्जर्वेशन, आपके इमोशंस नहीं वो रह गए, अपने खोल में आप जी रहे हैं, तो वही सब आ रहा है। रेडियो, टीवी, अखबारात, ये सब समाज में एक बड़ा रोल अदा करते थे, तो अब अखबार पढ़ने का जी नहीं चाहता, कोई लोग पाबंदी से अखबार नहीं पढ़ते
1: जी।
0: इतनी उर्दू सोसाइटी है, कम से कम लोगों के यहाँ उर्दू अखबार आता, भाई आपको पता तो चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है।
1: और कोई याद सर आपकी रेडियो से जुड़ी हो?
0: और तो मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन भाई आशा ब्राउन एक थी अनाउंसर
1: जी, डिलीशी आशा ब्राउन,
0: अरे क्या कहने साहब, वो जमाने में उनका इतना नाम था, उतनी नरम नाजुक आवाज थी उनकी, और हम लोगों की नशीस वगैरह को या हम लोगों को जब कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करे तो 1-2 मिनट बोलती थी। लेकिन रेडियो का आर्टिस्ट जो था, एक साहब, एक शर्मा जी भी थे, अब पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, शर्मा जी थे, वो उनकी आवाज़, आशा ब्राउन क्या, अभी मिली थी मुझे काफ़ी कुछ दिनों पहले, बूढ़ी हो गई हैं बेचारी, ये सब वो लोग थे जो रेडियो पूरा ताकत जैसे संभाले हुए थे, सुतून संभाले हुए।
1: सर आपसे बातचीत करते हुए दिल तो नहीं चाहता कि हमारी बात को ख़त्म करें, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी है तो हम इसे और जारी नहीं रख सकते। ये आपकी खुश नसीबी है, फिराक साहब और अश्क साहब और बड़े बड़े साहित्यकारों की आपको सोहबत मिली, और ये हमारी खुश नसीबी है कि आकाशवाणी को आपके सोहबत मिली। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे प्रोफेसर अली अहमद फातमी से मोहम्मद शमीम की भेंट वार्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के हैं।
1: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आपका संदेश, आपकी चिट्ठियां हम तक पहुंच गई हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
2: नमस्कार वंदना जी और सभी सुधीर श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम।
1: नेहा जी, तो देखिए ये पहला जो मैंने आंख बंद करके जो पत्र उठाया है, संदेश सामने देखा है तो जगमगा रहा है। नाम वहां पर एडवोकेट वारिस अली खान साहब का
2: जी,
1: संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से इन्होंने हमें संदेश भेजा है अपना। इनका कहना है कि 7 मई का अपनी पसंद कार्यक्रम सुना मैंने, मुझे बहुत पसंद आया। आजकल मधु जी मेरी पसंद पर ध्यान नहीं दे रही हैं, अब मेरे कमेंट्स भी नहीं पढ़े जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में। क्या आप लोग मुझसे नाराज हैं? और इन्होंने कुछ सुझाव भी भेजा है नाराजगी के साथ साथ कि पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम शुरू कीजिए, और दूसरा सुझाव है कि कार्यक्रम आपकी पसंद के समय में परिवर्तन करें, इसे शाम के वक्त कर दें क्योंकि दोपहर में सभी लोग अपने अपने काम पर होते हैं, और हाँ, दर्द भरे गीतों पर आधारित कोई शो करें।
2: बहुत शुक्रिया वारिस अली खान साहब। और आपने कहा मधु जी ने आपके पत्र शामिल नहीं किए, वारिस अली खान साहब बहुत सारे पत्र होते हैं, आज ही उनसे चर्चा हुई इस बारे में, वो चेंजेस आपको दिखेंगे भी और उन तक ये बात पहुंच भी गई है आपकी। और मैं कहूँ सुधीर श्रोताओं, रात 9:30 बजे अब हम लोग कहकशां प्रसारित करेंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने नाम भी सुन सकते हैं

0: और दर्द भरे नगमे जो आप सुनना चाहते हैं वो हमारा मोबाइल नंबर आप सभी को मालूम ही है। वंदना जी इस कार्यक्रम के लास्ट में भी बताएंगी, ज़रूर नोट करिए और अपना नाम रात में सुन सकते हैं, पसंद के गीत भी सुन पाएंगे आप।
1: और बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन करते हुए अपने संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी, ये हमें लिख रहे हैं संदेश दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। और इन्होंने कहा है नेहा जी,
0: जी
1: कि 26 अप्रैल को युवाणी कार्यक्रम सुना, ये कार्यक्रम युवाओं की सोच, ऊर्जा और प्रतिभा को मंच देता है। प्रस्तुति भूपेंद्र कुमार मिश्र जी की और प्रस्तोता दिव्या द्विवेदी के साथ इसमें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर विशेष चर्चा हुई। प्रेरणा पुंज के अंतर्गत बाबू कुंवर सिंह के जरिए देशभक्ति और साहस की प्रेरणा मिली और साथ ही हेलो युवा में सुधांशु पांडे के साथ संवाद ने युवाओं को अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। पनघट कार्यक्रम सुना 28 अप्रैल को, ये कार्यक्रम ग्रामीण जीवन परंपरा और सादगी की खुशबू लिए हुए था और इसके मुख्य आकर्षण थे तस्वीरें, यादों के झरोखे, पुरानी यादों को ताजा करने वाला भावनात्मक हिस्सा रहा इस कार्यक्रम का। और आगे ये कहते हैं कि गृह लक्ष्मी कार्यक्रम 29 अप्रैल को सुना, ये कार्यक्रम महिलाओं की शक्ति, कला और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अभय कांत तिवारी जी की प्रस्तुति और गुंजन शर्मा और मंदाकिनी तिवारी जी का साथ रहा, इसमें गृहिणियों के अनुभव, जीवन की सीख और रचनात्मकता को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया। और बोलते नखमे कार्यक्रम सुना 29 अप्रैल को ही, ये संगीत प्रेमियों के लिए खास कार्यक्रम है, गीतों के माध्यम से भावनाओं को जीवंत किया गया, हर नखमा एक कहानी कहता है, संगीत दिल की भाषा है जो बिना शब्दों के सब कह देता है।
0: बहुत शुक्रिया विष्णु मिस्किन जी और समस्त आपके परिवारगण के लोग। आपने एक बात कही कि युवाणी में ये जो सीख मिलती है, जो प्रेरणा पुंज में जिन भी गुणीजनों के बारे में हमारे टीम मेंबर्स बताते हैं, वो बहुत सुकून देता है, प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए साहस भी प्रदान करता है। वो सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम लोग ये बात तय करते हैं कि किन किन पर प्रोग्राम जाना है और किस तरह से जाना है। कार्यक्रम के जो इंचार्ज हैं भूपेंद्र मिश्र जी, बहुत ख्याल रखते हैं हर बात का कि कैसे हम श्रोताओं के सामने चीज़ों को ले करके चलें, उसका लय क्या हो ताकि वो जहन में बैठ जाए और उसकी रंगत बहुत सुंदर हो। तो ऐसा हुआ, बहुत शुक्रिया विष्णु जी। बोलते नगमे कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, हर नगमा एक कहानी कहता है, सच है वो कहानी जो शायद आपकी और हमारी है, इसीलिए वो अमिट छाप छोड़ जाती है। पनघट और गृहलक्ष्मी अच्छा लगा, शुक्रिया विष्णु मिस्किन जी।
1: और रणजीत सिंह जी हमसे जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, और रणजीत सिंह जी का कहना है कि 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस पर हेलो पंचायत घर कार्यक्रम शुरू किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक सुझाव और है कि व्हाट्सएप के द्वारा फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन शुरू कीजिए। और 19 अप्रैल को कृषि जगत में जायद की फसलों की देखभाल पर विशेष भेंटवार्ता सुनाई गई, उसी दिन सुबह नमस्कार प्रयागराज के अंतर्गत प्रेमेंद्र जी की प्रस्तुति बहुत पसंद आई है। और पंचायत घर कार्यक्रम में ही विश्व लिवर दिवस पर अभिनव प्रज्ञ पांडे व डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा जी की जो बातचीत हुई थी वो बहुत खूबसूरत रही। और आकाशवाणी के 90 वर्ष यादों का कारवां कार्यक्रम के अंतर्गत नेहा गुप्ता जी की जो भेंट थी रूपम नारायण पांडे जी से वो बहुत पसंद आई है। साथ ही साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह से स्वास्थ्य चर्चा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और आयुर्वेद, इस विषय पर जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा है। और कहते हैं कि नमस्कार प्रयागराज के अंतर्गत 30 अप्रैल को आज के आधुनिक समय में रेडियो की भूमिका विषय पर जानकारी और गीत बहुत पसंद आए।
0: बहुत शुक्रिया रणजीत कुमार सिंह जी। देखिए आपने और मुझे याद है वीरेंद्र जी ही थे मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा था कि हेलो पंचायत घर कार्यक्रम शुरू करें, हमने वादा किया था, उस वादे को कैसे न निभाते। आप सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को जो प्यार दिया है, अपनापन दिया है, उससे हम अभिभूत हैं। ये भी बात कही आपने कि लोकगीत पर आधारित फरमाइशी श्रृंखला शुरू करें, देखते हैं रंजीत जी ये भी पाइपलाइन में है। इसके लिए अभी एकदम से वादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका एक तरीका निकाल सकते हैं कि अगर आप जो हमारे पोस्टर

0: सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहे हैं पंचायत घर के, वहां पर अगर लिखते हैं कि हमें अमुक कलाकार के लोकगीत सुनने हैं, तो हमारे जो कॉम्पियर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वहां से लेकर के आपका नाम और आपकी जो पसंद है उसको प्ले कर सकते हैं। नमस्कार प्रयागराज, अच्छा लगा आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां। हम लोगों की कोशिश है कि हर व्यक्ति को इस श्रृंखला से जोड़ें और उन सारी यादों में ले जाएं जो शायद हमारे और आपके जहन बहुत खूबसूरती से रची बसी हुई हैं। तो शुक्रिया आपका रंजीत जी।
1: और माधुरी कुशवाहा जी कोठा पारचा प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं। नेहा जी, माधुरी जी का कहना है कि 29 अप्रैल को सुबह 10:05 पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है वॉइस ऑफ प्रयागराज, जिसके अंतर्गत गार्गी जी की जो प्रस्तुति थी बहुत उपयोगी रही और उन्होंने बहुत विस्तार से कोचिंग सेंटर के बारे में बताया, उस पर चर्चा की और कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करवाई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 मई को प्रीति यादव जी की प्रस्तुति सुनी, बहुत ही खूबसूरत रही क्योंकि उन्होंने जो शहर में जो ट्रैफिक जाम है और प्रदूषण, इस पर चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने मजदूर दिवस के बारे में भी बातें बताई। गाने बहुत खूबसूरत थे और आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध कजरी गायिका उर्मिला श्रीवास्तव जी, उनकी भेंट वार्ता सुनी, वंदना राठौर जी ने जो ली थी बहुत अच्छी लगी। बड़ी ही ईमानदारी से उर्मिला जी ने अपने जो लगाव और जुड़ाव आकाशवाणी के साथ उनका रहा है प्रयागराज से, वो जब वो बता रही थी और जिस तरह से उन्होंने माँ कह के पुकारा है तो मन द्रवित हो गया सुनते हुए। और किस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही और की जो यादें थी, उनका बचपन था, कजरी की भूमिका जो है आज के संदर्भ में जब उन्होंने बताई तो बहुत अच्छा लगा ये पूरा कार्यक्रम। और पिछली बार जो बोलते नगमे कार्यक्रम सुना तो साथ साथ कोई एक गीत था वो लगातार उस कार्यक्रम के साथ साथ जा रहा था, तो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उस प्रोग्राम के तहत
0: जी।
1: ये कहना है
0: बहुत शुक्रिया माधुरी कुशवाहा जी। सवेरे वाला जो हमारा वॉइस ऑफ प्रयाग है वो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये हमारे टीम मेंबर्स में एक तमन्ना ही थी कि क्यों ना जो प्रयाग के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, वो जिस तरह से इस शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पर बात की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों का वो जो प्यार है, अपनापन है, वो मिलेगा। प्रीति जी की प्रस्तुति बहुत बढ़िया रही, रोशनी जी ने प्रस्तुत किया, गार्गी जी ने प्रस्तुत किया, नीलम सिंह जी ने प्रस्तुत किया। तो ये सारा जो साधुवाद है कार्यक्रम के इंचार्ज अभिकांत तिवारी और टीम मेंबर्स को पहुंचा दिया गया है, शुक्रिया आपका। आपने कहा कि जो आकाशवाणी के 90 वर्ष और यादों का कारवां, कजरी साम्राज्ञी पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव की जो भेंट वार्ता, वंदना जी वो मेरे पास में ही बैठी हुई हैं, अभी पत्र पढ़ रही हैं, बढ़िया लगी। ये इंटरव्यू एक्सटेम्पोर था, मैंने नहीं बताया था कि आपको इंटरव्यू लेना है, लेकिन कहते हैं कई बार कि दिल की बात करने के लिए, कहने के लिए रियाज की, अभ्यास की, प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और वो दिल तक पहुंच जाती है, और हुआ भी ऐसा। तो वंदना जी आपको साधुवाद बढ़िया सा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, और आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति थी इसमें। आपने कहा बोलते नगमे में एक गाना लगातार बज रहा था, हालांकि ऐसी शिकायत किसी और सुधी श्रोता ने तो नहीं की है, लेकिन इसको हम अपनी जाँच कमेटी तक भेजेंगे और देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कारण जानेंगे और निवारण भी करेंगे, शुक्रिया आपका।
1: और नेहा जी, ये हमारे साथ अब जो जुड़ रही हैं वो हैं अशोकनगर प्रयागराज से, हमें संदेश जो भेजती हैं हमेशा नीरा त्रिपाठी जी, और नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम इनका पसंदीदा कार्यक्रम तो है ही, और इन्होंने सातों दिन की जो प्रस्तुतियां थीं उसके बारे में विवरण लिखा है कि, और इन्होंने भी यादों का कारवा में कजरी गायन की ऊंची हस्ती उर्मिला जी की जो बातचीत थी वो सुनी। इनका कहना है कि बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि अगर आकाशवाणी नहीं होती तो उर्मिला श्रीवास्तव भी ना होती, बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनकर लगा, बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत शुक्रिया नीरा त्रिपाठी जी। सवेरे वाला जो चंक है नमस्कार प्रयागराज, आप सभी के संदेश देखती हूँ तो अच्छा लगता है, और कोई बात और भी कहना चाहते हैं तो जो पोस्टर हम अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे उसके कमेंट बॉक्स में लिख दें, वहाँ से हमारे टीम के लोग ले लेंगे और पसंद पर आधारित गीत और बातें भी प्रस्तुत कर सकेंगे हम लोग, शुक्रिया आपका।
1: और नेहा जी, विवेक सत्यांशु जी

0: नगर कॉलोनी अल्लाहपुर प्रयागराज से हमें संदेश भेज रहे हैं। विवेक जी का कहना है कि बोलते नखमे कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार और कवि पंडित नरेश शर्मा जी की जो रचना सुनाई गई वो दुर्लभ अवसर मिला हमें भी ये सुनने का, और भगवती चरण वर्मा जी का जो उनका जो उपन्यास चित्रलेखा था और पूरा जो गीत था जिस तरह से शब्दों के साथ पिरोया गया वो बहुत मन को खुश कर गया। हार्दिक बधाई। और प्रिंट मीडिया पर आधारित एक बातचीत सुनी थी विवेक जी ने, ये बातचीत इन्हें बहुत पसंद आई है, तो इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रेषित किया है।
1: बहुत शुक्रिया विवेक सत्यांशु जी, आपका पत्र मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद ही आया है, मैं उम्मीद भी कर रही थी। तो आपने जो कहा कि शाम को जो ये बातचीत प्रसारित हुई थी प्रिंट मीडिया को लेकर के, सुनील राय जी ने मैं कहूँ कि बहुत दूर दृष्टि से इस बात को उन्होंने रखा था और सच्चाई से ये बात कही थी कि अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसे नकारने या आंख बंद करने की बजाय उसे देखें और नए तरीके अपनाएं। आपने कहा बोलते नगमे मन रे तो धीर क्यों न धरे और तुम आशा विश्वास हमारे, ये सारे जो गीत हैं सुधीर श्रोताओं हर किसी के हृदय के बहुत करीब है ना, तो आप सभी को बहुत शुक्रिया।
0: और नेहा जी आप कुछ संदेश जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिले हैं हम जल्दी से उनको पढ़ देते हैं
1: जी।
0: ये हमें भेज रहे हैं संदेश रवि कुमार राहुल जी, कस्बा बराडा, जिला अंबाला हरियाणा से, और इन्होंने अपने 45 वर्षों का जो रेडियो का साथ रहा है उस पर इन्होंने बहुत सुंदर शब्द पिरोए हैं कि रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से, जी हाँ जनाब मैं रेडियो का श्रोता हूँ।
1: क्या बात है।
0: और आगे राजकुमार रेवाड़ जी सादुल शहर राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, ये कहते हैं कि चिट्ठी आई कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। और विष्णु टेलर जी लिखते हैं कि चिट्ठी आई है कार्यक्रम का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अनिल यादव जी भी, इन्होंने भी अपना एक संदेश भेजा है कि हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। और ये हैं सतीश श्रीवास्तव जी, इनका कहना है कि सुबह की सभा में श्री रामचरित मानस और भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत, गजल का कार्यक्रम जरूर सुनते हैं।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक संदेश भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं अपना पता, तो लिखिए हमारा पता कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं इस पते पर और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। अब दीजिए हमें इजाजत,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के थे, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं आपकी कसम फिल्म का गाना जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की गीत रचना। फिल्म का नाम है आराधना। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अमर प्रेम फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर के गाए अमर प्रेम फिल्म के इस गाने के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की लिखी झलकी भंडाफोड़।

0: साहब, क्या बता सकेंगे कि डॉक्टर तनख्वाह का दवाखाना किधर है?
1: लगता है आप इस शहर में नए आए हैं।
0: नहीं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, बस 15 साल से बाहर था। तनख्वाह साहब का मैं पुराना मरीज हूँ, वो तो शहर के सबसे बड़े डेंटल सर्जन है। मेरी वाइफ के भी सारे दांत उन्होंने ही निकाले हैं।
1: तब तो लगता है आप उनके पुराने मुरीद हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: मगर आपसे एक गुजारिश है, अब तनख्वाह वो तनख्वाह नहीं रह गया।
0: क्या मतलब?
1: हाँ, क्या आज आप अपना कोई नया दांत निकलवाने आए हैं?
0: जी हाँ, ये मेरे ऊपर के दांत में बहुत तकलीफ है।
1: तो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि आजकल वो दांत कम ही निकाल रहे हैं, मुर्गियों की टूटी टांगे ज्यादा जोड़ रहे हैं वो।
0: मुर्गियाँ?
1: हाँ, ये आपको वो खुद ही बताएंगे। एक बात से आपको और सावधान कर रहा हूँ, वो दर्द वाले इंजेक्शन लगाकर कभी कभी बगल का दूसरा दांत निकाल देते हैं। हाँ, थोड़ा दिमाग गड़बड़ा गया है, इसीलिए सावधान होकर दांत निकलवाइएगा।
0: हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: ठीक सुन रहे हैं, अब आदमी का दिमाग अप डाउन तो होता ही रहता है।
0: लेकिन ये डॉक्टर तनख्वाह मिलेंगे कहाँ?
1: वो पीछे खाता है, वहाँ मुर्गे मुर्गी बत्तखे खरगोश जैसे घरेलू जानवर का इलाज करते रहते हैं वो।
0: और श्रीमान जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी की दवाएं बेचता हूँ। ये देखिए, इतना बड़ा होम्यो हाल है, कुछ खरीदेंगे?
0: नहीं, बाबा, फिर कभी।
1: देखिए देखिए, इतना बड़ा होम्यो हाल है, आपको शहर में दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर याद रखिएगा, कमीशन भी देता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए।
0: ठीक है, अब चलता हूँ। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा।
1: धन्यवाद। मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बकता रहता था ये तनख्वाह।

0: अब पता चलेगा बेटा, अच्छी तरह से चढ़ा दिया मैंने इस आदमी को।
1: अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सन्नाटा पसरा हुआ है। अरे हाँ जरूर, वो पीछे के हाथे में मुर्गियों का इलाज कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़कर वही देखता हूँ। हाँ यही तो है, यही तो हाथे का दरवाजा नजर आ रहा है।
2: डॉक्टर साहब कोई आया है।
3: अच्छा ऐसा करो, तुम चलकर उसे बिठाओ, मैं आता हूँ। पहले तुम्हारी इस मुर्गी की पट्टी तो कर दूँ, वरना ये तो छटपटाती ही रहेगी।
2: लीजिए, वो तो इधर ही चले आ रहे हैं।
3: अच्छा आने दो।
1: अरे तनखा साहब, आप और यहाँ?
3: आप मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ।
1: अरे इतनी जल्दी पहचानेंगे भी कैसे, 15 साल बाद जो मिल रहा हूँ आपसे। मेरा नाम नरेंद्र है, आपका पुराना मरीज। अरे वो मेरी पत्नी के दांत, वो सारे आप ही ने तो।
3: अच्छा, अब आपको कुछ और परिचय देने की जरूरत नहीं। हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, उम्र के साथ आंखों की रोशनी पर भी तो असर पड़ता है। ऐसा करते हैं, चलिए भाई साहब चैम्बर में बैठकर बात करते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ चलिए वहीं वहीं बैठते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप शहर के सबसे बड़े नामी डेंटल सर्जन रहे हैं, आपका ये नया रूप कुछ पच नहीं रहा है।
3: अरे बैठिए, सब बताता हूँ। देखिए आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: आपने सही अंदाज लगाया डॉक्टर साहब, काफी दिनों से ये ऊपर का जो बीच वाला दांत है ना, अच्छा, उसके अच्छा। दर्द से परेशान हूँ। वहाँ अस्पताल में असल में कोई दांत का ठीक डॉक्टर है नहीं। दिखाया तो उसने कहा कि वो दांत की जड़ में फोड़ा है, बड़े अस्पताल में जाकर दिखाना पड़ेगा।
3: तब तो ये और भी अच्छा हुआ जो आप मेरे पास चले आए, अभी एक्सरे करके देख लेता हूँ। वैसे आपको कुछ बता ही दूँ, मेरी इस कायापलट की वजह क्या है। अच्छा ये बताइए, आपको मेरे उस कंपाउंडर की याद तो होगी ना?
1: कौन वो, शायद हीरामणि नाम था ना?
3: हाँ हाँ वही। मगर आज वो डॉक्टर बन गया है, और जानते हैं नाम क्या है? एच मणि।
1: लेकिन वो डिग्रियां कहाँ से ले आया?
3: अरे अपने बोर्ड पर उसने डॉक्टर नहीं, डेंटल टेक्नीशियन लिख कर रखा है। कमाई में भी मुझसे बहुत आगे है।
1: ओह तो आप समझा, आपके हाथों में ये मुर्गियां और मुर्गे की मरहम पट्टी का धंधा कैसे आया?
3: अरे भाई साहब, 8 फुटपाथों पर 200 दांत के डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे जो मामूली पैसे लेकर दांत निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इतने महंगे ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास कौन आएगा?
1: मगर ये सफाई देने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, आपको पहले जैसे टैलेंट दिखाने की जरूरत है। मेरी पत्नी के सारे दांत खराब हो चुके थे, बेहद दर्द था, उन्हें निकालना जरूरी था मगर निकाले नहीं जा सकते थे। जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता पूरा चेहरा सूज आता था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, तब मैं आपके पास लेकर आया। आपने न जाने कौन सा जादू किया, सारे दांत निकाल डाले। मैं नहीं चाहता ऐसा टैलेंटेड डेंटल सर्जन मुर्गियों और बत्तखों की मरहम पट्टी में अपना सारा टैलेंट खपा दे। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है समाज का। लौटिए डॉक्टर साहब, फिर लौटिए अपने पुराने करिश्मे की ओर, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह आपका वापस लौटना पूरे समाज का कल्याण करेगा।
3: सच में नरेन बाबू, आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया।
2: डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रहा था कि इस अल्सेशियन को मत एडमिट कीजिए, आखिर ऑपरेशन के वक्त उसने काट लिया ना।
3: क्या उसके मुंह को जाली से नहीं बांधा था? जाओ पहले इंजेक्शन लगवाओ।
2: डॉक्टर साहब एक ही बार में बता दिया कीजिए क्या करना है।
1: जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अब चलता हूँ। उस सामने वाले होम्योपैथिक के डॉक्टर से भी एक और मुलाकात होना जरूरी है।
3: जाइए जाइए, लगता है ये आपकी दूसरी मुलाकात होगी।
1: हाँ उन्हें सही रास्ता दिखाना जरूरी है। चलता हूँ डॉक्टर साहब।
4: आइए पधारिए, मैं तो आपके जाने के बाद से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। देखा आपने तनख्वाह का मुर्गी खाना?
1: जी हाँ अच्छी तरह से देख लिया, और उसी नजरिए से आपका जी इतना बड़ा होमियो हॉल भी देखने आया हूँ।
4: हाँ, खरीदने के लिए दवाओं की लिस्ट तो आपने बना ही ली होगी।
1: पहले ये बताइए कि डिग्री तो आपने होम्योपैथिक के लिए होगी, और इतना बड़ा ये दवाखाना, दवाई बेचने के लिए लाइसेंस भी आपके पास होगा?
4: ये भी कोई बताने वाली बात है भाई, इसके बिना तो हम अपनी दवाएं बेच ही नहीं सकते।
1: खूब खूब, तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी पैथी के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी ऐसा ही लाइसेंस होना चाहिए।
4: आपके इस सवाल का मतलब मैं नहीं समझ

0: या
1: अच्छे से समझाता हूँ। ये अलमारियों में आपने आगे होम्योपैथी की दवाएं लगा रखी हैं, मगर इसके पीछे क्या है?
0: दवाएं हैं और क्या होगा,
1: होम्योपैथी की ही है ना?
0: मगर ये तहकीकात करने वाले आप होते कौन हैं? आपको अपनी दवाएं लेनी है तो लीजिए, वरना अपना रास्ता अलापिए। लगता है ये सब उसी बदमाश डॉक्टर तनखा ने भड़का कर भेजा है आपको।
1: ये रहा मेरा कार्ड, मैं विजिलेंस अधिकारी हूं।
0: जी, बस
1: तनख्वाह को तो मैं नापूंगा ही, मगर उससे पहले आपको जेल की रोटियां खानी होगी।
0: मगर क्यों?
1: इसलिए कि इन अगली दवाओं के पीछे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट छिपा कर रखे हैं आपने। उन्हें बेचने का लाइसेंस है आपके पास?
0: गलती हो गई सर, कान पकड़ता हूँ। पीछे छिपा कर रखी दूसरी कंपनी की दवाओं को मैं अभी बाहर फेंक देता हूँ।
1: इन्हें तुरंत गटर के हवाले कीजिए और लिखित शपथ दीजिए मुझे कि आगे कभी ऐसा अनैतिक और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, वरना आपके सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
0: जी, अभी लीजिए सर, अभी लीजिए।
1: मैं अभी लौटता हूं, तब आपसे ये शपथ पत्र लूंगा।
0: जी, सर।
1: चलो अब आगे देखते हैं कौन सा ऐसा फ्रॉड मिलता है। आ, डॉक्टर टंडन का बोर्ड लगा है, गला रोग विशेषज्ञ, थ्रोट कैंसर स्पेशलिस्ट। तब तो इनके यहाँ जाना जरूरी है।
2: क्या मैं डॉक्टर टंडन से मिल सकता हूँ?
3: हाँ, आइए आइए, मैं ही डॉक्टर टंडन हूँ। क्या तकलीफ है आपको?
1: डॉक्टर साहब, इधर कई महीनों से मैं अपने गले को लेकर बहुत परेशान हूँ।
3: क्या हुआ है आपके गले में?
1: सर, पहले तो भोजन निकलने में तकलीफ होती थी, अब पानी की घूंट तक नहीं ले पाता हूँ।
3: अच्छा, आइए आइए, इस कुर्सी पर बैठिए। हाँ, आप जरा मुंह खोलिए। हाँ, थोड़ा और खोलिए, थोड़ा थोड़ा और।
1: और नहीं बोल पाएगा भाई,
3: कितने दिनों से है ये तकलीफ आपको?
1: कई महीनों से।
3: अच्छा, अभी तक आप सो रहे थे क्या? आपको ये भी नहीं पता कि आपके गले को कैंसर जकड़ रहा है? हाँ,
1: कैंसर? नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं तो मरी जाऊंगा।
3: मगर मैं क्या करूं?
1: अब क्या होगा डॉक्टर साहब, मेरे बाद तो मेरा घर अनाथ हो जाएगा। कौन सी स्टेज है डॉक्टर साहब, क्या आप इसका एक्सरे नहीं करेंगे?
3: अरे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, एक जमाने से मैं यही केस देखता आ रहा हूं। मेरी आंखें अब खुद ही एक एक्सरे मशीन बन चुकी हैं। जो एक्सरे नहीं बताएगा उसे मेरी आंखें बता देती हैं। अच्छा बताइए, यहाँ इस जगह तकलीफ होती है जबरदस्त?
1: बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब, इतना कि बयान नहीं कर सकता। क्या अंदर कोई फोड़ा वोड़ा तो नहीं बन रहा है?
3: अरे रे रे रे, उसी की तो संभावना दिखाई पड़ रही है।
1: जब आप थ्रोट कैंसर के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, तो आपकी डॉक्टर साहब अपनी एक एक्सरे मशीन तो होनी चाहिए।
3: अरे रे, कितनी बार कहूं कि मैं आंखों की एक नजर से ही सब कुछ जान जाता हूं। मेरी उंगलियों के टच में जादू, समझिए जादू, सब पल भर में जान लेता हूं।
1: अच्छा, ये बताइए, मेरे गले को दबाकर आपने क्या जाना?
3: यही कि थ्रोट कैंसर बुरी तरह से आपके गले के बाहर भी फैल चुका है।
1: कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता डॉक्टर साहब।
3: क्या बताऊं, कोशिश करके देखता हूं, मगर पैसे बहुत लगेंगे।
1: पैसे? कितने पैसे लग जाएंगे डॉक्टर साहब?
3: यही, अब 1 लाख तो अभी एडवांस दे दीजिए और 1 लाख इलाज के बाद दे
1: अरे
3: दीजिएगा।
1: 1 लाख? 1 लाख ये तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब।
3: तो आपको अपनी जान प्यारी है या पैसे?
1: दोनों प्यारे हैं, मगर मैं इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ?
3: अच्छा, तो फिर चलिए फिलहाल 50,000 तो जमा कर ही दीजिए।
1: मिस्टर टंडन, क्या आपके पास इस ट्रीटमेंट के लिए कोई डिग्री है?
3: मतलब
1: इस ट्रीटमेंट को चलाने के लिए कोई लाइसेंस है आपके पास?
3: ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: मैं आपको इस बोगस और बेसिर पैर के इलाज के लिए गिरफ्तार करता हूँ। मेरे गले में कोई तकलीफ नहीं है, कैंसर तो बहुत दूर की चीज है।
3: मगर आप है कौन?
1: वो आप नहीं समझेंगे, ये लीजिए, पढ़ लीजिए, विजिलेंस ऑफिसर हूं मैं। बहुत दिनों से आपके इस धंधे की खबर सुन रहा था, अब जेल चलने की तैयारी कीजिए।
3: देखिए देखिए साहब, माफ कर दीजिए मुझे, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ।
1: छोड़ दूंगा तो तुम न जाने और कितने लोगों को ठगोगे।
2: गलत ट्रीटमेंट का

0: दिखावा करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ सर, पैर पकड़ रहा हूँ। आगे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
0: शपथ पत्र लिख कर दीजिए, शपथ पत्र अभी अभी अभी अभी।
1: हाँ सर,
0: देखिए अभी तक मैं लोगों को ठगता रहा हूँ, आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा।
1: हाँ लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। ये लीजिए सर।
0: हाँ, आप दुकान में ताला बंद करिए और चाबी मुझे दीजिए।
1: हाँ, ये लीजिए सर।
0: तो देखा डॉक्टर तनखा, इतने लोगों का भंडा फोड़ करके आ रहा हूं।
2: वो तो ठीक है नरेन बाबू, पर मेरा क्या होगा?
0: अरे यही होगा कि आप जैसे योग्य डेंटल सर्जन का टैलेंट मुर्गियों की टांगे जोड़ने में बर्बाद नहीं होने दूंगा। अपने चैम्बर में लौटिए, कुछ दिन बाद आप शहर के वही जाने माने डेंटल सर्जन नजर आएंगे। विश्वास न हो तो लगा लीजिए शर्त।
2: नहीं नहीं, शर्त वर्त की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मेरे भीतर के उस इंसान को जगा दिया जो सो गया था। अरे अरे, क्या हुआ आपको?
0: अरे डॉक्टर साहब, वही दांत का दर्द।
2: नरेन जी, इस उम्र में दांत की जड़ का कोई भी फोड़ा कैंसर बन जाता है।
0: कैंसर?
2: सच कह रहा हूँ, ये इन्फेक्शन आपके दूसरे दांतों में भी फैल रहा है। अच्छा आइए, बैठिए बैठिए इस चेयर पर।
0: हाँ हाँ, मगर डॉक्टर साहब, आपने मेरे सामने अपने ये दोनों हाथ किस लिए फैलाए हुए हैं?
2: आप भी दांत मुझे दे दीजिए भाई साहब।
0: डॉक्टर साहब, आपकी बात पर मुझे वो फिल्मी डायलॉग याद आ गया। अपने दोनों हाथ मुझे दे दो ठाकुर, आप कह रहे हैं अपने दांत मुझे दे दो।
2: ये फिल्म नहीं है भाई साहब, जिंदगी की असलियत है, इसीलिए आपसे ये दांत मांग रहा हूँ। देंगे ना?
0: हाँ, जिंदगी के लिए देने ही पड़ेंगे।

आज इतवार है। इस कार्यक्रम में आपने सुनी प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव की लिखी झलकी भंडा फोर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से

0: प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं

0: पहले हमने शत प्रतिशत एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
0: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की

0: जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम

0: ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना

0: ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
0: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीर आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
0: आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअसर तौर पर निपटा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ़ुज़, दरिया के इंतज़ाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निज़ाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो आइन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाज़े खुले हैं, और अगर किसी कमज़ोर शख्स की आवाज़ दबाई जाती है तो अदालतें उनकी आवाज़ों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वज़रा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीने वज़ीर आज़ादाना चार्ज का ओहदा तफ़वीज़ किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असम्बली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक़े दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी MLA कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से MLA सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर

0: मामलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वुजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, नेज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत व सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इज्तम से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई ज़रूरतों और नौमौलूद बच्चों की ज़रूरतों को जहन में रख कर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़ महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकत का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। यह दस्तखत वजीर खारजा SJ के करेबियाई मुल्कों के दो रोज़ा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तजदीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तोसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दिगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग ख़त्म करने के मकसद से अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुज़ाकरात में खित्ते में तनाज़े को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जंग ख़त्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वीर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये दुनिया का पहला बैन बर आज़मी बिग कैट मुंतकली

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं, कुछ गजलें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो दिल की उन अनकही भावनाओं का आईना बन जाती हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन बयान नहीं कर पाते। सुनवाते हैं आपको ऐसी ही खूबसूरत गजल जिसके शेर तन्हाई, इंतजार और अधूरी तलाश की कहानी कहते हैं। राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला ही नहीं। इस गजल में श्रोताओं ऐसी बेचैनी छुपी है जो हर उस दिल ने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी जिसने किसी अपनों को ढूंढा हो, यादों में, ख्वाबों में या फिर जिंदगी की भीड़ में।

कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिसमें वक्त की बदलती फिजाओं का दर्द भी है, रिश्तों की खामोशी भी और दिल की अनकही बेचैनियाँ भी। शब्द जैसे हवा के झोंकों में तैरते हुए सीधे दिल तक पहुँचते हैं। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। सुनवाते हैं आपको मखमली आवाज से सजी इस गजल को गाया है गुलाम अली साहब ने।

और अब पेशी खिदमत है दर्द और एहसास से भीगी हुई एक बेहद मशहूर गजल, जिसे अपनी रूहानी आवाजों से सजाया है गजल सम्राट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी ने। मेरे दुख की कोई दवा ना करो, मुझको मुझसे अभी जुदा ना करो। श्रोताओं, ये गजल केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिल की सच्ची तस्वीर है, जिसमें शिकवा भी है, सुकून भी है और एक अजीब सी खामोशी भी है। हर शेर जैसे अपने भीतर छिपे दर्द को धीरे धीरे खोलता जाता है।

और अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन की गाई एक ऐसी गज़ल जिसमें हुस्न, नज़ाकत और एहसासों की एक बेहद महीन परत देखने को मिलती है। ये गज़ल अपने शब्दों के माध्यम से सुंदरता की उस परिभाषा को सामने लाती है जो केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहती बल्कि दिल और रूह तक उतर जाती है। इस गज़ल के मिसरे जब कानों में पड़ते हैं तो एक ऐसी दुनिया का एहसास होता है जहाँ खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने का नाम बन जाती है।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई गजल, जिसमें तकदीर, मोहब्बत और इंसानी बेबसी का ऐसा संगम मिलता है जो हर सुनने वालों को अपने ही अनुभवों से जोड़ देता है। इन भावनाओं से भरी गजल को सुनते हैं और महसूस करते हैं जिंदगी की लकीरों में छुपे हुए एहसास को।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of India.

0: Indian classical music, Vidwan D. Srinivas, continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat raag gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo aadi taal mein nibadh hai.
0: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the raag gaula set to aaditaal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी।

उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएम के विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।